श्रोताओं नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शनिवार है, राष्ट्रीय शक संवत 1948 के श्रावण मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातःकाल के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीव इन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीव इन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते।

0: भारत के अब तक कुल 21 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भारत माँ की जय पुकारे हर मन में हो मान, वीरों की गाथा गूंज उठे बढ़े देश की शान, तिरंगे की छाया में हम करें सदा सम्मान, सत्य सेवा प्रेम से महके अपना हिंदुस्तान, मिलजुल कर आगे बढ़ें यही रहे अरमान, भारत माँ का नाम जपें हर सुबह हर प्राण।

भोलेनाथ की महिमा न्यारी है, जग में सबसे महान। डमरू की धुन सुनकर मिटे मन का हर अज्ञान, गंगा जटा में विराजे चंद्र करे सम्मान। भक्ति से भर दो जीवन मेरा, दे दो ऐसा दान। हर हर महादेव गूंजे हो पावन हर प्राण, शिव चरणों में शीश झुकाऊं यही मेरा अभिमान।

मुरली की मधुर तान सुनकर मन को दिया आराम, राधे श्याम के प्रेम से जग होता निष्काम। गीता का संदेश सुनाकर दिया धर्म का ज्ञान, तेरे चरणों में मिल जाए जीवन को।

रूप न कोई, रंग न कोई, फिर भी तू आधार। कण कण में तेरा ही वास, तुझसे सारा संसार, तेरी भक्ति से मिलता है जीवन का सत्कार। तेरा नाम सुमिरन करके हो जाए भव पार।

ना तेरा कोई रूप दिखाई ना कोई पहचान, फिर भी तेरी शक्ति से चलता सारा यह संसार। शब्दों से परे है महिमा अगम तेरा ज्ञान, हर श्वास में तेरा ही सुमिरन हर धड़कन में नाम। तेरी कृपा से मिट जाए मन का सारा अभिमान, निर्गुण प्रभु चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वीव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमारे केंद्र को सुन रहे हैं प्रसार भारती न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
1: आज के इस चिंतन में हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो हमारे जीवन की दिशा, दशा और सफलता को निर्धारित करता है। यह विषय है विचारों की शक्ति और जीवन का उद्देश्य। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। हमारे विचार ही हमारे शब्द बनते हैं, शब्द हमारे कर्म बनते हैं, कर्म हमारी आदतें बनती हैं और आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती, अंततः हमारा चरित्र ही हमारे भाग्य का निर्धारण करता है। कहा गया है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को कमजोर समझता है तो वह अवसरों के सामने भी स्वयं को असहाय महसूस करता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी आशावादी बना रहता है तो वह समस्याओं में भी संभावनाएं खोज लेता है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां भौतिक सुविधाएं पहले से कहीं अधिक हैं, लेकिन मानसिक शांति कम होती जा रही है। लोगों के पास साधन हैं, लेकिन संतोष नहीं। संपर्क हैं, लेकिन संबंधों में आत्मीयता कम होती जा रही है। इनका एक बड़ा कारण यह है कि हम बाहरी दुनिया को सुधारने में लगे हैं, पर अपने विचारों और मन को सुधारने के लिए समय नहीं निकालते। प्रतिदिन हम अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या हम अपने मन की स्वच्छता के बारे में सोचते हैं? मन में यदि ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, नकारात्मकता और निराशा भर जाए तो जीवन का आनंद समाप्त होने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों का निरीक्षण करें, अपने आप से प्रश्न करें, क्या मैं सकारात्मक सोचता हूँ? क्या मैं दूसरों की सफलता से प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं कठिनाइयों में धैर्य रखता हूँ? क्या मैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझता हूँ? जीवन केवल जन्म लेने, पढ़ने, नौकरी करने या फिर जीवन व्यतीत कर देने का नाम नहीं है, बल्कि व्यक्ति का जीवन किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। जब तक मनुष्य अपने उद्देश्य को नहीं पहचानता, तब तक वह भीतर से अधूरा महसूस करता है। एक शिक्षक का उद्देश्य ज्ञान बांटना हो सकता है, एक चिकित्सक का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ करना हो सकता है, एक किसान का उद्देश्य समाज को अन्न प्रदान करना हो सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि बड़ा कार्य करने के लिए बड़ा पद या बड़ी शक्ति चाहिए, लेकिन इतिहास गवाह है कि परिवर्तन हमेशा छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होता है। एक दीपक पूरे सूर्य का स्थान नहीं ले सकता, लेकिन वह अंधकार को चुनौती अवश्य दे सकता है। आज समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो शिकायत कम करें और समाधान अधिक खोजें, जो आलोचना कम करें और सहयोग अधिक करें, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचें। हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, कभी आर्थिक कठिनाई, कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कभी संबंधों में तनाव तो कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन परिस्थितियों में हमारा दृष्टिकोण ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि हम समस्या को अंत मान लें तो रास्ता बंद हो जाता है, यदि हम समस्या को चुनौती मान लें तो नया रास्ता खुल जाता है। आज की युवा पीढ़ी के सामने अनेक अवसर हैं, लेकिन अनेक चुनौतियां भी हैं। सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और तेजी से बदलती जीवन शैली के कारण कई बार युवा स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। तुलना से ही हीन भावना जन्म लेती है और हीन भावना आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। हमें याद रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। किसी की यात्रा किसी और की यात्रा जैसी नहीं होती, इसलिए स्वयं की तुलना दूसरों से करने के बजाय स्वयं को कल से बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है, नई आशा लेकर आता है, नए सपने लेकर आता है। हमें उन अवसरों को पहचानना और उनका सदुपयोग करना सीखना चाहिए। आइए आज हम संकल्प लें कि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे, अपने जीवन के उद्देश्य को समझेंगे और समाज में सकारात्मक योगदान देने का प्रयास करेंगे।
0: आप सुन रही थी चिंतन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, खेती की बातें। आइए इसके अंतर्गत सुनते हैं मानसून में नए बाग बगीचे लगाना, इसके बारे में जानकारी। वाचक स्वर सुनीता पंडित।
2: खेती की बात नखा सुनने वाला सभी किसान भाई बहन के कवा उनकी सुनीता बहन की घनी घनी राम राम। किसान भाई नोनी आज बात करा नवा बाग बगीचा तम कसा लगे सको। इना समय पर मानसून पूरी तोर से सक्रिय हुई गयल छे अन गड्ढा भरने का लेन जून में जो अपन ने खाड़ा खोदिया था उनका नखा तुरंत भरी देवा। प्रति गड्ढा 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट SSP और दीमक से बचाव करने 100 ग्राम नीम खली या क्लोरोपाइरीफास पाउडर मिट्टी में मिलने न खाड़ा नख जमीन से 2 इंच तक भर देना चाहिए। पौधा ने की खरीददारी कर लो विश्व सरकारी जैसा ICAR मान्यता प्राप्त नर्सरी से पौधा खरीदोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अमरुद हुआ, नींबू हुआ, आम, अनार, जैसा भी आपका जो प्रजाति न लीज उनका बेहतरीन कलमी पौधा मिली जाए तो घनो अच्छो रहेगा। खेत में जल की निकासी सुनिश्चित कर लो कि कहीं पानी तो नहीं जमा हुई रो, जल भराव तो नहीं हुई रो, नहीं तो असम नया पौधा छे उनकी जड़ छे वो गली जाएगा। पौधा नख खेत में लगाना कलेन सबसे सही समय अगस्त मावग। रोपाई का समय में हमेशा शाम का समय 4 बजे का बाद या रिमझिम बारिश में का दौरान करनू चाहिए। तेज धूप में रोपाई बिल्कुल नहीं करा। ग्राफ्टिंग को ध्यान रखा। पौधा न की जो पोलिथीन की रहे जिनका नमण उनका नख ब्लेड से सावधानी से काटा ताकि मिट्टी का जो ढेला छे पिंडी ने छे वो टूटा नहीं अन पौधा रोपनू चाहन उनका नका जो ग्राफ्टेड जोड़ रहे वो खराब नहीं होए अन वो जमीन से कम 3 से 4 इंच तक ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो कवक न फंगस लगी जाएगा वो को डर रहेगा। रोपाई का तुरंत बाद पौधा नका पास मजबूत बांस की एक अपन छोटी सी डंडी लकड़ी गाड़ी देवा या न सुतली से बांधी देवा ताकि तेज हवा चला कदी तो भारी बारिश से पौधा झुका नहीं न टूटा नहीं। पर इन्हीं बात को अपन का ध्यान धरनु एका साताज में हम यो कवांगा कि पौधा नखा जो तना चे उनका चारों तरफ 2 फीट को असो घेरो बने लेवा जेको अपन थाड़ो कवान वो बने न न ओकी नियमित रूप से निराई गुड़ाई करनू चाहिए। खर पतवार जो छे वो बाहर निकली जाए भाई कीड़ा न से अपन का सुरक्षा करनू घनो जरूरी छे। तो नवी नवी कोपल नावण मंडी जाएगा पत्ती नमन चेपा होए थ्रिप्स होए कटर पिलर जैसी इल्ली न होए उनको हमलो ही सके तो एका बचाव का लेन नीम को तेल आन ओके बतावा कि 3000 ppm नीम का तेल की 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलेना ना छिड़काव करनू चाहिए। न रूट स्टॉक की अपन जो सफाई कर लेवा जैसे ग्राफ्टेड हिस्सो छे ओका नीचे से निकलने वाली कई भी जंगली शाखा हो वाटर सकर से जिका कवान वो तो को तुरंत काटी देवा नहीं तो अपनो जो असली पौधो छे वो सूखना मंडी जाए। भाई शुरुआती दौर में अपन यो कवांगा कि भाई पानी की कदी नहीं हुई रो है प्रकृति न सो हुई गो कि खींचतान हुई रही हो तो सिंचाई की अपन का ध्यान रखनु न पौधा न का आवश्यकता अनुसार 5 से 7 दिन का अंतराल में हल्की सी सिंचाई करनु और संभव हो तो ड्रिप इरिगेशन अगर तम ओका से पानी वाड़ोगा तो घनो अच्छो रहेगा। हल्की हल्की अपन ख जब पौधो बड़ पाड़ पाई जाए बढ़ना लगा तो ओका में खाद को भी ध्यान रखनु जमा जमा जरूरत पड़ा तम तम खाद नाको। प्रति पौधा 50 ग्राम NPK 19:19:19 या 100 ग्राम केचुआ खाद थाड़ा नम देने न निंदाई गुड़ाई करांगा तो घनो अच्छो रहेगा। मल्चिंग से तना न का आस पास सूखी घास पुलाव गन्ना की पत्ती न की परत बिछे देवांगा तो असा म कदी तेज धूप होएगा मिट्टी में नमी होएगा वह बरकरार रहेगा। खेती की बात न मन किसान भाई बंड से एतरोज कहनु राम राम।
0: खेती की बातें, इसमें आप सुन रही थी मानसून में नए बाग बगीचे लगाने के बारे में जानकारी। वाचक स्वर सुनीता पंडित का। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान के आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सविता देवी के स्वर में।

पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ। राजप्रसाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे। जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना, गौएं, मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं। कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से मिलने आई हो, किंतु सूर्य का प्रकाश देखकर लजा गई हो। राजमहल वेद पाठ की कोमल ध्वनि से गूंज रहा है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था और स्वर सविता देवी का। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमारे केंद्र को सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ देर बाद यानी

0: प्रादेशिक समाचारों के ठीक बाद 7:20 से सुनते हैं आप सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 8:30 पर। लोक संगीत में 9:00 और 6:45 पर सुनिए मनीषा हरवल्लभ शास्त्री और साथियों के गाए लोकगीत। 9:15 और 6:30 पर सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे अहमद रजा पप्पन और साथियों के गाए कुछ गीत। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिए पंडित ब्रज नारायण का सरोद पर बजाया राग मुल्तानी। जिले की चिट्ठी रिले करेंगे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से 10:00। 10:05 से प्रसारित होता है श्रोताओं की पसंद पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। दिन में 11:00 से लेकर 2:00-3:00 तक के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, जिनका विवरण इस प्रकार है। दिन में 11:00 सुनेंगे आप फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने। इस घंटे की खास खबरें आप सुनेंगे दिन में 11:58, 12:58 और 2:58 पर। फिल्म संगीत सुनिए 12:00। संग्रहालय से ये कार्यक्रम होगा 12:30 पर। दिन में 1:00 सुनेंगे आप महिला कार्यक्रम। लोक संगीत 12:30 पर। 1:45 से सुनेंगे आप सुगम संगीत। 2:00 होगा फिल्म संगीत और 2:30 पर चित्रपट संगीत। हमारी सांध्यकालीन सभा का आरंभ होता है युववाणी कार्यक्रम के साथ। इस कार्यक्रम में आज का क्रम होगा हेलो फ्रेंड्स। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 5:45 पर। 6:00 प्रसारित करेंगे हम विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आरंभिक चर्चा विकसित भारत विजन 2047 में किसानों और कृषि का लक्ष्य स्मार्ट फार्मिंग जलवायु अनुकूल खेती। इसी कार्यक्रम में होगी भेंटवार्ता शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में एग्री वोल्टेक प्रणाली। इस विषय पर डॉक्टर दीपक हरि रांडे जी से राजेश पाठक जी की बातचीत। शाम 7:20 से आप सुनेंगे पर्यावरण पर चर्चा और लोक संगीत। 7:30 से आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे हम प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इस सप्ताह संसद में रिले करेंगे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:00। सुर्खियों में यह कार्यक्रम होगा 8:15 पर। रिले करेंगे भोपाल केंद्र से 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 9:15 पर आप सुनते हैं चित्रगीत। 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे हम राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती और 10:00 दिल्ली केंद्र से ही रिले करेंगे हम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य एक दिवसीय

0: आंध्र प्रदेश कर्णाटक यात्रायां भविष्यति। आंध्र प्रदेशे प्रधानमंत्री भोगापुरम इत्यत्र अल्लूरी सीताराम राजु अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थानकस्य उद्घाटनं करिष्यति। सार्वजनिक निज सहभागिता प्रारूपस्यान्तर्गतं षट्शताधिक पंचसहस्र कोटि रूप्यकाधिकेन व्ययेन निर्मितं तदन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं प्रतिवर्षं षष्ठि लक्ष यात्रिणां सेवा प्रदातुं विनिर्मितमस्ति। प्रधानमंत्री अशीत्यधिक अष्टशताधिकैक सहस्र कोटि रूप्यकाधिक व्ययुताः राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति, तासां शिलान्यासम् अपि करिष्यति। आंध्र प्रदेश यात्रानन्तरं प्रधानमंत्री कर्नाटकस्य मैसूरनगरं गमिष्यति, यत्र स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवक केन्द्रस्य विवेक स्मारकस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् अपशब्द प्रयोगः द्वेष भावना च कस्यापि समस्यायाः समाधानं न भवतः। असौ मार्गभ्रष्टेभ्यः युवभ्यः करुणाभावम् आवहन् अवदत् यत् ते दण्डनीयाः न अपितु राष्ट्रनिर्माणस्य राष्ट्रहितस्य च भावनया सम्यक् मार्गे प्रेरणीयाः। सामाजिक संचार पटलेषु प्रसारिते एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजधान्याः जंतर मंतर स्थले सद्यः एव जातायाः तस्याः घटनायाः उल्लेखम् अकरोत्, यस्मिन् तस्मै तस्य दिवंगत मात्रे च अपशब्दाः प्रयुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् एषा घटना देश विदेशेषु बहुभिः जनैः दृष्टा। एतादृशस्य आचरणस्य विषये समाजे विद्यमानः आक्रोशः निराशा च स्वाभाविकौ स्तः। प्रधानमंत्री अवदत् यत् एतादृशान् युवकान् न्यायालयीय प्रक्रियासु न निवेशयेत्, सामाजिक तिरस्कारस्य भाजनं वा न कुर्यात्, अपि तु समाजेन तान् सस्नेहं स्वीकृत्य सम्यक् मार्गः प्रदर्शनीयः।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना अनुमोदिता। एषा योजना ऊर्जा संचयन प्रणालीभिः युक्तानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासाय प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 5000 मेगावाट मितानां क्षमतायुतानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासः भविष्यति। ताभिः सह स्थापितानां ऊर्जा संचयन प्रणालीनां न्यूनतम संचयन क्षमता द्विहोरात्मिका भविष्यति। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनायाः अस्मात् वर्षात् 31,000+ वर्षपर्यन्तं प्रवर्तनस्य निरन्तरतायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारतम् अवदत् यत् पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य तथा कथितानि निर्वाचनानि पाकिस्तान प्रशासनस्य अपमानस्पदम् एव सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य प्रशासनं पीओजेके इत्यत्र शान्तिप्रियाणां नागरिकाणां विरुद्धं निष्ठुरं बलप्रयोगं निरन्तरं करोति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः गतसायं ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह दूरभाषया वार्तालापम् अकरोत्। अस्मिन् वार्तालापे सः अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तमानायाः शत्रुतायाः विषये भारतस्य गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 23 यावत् वर्धिता, यस्मिन् 5 स्वर्ण पदकानि, 12 रजत पदकानि, 6 कांस्य पदकानि च सन्ति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश तथा निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
2: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री कई और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 इयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले है 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
2: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में हुए तथाकथित चुनाव पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने का आग्रह किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच कहा। इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।
4: श्रोताओं, हम आपको बता दें आज शाम 6 बजे आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आरंभिक चर्चा के अंतर्गत विकसित भारत विजन 2047 में किसानों और कृषि का लक्ष्य स्मार्ट फार्मिंग, जलवायु अनुकूल खेती। साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में एग्री वोल्टेक प्रणाली पर डॉक्टर दीपक हरिरांडे जी से राजेश पाठक जी की बातचीत। सुबह 9 बजे और शाम 6:45 पर लोक संगीत में हम आपको सुनवाएंगे मनीषा हरवल्लभ शास्त्री और साथियों के गाए लोकगीत। सुगम संगीत में सुबह 9:15 और शाम 6:30 पर आप सुनेंगे अहमद रजा पप्पन और साथियों को। शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में आज का हमारा क्रम होगा हेलो फ्रेंड्स। दिन में 10:05 से सुनते हैं आप श्रोताओं की पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए आप भी हमें इन नंबरों पर फोन करके अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0731-2710-223 और 0731-2710-224। सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाएंगे पंडित ब्रज नारायण का सरोद पर बजाया राग मुल्तानी।

प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी रिले करेंगे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 7:30 पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा आपने हमारे केंद्र को ट्यून किया है न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर विवाद पर वीडियो संदेश जारी कर कहा, गुमराह बच्चों को सजा नहीं, माफी और सही राह दिखाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर में 11 लाख पौधरोपण अभियान की शुरुआत के साथ शहरवासियों को देंगे विकास कार्यों की सौगात। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जूडो में रचा इतिहास, पहली बार जीते 2 स्वर्ण पदक, मुक्केबाजी में 10 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे। और इंदौर उज्जैन संभाग सहित पश्चिमी जिलों में पिछले 48 घंटों के दौरान तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जंतर मंतर पर हुई घटना पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घटना में उन्हें और उनके दिवंगत माता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, लेकिन वे संबंधित युवाओं को सजा दिलाने के बजाय उन्हें सही राह दिखाना चाहते हैं।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और विशाखापट्टनम में सेमी कंडक्टर परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद स्मारक विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शहरवासियों को विकास, स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़ी कई बड़ी सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव डुमना नेचर पार्क में 11 लाख पौधरोपण अभियान की शुरुआत करेंगे और उमरिया, डुमना और कठौंदा में मियावाकी पद्धति से 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री घंटाघर स्थित गीता भवन में 362 करोड़ रुपए की अमृत सीवेज परियोजना और 3 बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसका फायदा 89,000 घरों को मिलेगा। इसके अलावा गुरंदी में 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बने नए मत्स्य बाजार का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल झाबुआ जिले के थांदला में स्वसहायता समूहों के क्षमता वर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने स्वसहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए 300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया, जिसमें झाबुआ जिले के 215 समूहों के लिए 10.5 करोड़ रुपए का ऋण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनें अब हर महीने 10,000 रुपए की आमदनी कमा रही हैं और प्रदेश में 196 दीदी कैफे चलाए जा रहे हैं। उन्होंने झाबुआ जिले को 174 करोड़ रुपए के 29 विकास कार्यों का भूमि पूजन, 109 करोड़ रुपए के 28 कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा,
2: यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज झाबुआ के अंदर भूमि पूजन हुआ, जोरदार ताली बजाए अपने नए मेडिकल कॉलेज के लिए। धार झाबुआ में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी चलेगा, रोजगार के नए नए कारखाने खुलेंगे। अब तो थांदला से होकर रेल भी जाने वाली है। नए दौर का नया समय आया। आदिवासी क्षेत्र में पट्टों के बजाय रजिस्ट्री करा करके आपके जीवन में बड़ी मदद करने का काम हमारी सरकार से कर रहे हैं।
0: प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मूंग और उड़द खरीदी के दौरान किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। श्री सारंग ने कल मंत्रालय में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं समय पर रहें और उड़द खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाना उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश में पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान में जनभागीदारी से 5 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। 15 दिन तक चले इस अभियान को 60 से ज्यादा जानी मानी हस्तियों का साथ मिला। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने 1,75,000 से ज्यादा नागरिकों को नशा मुक्ति की ई शपथ दिलाई और 8,500 लोगों की मानव श्रृंखला बनाई। बड़वानी

0: पुलिस ने 16,700 ड्राइंग शीट्स पर विद्यार्थियों से नशा मुक्ति के चित्र और स्लोगन बनवाए। बुरहानपुर के 113 स्कूलों के 32,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने एक साथ नशा मुक्ति का संदेश दिया। वहीं बालाघाट में 1204 स्कूलों के करीब 1.25 लाख विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय जूडो खिलाड़ी बने। वहीं यामिनी मौर्य ने रजत पदक हासिल किया। मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी, जैस्मिन लंबोरिया और लवलीना बोरगोहेन सहित 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत और रश्वीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकथलॉन ने कांस्य पदक जीतकर ये पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 128 पदकों के साथ पहले और भारत 23 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 के दूसरे भाग का आयोजन रविवार यानी 2 अगस्त को ऑफलाइन तरीके से किया जाएगा। ये परीक्षा 6 विषयों के लिए 2 सत्रों में इंदौर और भोपाल संभाग के केंद्रों पर होगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से 11 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। आयोग ने बताया है कि परीक्षा केंद्रों पर इस बार नई त्रिस्तरीय जाँच व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें CCTV निगरानी, बायोमेट्रिक जाँच और मेटल डिटेक्टर से तलाशी शामिल है। प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार और पद्मश्री सम्मानित कैलाश चंद्र पंत का कल हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे 90 साल के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। कल उन्होंने भोपाल में अपने निवास पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार आज भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में जुलाई में 2 लंबे ब्रेक के बावजूद बारिश का कोटा पूरा हो गया है, लेकिन जून में कम बारिश की वजह से आंकड़ा 13% कम है। इस वजह से 55 में से 42 जिलों में सामान्य से कम पानी गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन अगस्त में कोटा पूरा हो सकता है। इंदौर उज्जैन संभाग सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 48 घंटों के दौरान तेज बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने 2 आदतन अपराधियों को जिले तथा उसके सीमावर्ती जिलों की सीमा से 6 माह के लिए जिला बदर किया है। खंडवा में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान आगामी 7 अगस्त से शुरू होगा। इसके तहत प्रत्येक शुक्रवार अधिकारी गांवों और नगरीय क्षेत्रों में पहुंचकर नागरिकों से संवाद करेंगे। कटनी में कल शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मंदसौर कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने पिपलिया मंडी ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था देखी और पौधरोपण किया। आगरमालवा जिले के ग्राम आवर में संचालित स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित मिट्टी के खिलौने और अन्य हस्तनिर्मित उत्पादों का कलेक्टर ने अवलोकन किया। सतना पुलिस द्वारा जिले भर में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम सुनहरी पल में। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं उदित नारायण

आइए अब सुनते हैं नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है साजन का घर।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरी पल। और अब हम आपको अगला नगमा सुनवाते हैं सुलक्षणा पंडित और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है जज्बात, महेंद्र दहलवी का गीत और संगीत राजकमल का।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुनहरे पल कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं राजा फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गीत, गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

सुनहरे पल कार्यक्रम का आखिरी नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में बरसात फिल्म से। समीर का ही लिखा हुआ ये गीत है और नदीम श्रवण का ही संगीत।

बरसात फिल्म के इस गीत के साथ ही सुनहरे पल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: सुनहरे।
1: अभी आप सुन रहे थे सुनहरी पल, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्टैग अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनकी और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर

0: ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2500 मेगावाट और कुर्नूल में 1000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया दो चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। दो चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
3: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल sec.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। जैगथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में

0: जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
1: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्य में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth. Says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill introducing stricter punishment and setting up of fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, इंडिया क्लिंच्ड टू हिस्टोरिक गोल्ड मेडल्स इन

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

दोस्तों नमस्कार, आदाब, सप्रेम वंदे। आकाशवाणी इंदौर के संगीतमय कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कहा जाता है कि संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं का सबसे सच्चा दर्पण है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं से परे जाकर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखते हैं। उनके बोल, उनकी धुन और उनमें छिपे भाव आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने पहली बार सुनने पर लगे होंगे। आज की सुरमई महफिल में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही सदाबहार नगमे जो प्रेम, समर्पण, विश्वास, रूठने मनाने और जीवन की

सुंदर सीखो के अपने भीतर समेटे हुए हैं। तो आइए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि उसे किसी तर्क या कारण की आवश्यकता नहीं होती। वह बिना किसी बंधन के, बिना किसी आग्रह के, सहज ही मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कभी किसी की मुस्कान, कभी उसकी मासूमियत, तो कभी उसकी आंखों की गहराई बस दिल को अपना बना लेती है। प्रेम वही आकर्षण है, एक ऐसा आकर्षण जो किसी बंधन से नहीं बल्कि आत्मीयता से जुड़ा है। मन कहीं और जाने का निश्चय करता है, लेकिन कदम उसी ओर मुड़ जाते हैं जहां कोई अपना इंतजार कर रहा हो।

साथियों, प्रेम जब नया नया होता है तो उसमें एक मीठी सी झिझक होती है। हर मुलाकात में धड़कनों की आवाज तेज हो जाती है और हर बात धीरे से कहने का मन करता है, जैसे पूरी दुनिया सुन रही हो और फिर भी दिल चाहता हो कि ये बातें केवल दो दिलों तक ही सीमित रहें। इसमें प्रेम का शोर नहीं बल्कि उसकी खामोशी बोलती है। धीमे स्वर में कही गई बातें अक्सर जीवन भर याद रह जाती हैं। आइए इस मधुर एहसास को महसूस करते हैं।

श्रोताओं, संगीत केवल प्रेम की अभिव्यक्ति ही नहीं करता बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। यह हमें बड़ी सहजता से याद दिलाता है कि बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, समय के साथ रूप बदल सकता है, लेकिन इंसान का व्यवहार, उसका चरित्र, उसकी विनम्रता और उसके संस्कार ही उसे वास्तव में सुंदर बनाते हैं। यही कारण है कि गीत केवल मनोरंजन नहीं करता बल्कि मुस्कुराते हुए जीवन का एक गहरा सत्य भी कह जाता है। सुनते हैं ये नगमा।

श्रोताओ, प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो उसमें अपेक्षाओं से अधिक समर्पण दिखाई देता है। सच्चा प्रेम पाने से अधिक निभाने में विश्वास रखता है। वह हर परिस्थिति में साथ चलने का साहस देता है और हर मुश्किल में उम्मीद की किरण बन जाता है। प्रेम की गहराई शब्दों से नहीं, भावनाओं से व्यक्त होती है। ऐसा प्रेम जो जीवन की सबसे अनमोल पूंजी बन जाता है।

दोस्तों, हर रिश्ते में कभी ना कभी रूठना भी आता है और मनाना भी, लेकिन रिश्तों की खूबसूरती इस बात में है कि अहंकार से ऊपर उठकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया जाए, एक दूसरे के काम आया जाए। जहां देर से आने की शिकायतें भी हैं और वादा निभाने की सच्चाई भी, यही छोटी छोटी बातें रिश्तों को उम्र भर मिठास दे जाती हैं। आज की संगीत में प्रस्तुति का समापन करते हैं इस गीत के साथ।

इन मधुर गीतों के साथ आज की यह सुरमय प्रस्तुति संपन्न होती है। आशा है इन गीतों ने आपकी यादों को ताजा किया होगा, आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरी होगी और आपके मन की संगीत की मधुरता से भर दिया होगा। इसी शुभकामना के साथ दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे कुछ नए विचारों, नई अनुभूतियों और सदाबहार गीतों की नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए संगीत सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी इंदौर के साथ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत का आरंभ करने से पहले सुनिए ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लोक संगीत में आइए सुनते हैं मनीषा हरवल्लभ शास्त्री और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। आगाज कर रहे हैं इनके स्वर में गाए इस गणपति वंदना के साथ।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लोक संगीत में आप सुन रहे हैं मनीषा हरवल्लभ शास्त्री और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। इनके ही स्वर में अब हम आपको सुना रहे हैं एक और निमाड़ी लोकगीत।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रही थी मनीषा हरवल्लभ शास्त्री और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। आपके साथ सहगान में गायक कलाकार थे संगीता साहोनी, सलोनी गीते, वादन में हारमोनियम पर नरेंद्र गीते और तबला पर प्रवीण गीते और झांझ पर जगदीश पाटीदार। हम आपको बता दें इनके ही स्वर में गाए कुछ और निमाड़ी लोकगीत आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमारे केंद्र को सुन रहे हैं प्रसार भारती न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। वक्त है सुगम संगीत का। सुगम संगीत में आज के हमारे कलाकार हैं अहमद रजा पप्पन। आइए इनके स्वर में सुनते हैं गजलें। आरंभ में सुनिए

सुगम संगीत में अभी आप सुन रही थी अहमद रजा पप्पन को। हम आपको बता दें, इनके ही स्वर में गाई कुछ और गजलें आप सुन सकते हैं आज शाम 6:30 पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में आइए सुनते हैं पंडित ब्रज नारायण का सरोद पर बजाया राग मुल्तानी।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित ब्रिज नारायण का सरोद पर बजाया राग मुल्तानी। इस सरोद वादन के साथ ही आज का शास्त्रीय संगीत समाप्त होता है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
1: हमारा अगला कार्यक्रम होगा आकाशवाणी भोपाल से। अब आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रीवा जिले की चिट्ठी। आलेख आरती श्रीवास्तव, वाचन स्वर दीपा सिंह। सावन का महीना शुरू होते ही रीवा के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महामृत्युंजय मंदिर, मन कामेश्वरनाथ, देवतालाब, खजुआ महादेव और गुड़ के शिव मंदिरों में सुबह शाम हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे गूंज रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए निक्षय भारत अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। जिले में 2,286 टीबी मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्हें 6 महीने तक पोषण आहार दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने 100 मरीजों की फूड बास्केट की जिम्मेदारी लेते हुए विधायक निधि से 3,60,000 रूपए दिए हैं। साथ ही समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों से भी निक्षय मित्र बनने की अपील की है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी रीवा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कायाकल्प योजना के तहत कुशाभाउ ठाकरे जिला अस्पताल को पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। अस्पताल को स्वच्छता में जिला स्तर पर पहला स्थान भी मिला है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पूर्व सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 70 पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और वर्तमान में सेवा दे रहे जवानों का सम्मान किया गया। समाज, शिक्षा, चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। इसी कड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत मेधावी बालिका सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ। जिले की प्रतिभाशाली बेटियों और महिलाओं को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई और छात्राओं को शिक्षा, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। रीवा जिले को सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भी सम्मान मिला है। तय लक्ष्य से ज्यादा राशि जुटाने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को प्रशस्ति पत्र और सम्मान शील प्रदान की। ये राशि शहीदों के परिवारों, पूर्व सैनिकों और सैन्य विधवाओं के कल्याण पर खर्च की जाएगी। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार संगठन सम्मेलन भी जीवा

0: में आयोजित हुआ। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान पूरे समाज का सम्मान है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि नई पीढ़ी उनके त्याग को जान सके। गंगेय विकासखंड के हिनौती गोधाम में भी नई सौगात मिली है। यहां नंदनी गौशेड और प्राकृतिक खेती पर आधारित बायो इनपुट प्लांट का लोकार्पण किया गया। उप मुख्यमंत्री ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। गौधाम को निराश्रित गायों के आश्रय के साथ प्राकृतिक खेती के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। दूसरी तरफ रीवा में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB का मीडिया संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धार्मिक आयोजनों की बात करें तो रीवा में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा भी पूरे उत्साह के साथ निकाली गई। लक्ष्मण बाग संस्थान से शुरू हुई यात्रा का शहर भर में पुष्प वर्षा और आरती के साथ स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने भी पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। प्रशासनिक तैयारियों के तहत जिले में जनगणना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय अधिकारियों और चार्ज अधिकारियों को गणना हैंडबुक भरने का प्रशिक्षण दिया गया। इस हैंडबुक के जरिए जिले की सामाजिक आर्थिक और आधारभूत संरचना से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन दर्ज की जाएंगी। वहीं जिला न्यायालय में आयोजित विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के मामलों का त्वरित निपटारा किया गया। कुल 82 मामलों में से 54 का आपसी सहमति से मौके पर ही समाधान हुआ। इन मामलों में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की समझौता राशि पर फैसला सुनाया गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी जिले में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्राम पंचायतों में महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा, समानता, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। और आखिर में बात गुरु पूर्णिमा की। जिले भर में ये पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम हुए जहां लोगों ने अपने गुरुजनों का सम्मान कर गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: आप सुन रहे थे रीवा जिले की चिट्ठी। आलेख आरती श्रीवास्तव का था, वाचन स्वर दीपा सिंह का। इसका प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया गया। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH हॉटलाइन।
2: MH हॉटलाइन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त योगेंद्र पांडे का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला फोन कॉल लेने से पहले हम आपको बता दें, आप भी हमें फोन करके अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। हमें फोन नंबर आपको बता दें, इन नंबरों पर आपको फोन करना है 0731 271 0223 और 0731 271 0224। इन नंबरों पर आप फोन लगाइए और सुनिए अपनी पसंद का गीत। इसके साथ ही वे श्रोता जिनकी फरमाइश पिछले कुछ कार्यक्रमों में पूरी हो चुकी है, उनसे अनुरोध है कि वो कम से कम 2 माह का इंतज़ार करें और उसके बाद ही फ़ोन लगाएं, क्योंकि नए श्रोता हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे तो कार्यक्रम की रोचकता भी बनेगी और कार्यक्रम को सुनने में भी आनंद आएगा। तो देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला फ़ोन कॉल। हेलो MH हॉटलाइन।
4: हेलो MH हॉटलाइन।
2: हाँ जी,
4: योगेंद्र पांडे जी नमस्कार।
2: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
4: आज आपसे पहली बार बात और मुलाकात दोनों हो रही है।
2: बिल्कुल, और इस बात के साथ आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका परिचय बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताएं।
4: यूनुस खत्री बोल रहा हूँ, खंडवा से।
2: जी खत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपकी पसंद का गीत बताइए।
4: जी मेरी पसंद का गीत है फिल्म अनोखी अदा का।
2: जी,
4: और गीत के बोल है किशोर कुमार की आवाज है। गीत के बोल है, हाल क्या है दिलो का ना पूछो सनम, तो आज मौसम सुहाना गजब ढा गया।
2: और हाल की बात की है आपने, तो सबसे पहले हम आपसे

0: ही पूछ लेते हैं कि कैसे हैं
1: जी
0: आपके हाल चाल।
1: हमारे हालचाल तो सर एकदम बढ़िया है।
0: जी
1: अच्छी 2 दिन से अभी खंडवा में खूब बारिश हो रही थी, बस घर ही से दुकान बंद करके
0: जी
1: और क्या है, बस हमारे 2 काम है, दुकान करो और
0: जी
1: रेडियो सुनो।
0: और बारिश होते होते जो है वो गजब ढा गया।
1: गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया।
0: और इस सुहाने मौसम के साथ आपकी पसंद का गीत भी आपके रेडियो पर आ रहा है, तो सुनिए और सभी को
1: जी
0: सुनाइए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन सर जी को राधे राधे।
0: राधे राधे, बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं बैरसिया जिला भोपाल से बात कर रहा हूँ सर, केसरी सिंह राजपूत।
0: जी केसरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और सबसे पहले कि जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे पहले आपकी पसंद का गीत जो है वो बताइए।
1: मूवी का नाम है सर प्यार का मौसम और गाने के बोल हैं, ओ नी सुनता ना रे प्यार का मौसम आया,
0: क्या
1: प्यार
0: बात
1: करके
0: है।
1: गाना है सर।
0: और अभी जो मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम, और उसके साथ में श्रावण मास हो, और फिर
1: हाँ जी
0: उसमें
1: सर,
0: इस गीत का आनंद हो, तो बात ही अलग हो जाती है। सही है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। आज तो सुबह से रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है
0: हाँ,
1: और सावन का महीना चल रहा है, तो सभी श्रोताओं को और आपको सावन मास की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां।
0: बिल्कुल। श्रावण मास जो है वो कहते हैं ना कि प्रकृति जो है ना वो एक अलग ही श्रृंगारित नजर आती है, और चारों ओर जब हम देखते हैं तो वो मौसम का समय ही बदल जाता है इस मास में।
1: हाँ बिल्कुल, हरियाली हरियाली और श्रद्धालु भी बिल्कुल, शिव मंदिरों पर भीड़ का तांता लगा ही रहता है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, भोले बाबा का जो है वो जो कहते हैं ना आशीर्वाद, और उनकी जो तेज है वो बिल्कुल अलग ही इस मास में महसूस होता है, हम महसूस कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, वो कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है।
0: और साथ में इस मौसम के साथ इस गीत का भी आनंद आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तो सुनिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सुनेंगे और मांगीलाल चंदेल जी, भगवान सिंह परमार जी, रानू जी सुन रही हैं देव आपको।
0: जी बिल्कुल।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन
1: जी सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ जिला गुना से।
0: जी मांगीलाल जी आपका स्वागत है एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में। और सबसे पहले अपनी पसंद का गीत जो है वो बताएं।
1: फिल्म का नाम है सावन को आने दो।
0: हाँ जी
1: और इसमें टाइटल सॉन्ग लगा देना आप।
0: बिल्कुल सावन को आने दो, लेकिन कहना चाहते हैं कि सावन तो आ गया है।
1: ये बात तो सही कही सर आपने, सावन तो आ गया और मैं कह रहा हूँ सावन को आने दो हैं।
0: लेकिन साथ में इस गीत के जो बोल है ना कि तुम्हें गीतों में ढालूंगा, है ना, वो जसपाल सिंह की आवाज में बड़े अच्छे लगते हैं सुनने
1: अच्छे
0: में।
1: अच्छे लगते हैं, बस आपने ये बात सही कही कि अच्छे लगते हैं।
0: और जसपाल सिंह के मतलब देखा जाए तो फिल्मों में गीत भले ही कम
1: अरे
0: होंगे,
1: जसपाल
0: लेकिन
1: सिंह और
0: जो गीत
1: लता तो फिर आप ये मान लो इनके युगल गीत भी अच्छे बहुत हैं, नदिया के पार में है,
0: जितने गीत गाए हैं वो बड़े अच्छे गाए हैं।
1: वो अच्छे ही लगते हैं इनके। सही है सर।
0: बताइए मांगीलाल जी क्या करते हैं आप?
1: मैं किसान हूँ।
0: किसानी कहाँ पे करते हैं? किसानी
1: गांव ग्राम सनोतिया में।
0: सनोतिया।
1: जी
0: अभी फसल सोयाबीन आपने लगाई होगी?
1: हाँ सोयाबीन और मक्का।
0: जी तो अभी लगभग बारिश पर्याप्त हो गई है सोयाबीन के हिसाब से?
1: आप पर्याप्त तो नहीं है लेकिन ये फसल है उसके लाने बढ़िया है।
0: जी जी
1: ज्यादा तो नहीं गिरता
0: फसल के लिए
1: लेकिन
0: पर्याप्त है।
1: फसल के लाने पर्याप्त है, बढ़िया समय समय पर गिर रहा है, बारिश हो रही है, बढ़िया है।
0: तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपकी फसल भी जिस तरह से ये गीत है और जिस तरह से इस गीत में खुशहाली है, वैसे ही आपकी फसल भी एकदम आकर और आपके घर को आपके परिवार को बिल्कुल खुशहाल करें और सभी लोग खुश रहें। गीत भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए।
1: जी।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन
1: जी। गुड मॉर्निंग पांडे जी।
0: बिल्कुल सुप्रभात, और अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से।
0: जी अरविंद जी, स्वागत है आपका एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में। और अभी आपसे सबसे पहले गीत जानना चाहेंगे, कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: जी फिल्म का नाम है जहर।
0: जहर, इसके बोल
1: जी इसका है अगर तुम मिल जाओ।
0: जी श्रेया घोषाल की आवाज में।
1: नहीं जेंट्स की आवाज में भी है शायद।
0: आपको कौन सा सुनना है?
1: जेंट्स वाली।
0: अभी फिलहाल हमारे पास ये जो गीत है
1: जी
0: ये जहर फिल्म का श्रेया घोषाल की आवाज में उपलब्ध है।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्ते सर,
0: नमस्कार।
1: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं।
1: हम भी अच्छे हैं सर, आप लोगों की दुआ है।
0: अपना शुभ नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं बताएं।
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालगा मैं इंदौर से।
0: अमीना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी पसंद का गीत बताइए
1: सर, फिल्म है हिना
0: जी।
1: और गाने के बोले मैं हूँ खुश नज़्म हिना।
0: बिल्कुल, और जैसे ही ये गीत है कि हम सभी लोग खुश रहें
1: जी
0: और
1: सर,
0: सभी लोगों को मतलब हर तरह से खुशी मिले,
1: जी
0: आनंदित
1: सर,
0: रहें और जीवन में खुश रहें, तो आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए आपके रेडियो सेट पर।
1: हाँ, थैंक यू सर।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सोन, जिला विदिश, मध्य प्रदेश से।
0: मोहम्मद हारून जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो रेडियो सेट आपके पास रखा है उसको थोड़ा सा दूर कर दें, आवाज वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है।
1: जी देखो, स्पीकर भी बंद है, रेडियो
0: जी,
1: भी बंद है, सब कुछ
0: अब ठीक है, अब ठीक है।
1: वो पहले पहले से भी बंद था। वो
0: अपनी पसंद का गीत बताएं।
1: राजा हिंदुस्तानी के सुना देना,
0: हाँ,
1: सानू की आवाज में, परदेसी परदेसी जाना नहीं।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत हम जरूर सुनवाएंगे। राजा हिंदुस्तानी फिल्म का जो है, ये इस फिल्म के गीत ऐसे हैं कि कभी भी सुन लिया जाए, कभी पुराने ही नहीं होते। आप क्या करते हैं? हेलो,
1: हेलो।
0: आप क्या करते हैं मोहम्मद हारुल जी?
1: हाँ, खेती बाड़ी करते हैं
0: खेती बाड़ी करते हैं, तो अभी
1: जी।
0: सोयाबीन की फसल आपने लगाई होगी।
1: जी मक्का की है, और सोयाबीन में 10 बीघे में सोयाबीन बोया, और कम से कम 18 या 15 बीघे में मक्का बोया।
0: तो फसल बढ़िया है इस समय?
1: जी हाँ, फसल तो बढ़िया है, लेकिन बारिश से वहाँ की बेसी बात हो रही है।
0: बारिश की और आवश्यकता है।
1: जी बारिश से कम 10 दिन से पानी नहीं गिरा, कचरा भी नहीं मारा, दवाई दवाई भी डाल दी, लेकिन पानी नहीं मिला उसके लिए, कचरे के लिए दवाई नहीं मारा, कचरा नहीं मारा। और जैसा इंतजार है, खाद मार डालेंगे, बगैर खाद डालेगा तो इसमें बारिश नहीं हो रही, तो खाद यूरिया भी नहीं डाल पा रहा है।
0: तो मोहम्मद हारुल जी, जैसी आपकी उम्मीद है बारिश की, और जैसा आपका गीत है कि ऐसे बारिश

0: अभी खाली नहीं जाने देंगे, है ना। तो गीत आप तक पहुंचा रहे हैं और बारिश भी हो और आपकी फसल अच्छी हो ऐसी उम्मीद के साथ गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए आपके रेडियो सेट पर। सामान्य बारिश अभी थोड़ा मोड़ा हल्की फुल्की हो रही है, लेकिन उतना जितनी आवश्यकता है वैसी तो नहीं है।
1: जी जी, जहाँ पर हल्की फुल्की जहाँ पर हो रही है।
0: जी जी, हम आप तक गीत पहुंचा रहे हैं, सुनिए है।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: नमस्कार सर जी, मैं रमेश बोल रहा हूँ सर जी।
0: रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में, और हम जानना चाहते हैं आप कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: सर जी, मैं बिहार बांका जिला गांव झिकुलिया से बोल रहा हूँ सर जी, और इस बार जिला फरीदाबाद बल्लभगढ़ से हूँ सर जी।
0: क्या बात है, आपका फोन आकाशवाणी इंदौर में पहली बार लगा है या इसके पहले भी आया है।
1: जी सर जी, पहले बहुत दिन पहले लगा था, लेकिन आज सर दूसरा बार लगा है सर, बहुत दिन के बाद लगा है सर जी।
0: तो आपसे बातचीत होगी, सबसे पहले अपनी पसंद का गीत बताएं।
1: फिल्म का नाम है सर जी नदिया का पार, और गाने का बोल है कोनी दिशा में लेके चल रे बटोहिया।
0: बिल्कुल, और ये दिशा जो है ये बिल्कुल उसी जगह पर जाएगी जहां पर आपकी फरमाइश है। और बताइए रमेश जी, क्या करते हैं आप।
1: बस सर जी, यहाँ काम की तलाश में आए हैं पड़े सर जी।
0: काम की तलाश में आप, मतलब किधर से, गांव से किधर आए हैं, फरीदाबाद।
1: हाँ जी, बिहार से आया पड़ा हूँ सर जी, फरीदाबाद सर जी।
0: जी जी तो अभी मतलब कब से रह रहे हैं यहाँ पे।
1: यहाँ पे सर जी 10 साल से रह रहे हैं सर जी कम से कम।
0: तो काम आपका ठीक चल रहा है।
1: जी सर, काम तो ठीक चल रहा है सर जी, और आपका आकाशवाणी इंदौर का कार्यक्रम भी सुनते हैं सर जी, न्यूज ऑन याद पे सर जी।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है, बताएंगे हमारे सभी श्रोताओं को।
1: कार्यक्रम तो जब सर जी यही वाला हमको सबसे अच्छा लगता है, जो कि सर जी आपका फोन कॉल लगा हुआ है सर जी। सबसे अच्छा सर जी,
0: और फोन कॉल लगता है, फिर उसके बाद पसंद का गीत जो है वो हमारे माध्यम से सभी श्रोताओं तक, आप तक पहुंचता है, वो कैसा लगता है, वो कैसा महसूस होता है पहुंचने के बाद।
1: सर जी जब फोन लग जाता है ना सर जी, लगता है कि सर आपसे बात करते रहो सर जी।
0: कब से सुनते हैं आप रेडियो।
1: रेडियो तो सर आज हम कम से कम 2003 से सुन रहा हूँ सर जी।
0: और 2003 से सुनते सुनते, और बताइए इतना समय आ गया और रेडियो और से प्रेम बढ़ता गया है।
1: जी सर, रेडियो का प्रेम बढ़ता गया, और हर आकाशवाणी सुनते हैं सर जी, बहुत अच्छा लगता है सर जी।
0: तो आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिए, अपनी पसंद भी समय समय पर फ़ोन करके पूरी करते रहिएगा, और आपके माध्यम से और सभी श्रोताओं को भी हम बताना चाहते हैं कि एक बार फरमाइश पूरी हो जाए तो कम से कम 2 माह तक रुकना है। रमेश जी, गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए।
1: धन्यवाद सर
0: जी।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ जी नमस्कार जी सर।
0: नमस्कार।
1: हाँ मैं ग्राम बड़वा जिला बारा राजस्थान से मंजूर अली बोल रहा हूँ साहब।
0: मंजूर अली जी स्वागत है आपका एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में। और सबसे पहले अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है निगाहें
0: जी
1: और गाने के बोले सावन के झूलों ने मुझको बुलाया।
0: बिल्कुल, और सावन के झूले तो बुलाते ही हैं क्योंकि सावन का महीना ऐसा है कि बिल्कुल झूलने का सभी का आनंद करता है।
1: हाँ मौसम ही ऐसा ही है
0: जी,
1: तो
0: हाँ
1: चारों तरफ और मौसम खुशनुमा रहता है, मन भी यही करता है सावन के झूलों में झूलने का।
0: और सावन के झूलों के साथ साथ आपके जो बारा राजस्थान का माहौल है वो भी थोड़ा सा बताइए हमको।
1: हमारे तरफ भी अभी बारिश तो ज्यादा नहीं हुई लेकिन हल्की फुल्की बारिश हो रही है, वैसे हरियाली छाई हुई है चारों तरफ। हाँ और फसल भी वैसे बादी सोयाबीन बादी मक्का बादी लेकिन वो पर्याप्त बारिश नहीं है अभी फिलहाल।
0: उम्मीद करते हैं कि बारिश भी अच्छी आए और फसल भी अच्छी हो और सावन के महीने में झूलों के साथ आप आनंद इस गीत का भी लीजिए। सुनिए अपने रेडियो सेट पर।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
1: ग्राम पाली, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से शिवम बोल रहा हूँ सर।
0: शुभम जी, आपका स्वागत है इस फोन इन कार्यक्रम में। और सबसे पहले अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: वो भी दर्द या गाना सुनना है, तू झूठी मैं मक्कार फिल्म का।
0: बिल्कुल, मतलब दोनों स्थितियों में फिल्म का नाम तो दोनों ही खराब हो गए।
1: हाँ, वो तो मूड के हिसाब से।
0: जी बताइए शिवम जी, क्या करते हैं आप?
1: हम सर खेती बाड़ी करते हैं
0: खेती बाड़ी का कार्य करते हैं और साथ में रेडियो सिर्फ फरमाइशी कार्यक्रम में सुनते हैं या सामान्यतः आकाशवाणी इंदौर को भी सुनते रहते हैं?
1: जी, ओनली आकाशवाणी इंदौर सुनते हैं सर। आकाशवाणी इंदौर मेरा फेवरेट है।
0: क्या बात है। और इसमें संबंधित कार्यक्रम कौन सा आपको पसंद है, एमएच हॉटलाइन के अलावा बताइए।
1: एमएच हॉटलाइन के अलावा मुझे युववाणी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है,
0: बहुत बढ़िया।
1: और मन भावन आता है गुरुवार को, वो भी बहुत
0: हाँ
1: अच्छा
0: जी,
1: लगता
0: हाँ हाँ
1: है। और पहले एक कार्यक्रम आता था शुक्रवार को,
0: जी।
1: 9:30 से 10:30 तक आता था। आज हमारी बारी है, वो भी सजीव फोन इन कार्यक्रम।
0: अच्छा, आपकी फरमाइश कितने दिनों बाद या कितने माह बाद पूरी हुई है?
1: सर ऐसा मान लीजिए मैंने जून या जुलाई के बीच में ही कॉल किया था।
0: क्या बात है। तो आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए आपके रेडियो सेट पर और आनंद
1: धन्यवाद
0: लीजिए।
1: सर।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
1: गांव बिटोड़ा भोर जिला वासी महाराष्ट्र से योगिनाथ भट्ट की बात करें।
0: आपकी आवाज़ थोड़ा कट के आ रही है, एक बार फिर से आपका नाम बताएं।
1: गांव बिटोड़ा भोर जिला वासी महाराष्ट्र से योगिनाथ
0: महाराष्ट्र से आपका नाम एक बार वापस बताएं
1: भट्ट की बात करें सर।
0: जी। अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है साजन।
0: साजन बोल।
1: बोले मेरा दिल भी कितना पागल है।
0: क्या बात है। तो ये गीत जो है वो आपको बहुत पसंद है।
1: जी, आपसे प्यार करते हैं सर।
0: क्या
1: जी
0: बात
1: जी
0: है।
1: सर,
0: और आप
1: आपके
0: का जो
1: मायने
0: ये
1: मायने आकाशवाणी के मायने यानी आप है सर।
0: जी, और आकाशवाणी के साथ जो ये प्यार है, ये प्रेम है, इसी के कारण तो हम लोगों का आपके प्रति और आप लोगों का हमारे प्रति जो ये प्रेम है, यही तो खुशनुमा है। और इसी को ही बोलते हैं कि हमारा
1: और
0: एक
1: मेहनत
0: रिश्ता जो है वो बनता जाता है।
1: कश लोग होने के कारण हमारे लिए सबसे मोहब्बत वाली चीज खेती है और दूसरे आप हैं।
0: बिल्कुल। और ये स्नेह जो है हमारे आपका बीच का बना रहे। और चूंकि समय बहुत कम है, हम गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए।
1: जी सर।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गाए साजन फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों के सजीव फोन इन प्रोग्राम MH हॉटलाइन से आपके रेडियो मित्र योगेंद्र पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम MH हॉटलाइन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय 11 बज चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में आज का विषय बताएं उससे पहले आपको एक सूचना दे दें कि हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं हर रोज सुबह 10:30 से 11 बजे तक, और हमारा फोन नंबर है 0755-266-0902। आज का हमारा विषय है बदलते मौसम के साथ खान पान में बदलाव। इसमें हम बात करेंगे कि जिस तरह मौसम बदल रहा है उसके साथ हमें अपने खान पान में किस तरह का बदलाव करना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। तो आपके फोन कॉल्स का इंतजार है, आइए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे।
1: जी, मैं मोरेना मध्य प्रदेश से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: हरविलास जी, कैसे हैं आप?
1: आपकी दुआ ईश्वर के पास बहुत अच्छी तरह से।
0: बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं हरविलास जी?
1: खेती किसानी करता हूँ महोदया में।
0: खेती किसानी, तो अभी क्या लगा रखा है?
1: अभी बाजरे की फसल लगा रखी है।
0: अच्छा, कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और आज का विषय मैं आपको बता दूं कि जो मौसम जिस तरह से बदल रहा है उसमें हमें खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए।
1: देखिए, मौसम बदल रहा है, कई बीमारियों का प्रकोप भी हो सकता है, हमें खान पान में बदलाव करना चाहिए। जो चीजें अपन गर्मियों के मौसम में खा रहे थे, ठंडी चीजें वगैरह, जैसे बेल वगैरह है, बेल का शरबत वगैरह खा पीते थे, वो अब नहीं करना चाहिए। तो पत्तियोंदार सब्जी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पत्तियोंदार सब्जियों में कीड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे पालक है, चौरई है, इस तरह की सब्जियों को त्याग देना चाहिए इस समय।
0: अच्छा।
1: तो इस तरह के खान पान में बदलाव करना चाहिए। जैसे 12 महीने का खान पान निर्धारित किया है, सामन सागन भादो दही, क्वार करेला कार्तिक मही, अगहन जीरा पूष धना, माह मिश्री फागुन चना, चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे गरी अषाढ़े बेल, इन चीजों को नहीं खाना चाहिए।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: जी नमस्कार, मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। ग्राम कटारिया खीरी मेरा गांव है और जिला राज।
0: जी कैसे हैं आप?
1: जी हम ठीक हैं और आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे और
0: जी
1: हमारे जो श्रोता गण हैं, श्रोता मित्र हैं, वो भी ठीक होंगे। कार्यक्रम के संत रहे हैं।
0: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का विषय मैं आपको बता दूं कि मौसम में जिस तरह का बदलाव हो रहा है उसके साथ साथ खान पान में किस तरह का बदलाव आप करते हैं जिससे कि आपका स्वास्थ्य जो है बेहतर बना रहे।
1: अब जो खान पान का जो रूटीन होता है, जो साल भर से चला आता है, विशेष तो कोई बदलाव नहीं होता है, परंतु जो मौसमी सब्जियां होती हैं या मौसमी फल होते हैं इनका तो खैर सेवन करते ही हैं, यही बदलाव होता है, परंतु खान पान में तो कोई बदलाव नहीं होता। जो साल भर से जो सब्जियां या दालें खाते आते हैं वही रूटीन चलता है। एक और बारिश के दिनों में एक ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शायद शहरी क्षेत्रों में भी इसको खाया जाता हो, हम यहाँ इसको किकोड़ा बोलते हैं, शायद करेला होता है, करेला ही होता है, जो वो छोटा छोटा सा होता है, वो छोटे आकार में, जो बारिश के मौसम में ही मिलता है।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद नहीं मिलता है, जंगलों में ये उगता है और ये जो सब्जी होती है ये वहाँ जंगलों से, गांव से तोड़कर लोग शहरों में लाते हैं। कुछ ग्रामीण भी अगर इस चीज को देखें कहाँ ये किकोड़ा करके जो एक करेला होता है, छोटा छोटा करेला, वो उसका सेवन अवश्य किया जाता है और वो जाने के बाद थोड़ा याद भी आता है कि इंतजार करते हैं कहाँ बारिश आएगी तो उस तरह का जो सब्जी है वो
0: अच्छा
1: खाने को मिलेगा।
0: मतलब आकार उसका करेले जैसा, जैसे करेले में कांटे से निकले होते हैं, मतलब खुरदुरा सा जो आकार होता है वैसा?
1: हाँ वो करेले अलग होते हैं
0: जी।
1: वो जो कड़वे जो रहते हैं वो अलग रहते हैं और ये अलग हैं।
0: अच्छा।
1: इसको किकोड़ा बोलते हैं।
0: किकोड़ा।
1: यदि कोई ग्रामीण हमारी इस बातचीत को सुनेगा तो वो इस चीज को अवश्य
0: समझ पाएंगे। बिल्कुल।
1: किकोड़ा जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ जो मालवा क्षेत्र है या इससे जुड़ा हुआ हमारा पड़ोसी जो राज्य है राजस्थान, इन क्षेत्रों में काफी जो है खाया जाता है। ये भोपाल में भी ये काफी मिलता है, हमारे जो श्रोता मित्र हैं उनसे हम चर्चा करते हैं क्या इस तरह की मिलती है, तो वो बताते हैं कि हाँ ये मिलता है भोपाल में भी।
0: अच्छा, इसके कुछ फायदे भी हों तो बताइए।
1: अब इस तरह का तो हमने अपने शरीर में बदलाव देखा नहीं, परंतु शौकिया तौर से अवश्य खाते हैं इसको।
0: बहुत अच्छा लगा राम नरेश जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी उसके लिए। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार,
1: मैं खातेगांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: गोविंद जी, आज कार्यक्रम का विषय है मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं उसके साथ खान पान में क्या बदलाव आप करते हैं या करना चाहिए?
1: मैडम, मौसम का क्या है, मौसम तो पहले तो सबसे पहले तो बरसात में पानी का ये विषय ध्यान रखना चाहिए, गर्म पानी वगैरह ये वो।
0: जी
1: पहली बात तो ये है, और थोड़े आसपास से जो गड्ढे वगैरह रहते हैं ये भी सफाई होना, पानी नहीं होना रुका हुआ।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: इसमें भी मच्छर रहते हैं। और रात्रि के समय
2: FM 101.6 MHz पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का इंदौर केंद्र। श्रोताओं, आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रूपाली, और आइए शुरू करते हैं फोन कॉल्स का ये सिलसिला। देखते हैं हमसे जुड़ने वाले हमारे पहले कॉलर कौन हैं। हेलो हेलो
3: जी, नमस्कार मैडम जी।
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, किन से बात हो रही है?
1: नमस्कार जी, मैं गोठिया बोल रहा हूँ, नेत्रा गोठिया।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी।
0: जी, आज कार्यक्रम का विषय है बदलते मौसम के साथ खान पान में किस तरह का बदलाव करना चाहिए।
1: हाँ जी, हमें अब ये चीजें ठंडी चीजें न खाने चाहिए।
0: अच्छा,
1: मौसम बदल रहा हो, गर्मी पे गर्मी चीज से गर्मी चीज से ये खाने भाई हो जाते।
0: अच्छा,
1: आवाज सही नहीं आ रही।
0: हेलो, हेलो,
1: आवाज सही नहीं आ रही।
0: नेत्राम जी से तो संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं, अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम में।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: नमस्कार, हम ग्राम काना खेड़ा तहसील कालपी जिला जालौन उत्तर प्रदेश राजेश विश्वकर्मा बोल रहे हैं।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है।
0: क्या करते हैं राजेश जी?
1: हम ब्रांड है, दुकान चलाते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हमारा एक विषय होता है जिस पर हम चर्चा करते हैं। तो कार्यक्रम का आज का विषय है बदलते मौसम के साथ खान पान में किस तरह का बदलाव होना चाहिए।
1: अब खान पान में ये है कि विशेष तौर से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और जैसे गर्मी पड़ रही है, खाना है तो खाना बासा आसा नहीं यूज करना चाहिए।
0: अच्छा
1: ये, और मच्छरों से विशेष तौर से सावधानी, मतलब इन दिनों मच्छर बहुत लगते हैं, तो अपना मच्छरदानी का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर का सुरक्षा करें।

0: जी
1: जितना मतलब यूज हो उतना बनाओ, उतना खाओ, ताजा ताजा खाओ।
0: अच्छा,
1: यही सब सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे आम का सीजन तो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन फिलहाल जैसे आम बड़ा अच्छा फायदा करता है, आम ज्यादा से ज्यादा आदमी यूज करना चाहिए। हाँ, ये फल वगैरह तो खैर सीजनी फल तो खैर जरूर खाना चाहिए, मौसमी फल जो आ रहे हैं
0: जी,
1: हाँ वो तो खैर खाना चाहिए।
0: अच्छा,
1: वो शरीर के लिए फायदा करता है।
0: हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा राजेश जी आपसे बात करके, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे
1: जी। मोहनलाल प्रजापत खम्मागणी हुकम।
0: नमस्कार मोहनलाल जी।
1: हाँ, जिला बालोतरा राजस्थान से।
0: कैसे हैं मोहनलाल जी?
1: बहुत बढ़िया मैम।
0: क्या करते हैं मोहनलाल जी?
1: मैं किराना की रेहड़ी लगाता हूँ और आप 1996 से प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज मौसम में जो बदलाव होते हैं उसके साथ साथ खान पान में कैसा बदलाव करना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे।
1: जैसी रीति जैसी नीति अपनानी चाहिए। जैसे गर्मी है तो हल्का भोजन लेना चाहिए, और सर्दी है तो उसके हिसाब से, और बरसात के मौसम में तो पूरा ध्यान रखना मच्छर का है। जैसे अंदर कुछ सब्जी में मच्छर भी पड़ जाए तो पूरा ख्याल रखना। हाँ, मतलब वो भारी भारी खाना नहीं खाना चाहिए, जो अपने शरीर को पसे ना वो नहीं खाना चाहिए।
0: अच्छा।
1: हाँ, वैसे हमने क्या कहते तो कुछ शरीर में तकलीफ होती है ना हमारे यहाँ, तो जैसे सर्दी में जुकाम हो गया तो हम चाय पत्ती और दाने होते ना, आग के दाने, मतलब पीछे हुए नहीं
0: जी,
1: उससे हम ऊँचा भी बोलते हैं उनको
0: जी,
1: और आप कांडे बोलते हो तो हम वो कांडे बना के पीते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है।
0: अच्छा, किस चीज का काढ़ा बता रहे हैं आप?
1: दाने होते हैं ना, ये दाना मतलब हरिया धनिया होता है ना, वो इसी तरह का वो दाना दाना होते हैं।
0: अच्छा, हरे धने की तरह का कोई दाना होता है?
1: हाँ, दाने मतलब वो पीले कलर में आते हैं गेहूँ के दाने के आकार का।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उसको क्या के आपने वो जैसे अदरक कूट देने, इसी में कूट कर अपना चाय पत्ती के साथ डाल देते हैं।
0: अच्छा, जिससे आपका जुकाम सर्दी वगैरह से आपका बचाव होता है।
1: उसमें दूध नहीं डालना पड़ता, सिर्फ चाय पत्ती, शक्कर और दाने।
0: अच्छा।
1: तीन चीजों का मिलान होने पर पीने से मतलब जुकाम हट जाता है, और सुबह लैम का पीते हैं।
0: अच्छा अच्छा, अरे वाह।
1: वो बाजरे का होता है, बाजरा डालते हैं।
0: हाँ।
1: तो तेल में भिगो कर घी में डालकर वो पीते हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छा मोहनलाल जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी।
1: बहुत
0: बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में फोन करने के लिए।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हेलो, नमस्ते मैडम जी।
0: जी, किन से बात हो रही है?
1: मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल दिवांगन मास्टर मोहटेर बोल रहा मैडम जी।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
0: क्या करते हैं मोहनलाल जी?
1: मैं टेलर मास्टर हूँ, यहाँ पर लेडीज और जेंट्स टेलर मतलब सिलाई होता है। और मेरा बेटा है दो, जो भूपेश कुमार देवांगन और सुशाल देवांगन, ये फैशन डिजाइनर है मैडम जी।
0: अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: मैं भोपाल कार्यक्रम में बहुत दिन के बाद लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले लगाते था, मैं पुराना बहुत पुराना सोता हूँ मैडम जी आपका, इस कारण। और बाकी तो कार्यक्रम चलता रहता है, और आपके जो पहले जो कार्यक्रम चलता था, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एक साथ कार्यक्रम चलता था मैडम जी, तो उस समय उस जमाने के हम सुनते आ रहे हैं।
0: अरे वाह, बहुत बहुत पुराने श्रोता है आप तो। चलिए, अब कार्यक्रम पे वापस आते हैं। कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, जहां आज का विषय है बदलते मौसम के साथ खान पान में बदलाव, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे।
1: ये देखिए, बरसात के मौसम में हमें सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए अभी बरसात हो रही है, अपने को ज्यादा भीगना नहीं है, और भीगना है अगर जरूरी है तो उसके लिए रेनकोट हो गया, छाता हो गया या और चीज हो गया ऐसा करके। और उसके बाद जो है, अपन मान लो फिर भी गए तो तुरंत कपड़ा अपना चेंज कर दीजिए, और उसके बाद
0: बिल्कुल ठीक है, रेनकोट वगैरह पहनना चाहिए, बारिश से बचना चाहिए, लेकिन खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए?
1: खाने पीने में बिल्कुल ताजा ताजा खाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ताजा जो खाएंगे ना, वह क्या बात है। अभी भी हम जब बरसात होता है तो ताजा ताजा भजिया वगैरह खाते रहते हैं, आपको बताए आपको हमारी पसंद की बात है ना। तो अब ज्यादा कहने के बाद होटल का भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, घर का ही मतलब बनाया हुआ कोई भी पकवान ज्यादा खाए तो वो ज्यादा अच्छा है।
0: अच्छा, घर का खाना चाहिए और ताजा खाना खाना चाहिए आप कह रहे हैं?
1: ताजा, बिल्कुल ताजा खाना चाहिए इस समय खासकर। हाँ, शरीर के लिए जो फायदा है उसको खाना चाहिए, जैसे कि फल फ्रूट हो गया, जैसे आज के मौसमी जो फल चल रहा है वो उनको खाना चाहिए। और जो बार बार जो अब आम का आखिरी आ गया है, बल्कि आम को नहीं खाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसमें अब कीड़े उड़े आने के डर है
0: ना,
1: तो इस तरह से वो जो फल है उसको, और जो सेहत जो इस समय खराब करे वो फल को नहीं खाना चाहिए, ना ही ऐसा व्यंजन खाना चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसान हो।
0: अच्छा जी, मोहनलाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार, किन से बात हो रही है?
1: चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ मैं
0: जी। आज का विषय है कार्यक्रम का, बदलते मौसम के साथ में खान पान में कैसा बदलाव होना चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे।
1: बारिश के मौसम में तो मैडम आजकल क्या है, खाने पीने की मीठे बनाते हैं गाँव खड़े में।
0: क्या बनाते हैं? आवाज आपकी ठीक से नहीं आ रही।
1: वो जो मीठे रोटी बनाते हैं गुड़ के साथ में
0: जी,
1: हाँ वो तो एक तो बहुत फेमस है
0: जी।
1: और एक दूसरी बात क्या है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा मतलब गंदी चीज नहीं खाना चाहिए, नदी नाले की चीजें नहीं खाना चाहिए, सब्जी भाजी भी जो लेके आते हैं जो किसान तोड़ के ले आते हैं और वो मतलब बेच देते हैं मंडी में जाके, वो चीजों को कोई भी चीज हो चाहे खेत की हो चाहे नदी नाले की हो, वो चीजों को धो के साफ सुफ करके फिर उसको बना के खाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और क्या, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए हमेशा
0: जी,
1: कोई गलत चीज नहीं खाना चाहिए। और बदलते मौसम में तो मौसम कम ज्यादा अभी चल ही रहा, पानी भी बराबर नहीं गिर रहा मैडम।
0: जी ठीक है, बहुत अच्छा लगा जगदीप जी आपने फोन किया उसके लिए।
1: ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना करके लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर में 362 करोड़ रूपये की अमृत सीवरेज परियोजना और 3 बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री गुरंदी में मत्स्य बाजार का लोकार्पण और डुमना नेचर पार्क में 11 लाख पौधरोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री हरदा में आयोजित अन्नदाताओं की समृद्धि का महाअभियान बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली सहभागिता भी करेंगे। प्रदेश के 10 शासकीय महाविद्यालयों में अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो स्थापित किए गए हैं। यहां रिकॉर्डिंग, संपादन और डिजिटल प्रसारण की आधुनिक सुविधाओं से तैयार अध्ययन सामग्री का उपयोग विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रथम जन विश्वास दौरे पर 7 अगस्त को छिंदवाड़ा में जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज चिन्हित शिकायतकर्ताओं से संवाद करेंगे और जिला स्तरीय विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। प्रदेश में 2 लंबे ब्रेक के बावजूद बारिश का कोटा पूरा हो गया है, लेकिन जून में कम बारिश की वजह से आंकड़ा 13% कम है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना नहीं है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पदक तालिका में भारत 23 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं। अब आपको सुनवाते हैं फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत बंधन फिल्म से है, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की मिली जुली आवाजें। भैरव अरुण ने इसे लिखा है, आनंद राज आनंद की धुन। और गीत को सुनने के लिए पत्र हमें आप सभी ने लिखे हैं, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजी, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा, नीतू, सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। और इसी गीत को पसंद किया है इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने।

घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। और कंवर कॉलोनी बड़वाह के हमारी श्रोता हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। आप सभी ने पसंद किया है चाइना गेट फिल्म का गीत। अलका याग्निक, शंकर महादेवन, विनोद राठौड़ और साथियों की आवाज़ में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार अनु मलिक। आइए सुनते हैं।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और अब इन सभी श्रोताओं की पसंद का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। राजा बाजार बिटियन से सुरेश केशरी, पूनम केशरी, प्रतीक केशरी, नया बाजार बक्सर से राजेश, पंकज और रोहन, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा, ग्राम महेशवाणी मलकापुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी, स्वप्निल और अजय खिरोडकर, और करूला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और श्वेब खान। आप सभी ने पसंद किया है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर का लिखा गीत, जिसका संगीत तैयार किया जतिन ललित ने और फिल्म का नाम गुलाम।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अंतिम गीत इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर हम पेश कर रहे हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी, सारिमपुर से राज एस डी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र यादव, छठिया पोखरा डुमराव से सुनील कुमार वर्मा, मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना। आशा रेडियो श्रोता संघ मैहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस और एकांश, आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, मुकाम पोस्ट बोरी खुर्द से हमारे श्रोता हैं सुधाकर राजे यादव, प्रशांत जगुताई, साक्षिताई, संचित प्रथमेश देशमुख, स्वामी देशमुख, प्रणाली सानवी और उनके साथी। आप सब सुनना चाहते हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की मिलीजुली आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसकी धुन तैयार की है जतिन ललित ने और फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: दर्शकों, खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
3: RBI कहता है, किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
4: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
5: क्या?
4: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
5: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: और सुनेंगे कैसे?
4: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: इस समय आप हैं हमारे साथ।
4: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान
5: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
7: क्या?
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
7: पर सुनेंगे कैसे?
6: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संग्रहालय से कार्यक्रम कामिनी काय कांतारे।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 17वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि को चंद्रपुर के लिए स्वयं देवी मणिभद्रा नदी पार करवा देती है। इधर त्रिलोचन दोबारा उज्जैनी जाते हैं। वे वैसिका से मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो उनकी बिछड़ी हुई सत्या दीदी हैं। अब आगे

0: उज्जैनी से निराश होकर भीषज्ञ त्रिलोचन सेवाश्रम लौट आए थे। मृगांक ने उन्हें आश्वस्त किया था कि जैसे ही महादेवी पिंगला और वयसिका के अवंती आने की सूचना मिलेगी, वो त्रिलोचन को समाचार पहुंचा देगा। इसकी प्रतीक्षा में भी धीरे धीरे डेढ़ महीना बीत गया। चंद्रसेन भी उदास सा था। त्रिलोचन ने उसे कह रखा था कि वयसिका के विषय में वो किसी से कुछ नहीं कहे। आचार्य नागदत्त त्रिलोचन और चंद्रसेन में आए हुए इस परिवर्तन को कई दिनों से अनुभव कर रहे थे और एक दिन पूछ ही बैठे।
1: त्रिलोचन, देख रहा हूं कि उज्जैनी से लौटकर तुम चुप से रहने लगे हो। कदाचित कोई चिंता जुड़ी है तुम्हारे साथ।
2: कर्तव्य पालन में कोई त्रुटि हुई है क्या? अरे
1: अरे सो नहीं। उज्जैनी से लौटकर चंद्रसेन भी गंभीर रहने लगा है।
2: आचार्य, कोई विशेष बात नहीं है। अपने सहपाठी मृगांक से कुछ जानकारी चाहिए थी, शायद भूल गया है। उसकी ओर से कोई संकेत नहीं मिल रहा है।
1: क्या फिर उज्जैनी जाना चाहते हो?
2: हाँ, सुना है महामात्य पूर्ण रथ से आपकी मित्रता है।
1: मित्रता थी, अब उनका अनुग्रह है। सेवा आश्रम को सहयोग करते हैं। उज्जैनी में वसुंधरा और पुत्र के अभिभावी हैं। उनसे तुम्हें कोई कार्य है क्या? राजकीय सेवा में जाने की इच्छुक हो क्या?
2: अरे नहीं आर्य, सुना है वहां सदैव स्वार्थ के प्रति सतर्क रहना पड़ता है। संदेह, दुत्कार, विद्वेष, विलासिता के पंख में धंसकर तुष्टि पाने का कभी सोचा ही नहीं। वहां सहज जीवन संभव ही नहीं है आर्य। मृगांक दत्त उज्जैनी में श्रीमानों की चिकित्सा करने वाला ख्यात चिकित्सक है। उसके संदेश की एक माह से प्रतीक्षा कर रहा हूं। संभवतः भूल गया है वो, अतः सोचता हूं स्वयं ही चला जाऊं। किसी आत्मीय को खोजना है, महामात्य से भेंट सहायक होगी।
1: ठीक है, मैं महामात्य को पत्र लिख दूंगा। इन दिनों वो बहुत व्यस्त है। महाराज किसी अनुष्ठान में है, वे लौटे नहीं है। मुझे सूचना मिली है कि नगर में सप्त दिवसीय राजकीय उत्सव की घोषणा हुई है, अतः यह एक सुअवसर भी है। तुम उज्जैनी चले जाओ। रानी पिंगला और उनकी सेविका के लौट आने का समाचार भी है।

0: त्रिलोचन जब उज्जैनी के भेषज्ञ मृगांक के आवास धन्वंतरी कुंज के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें चिन्हते हुए तत्काल द्वार खोल दिए। शुभंकर अतिथि को देखकर ही आदर से उठ खड़ा हुआ और मृगांक तो जैसे उनकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। दोनों सहपाठी गले मिले, वार्तालाप का सिलसिला प्रारंभ हुआ।
1: चलो, तुमने मेरे किसी कार्य की सराहना तो की मित्र। हाँ, इन दिनों महारानी पिंगला किसी से भेंट नहीं करती, वो गर्व से हैं। पूजा और प्रजाजन को दर्शन देने के लिए अवश्य एक बार राजभवन से बाहर आती हैं। सुनने में आया है कि महाराज भर्तहरि कहीं अज्ञातवास में हैं और कोई अनुष्ठान कर रहे हैं। हाँ, वयस्का से भेंट हो सकती है। महारानी की संरक्षा साज संभार का दायित्व उस पर ही है। फिर भी कल हम उससे मिलने की जुगत करेंगे, अभी तुम विश्राम कर लो। हाज उत्सव के अंतर्गत किसी लोक गायक बसंत का गायन है, सुना है राजा भर्तहरि के पदों को लोक भाषा में प्रस्तुत करता है वो।
2: मृगांक, मेरा एक आग्रह है।
1: कहो मित्र, कहो, आदेश के रूप में मानना पड़ेगा।
2: सायं जब हम भ्रमण के लिए निकलेंगे तो किसी वाहन का सहारा नहीं लेंगे।
1: क्यों?
2: मैं उज्जैनी को भीतर से देखना चाहता हूँ, गलियों, बीथियों, संकीर्ण मार्गों पर जाकर देखना चाहता हूँ कि बाह्य भव्यता के आवरण में यह यशस्वी नगरी कैसी है, कैसा है उसका यथार्थगत सत्य।
1: तुम नहीं बदले त्रिलोचन, वैसे के वैसे ही हो। तुम्हें जो देखना है देख लेना भाई। कोई है?
3: प्रस्तुत हूँ स्वामी।
1: इन्हें पहचानते हो?
3: जी।
1: इन्हें अतिथि कक्ष तक ले जाओ, सांध रात्रि में ये भ्रमण पर निकलेंगे, इन्हें तैयार रखना है।
3: जो आज्ञा स्वामी।

0: मृगांक, ऐसा वैभव तो इंद्रपुरी में भी नहीं होगा।
1: उज्जैनी का एक दूसरा रूप भी है त्रिलोचन, वहां भी चलेंगे। शायद कोई बुला रहा है।
2: स्वामी, आपको पुकारा गया था, आप सुन नहीं पाए। स्वामी जी, मुझे भेजा है, उनका निवेदन है कि क्षण भर गादी पर ठहर कर उन्हें मान देने की कृपा करें स्वामी।
1: हाँ, कौन है वो, किसने कहलवा भेजा है?
2: आप उनसे परिचित हैं, श्रेष्ठ जी ऋतु सागर।
1: अच्छा जाओ, हम आ रहे हैं। त्रिलोचन, ये अभिज्ञात धनपति हैं अवंती का, मेरा रोगी है मित्र। वो राज महालय का विश्वस्त रत्न विक्रेता है, हमारे काम का हो सकता है। हाँ, चलो मिल लेते हैं।
3: मृगांक दत्त और त्रिलोचन दोनों ऋतु सागर के निकट पहुंचते हैं।
4: ओ भाग्य जो आपने कृपा की, पधारिए, आसन ग्रहण करें। जब आप यहाँ से निकल रहे थे तो मैंने पुकारा था, शायद सुन नहीं पाए। धन्य हो गया मैं, आपके साथ ये जो है इनका परिचय पाने की उत्सुकता है।
1: ये मेरे मित्र, सहपाठी और अत्यंत निपुण भेषज्ञ हैं त्रिलोचन, उत्सव देखने के लिए उज्जैनी आए हैं।
4: ओहो, हमारा परम सौभाग्य, और आप इनके परिचय लाभ से वंचित कर रहे थे। अरे सुनो, कोई अतिथियों के लिए मधुर पेय तो लाना।
1: और आपका स्वास्थ्य कैसा है, कुछ लाभ हुआ?
4: यत्किंचित सफलता मिलने लगी है, महाकाल की कृपा हुई तो अपेक्षित फल भी शीघ्र मिलेगा।
1: करते रहिए अभ्यास और प्रयास। अरे हाँ, राज महालय में रत्न और आभूषण तो कदाचित आप ही पहुंचाते हैं।
4: हाँ, लेकिन क्यों पूछा आपने?
1: यूं ही, ये मेरे मित्र हैं ना।
4: हाँ।
1: ये अवंती के पूर्व महाश्रेष्ठी आर्य नागदत्त द्वारा स्थापित सेवाश्रम के इन दिनों प्रमुख चिकित्सक हैं। आश्रम विषय कोई कार्य है इन्हें।
4: अच्छा।
1: ये महारानी पिंगला से भेंट करना चाहते हैं।
4: ओ।
1: ये सुझाव इन्हें मैंने ही दिया।
4: अच्छा।
1: चूंकि महाराज इस समय उपलब्ध

0: नहीं है, तो मैंने कहा महादेवी से ही भेंट कर लें। इन दिनों राज महालय पर महाकाल की कृपा दृष्टि है।
1: हाँ वैद्यराज, आज मैं स्वयं महालय गया था। आपको आश्चर्य होगा कि महादेवी ने मुझसे भी भेंट नहीं की। मुझे महादेवी की कृत दासी वयसिका से ही भेंट करके संतुष्ट होना पड़ा।
0: अच्छा।
1: राजमहल में इन दिनों उसी की आज्ञा चल रही है। मुझे नहीं लगता कि महादेवी से भेंट संभव हो पाएगी। हाँ ये संभव है कि वो उत्सव में पधारें, लेकिन ऐसे सार्वजनिक अवसर पर नमस्कार प्रणाम ही हो पाता है। सुन रहे हैं आप?
0: हाँ हाँ कहते चलिए।
1: समझ लीजिए कि महादेवी से भेंट तभी हो सकती है जब या तो वो स्वयं बुलाएं अथवा महामात्य को लगे कि ये भेंट आवश्यक है। इस गर्भ के लिए संभवतः महामात्य उन्हें असुविधा में नहीं डालना चाहते। वैसे आप तो चिकित्सक हैं, सीधे महामात्य से क्यों नहीं मिल लेते? क्या पता आपका कार्य वही कर दे। अच्छा ये बताइए कि आज इधर कैसे आना हुआ?
0: कोई विशेष बात नहीं थी। हमारे ये मित्र उत्सव के रंग देखना चाहते थे। अच्छा अब हम चलेंगे श्रेष्ठी।
1: कृपा बनाए रखिए वैद्यराज, फिर कभी पधारे।
0: अवश्य।
2: खूब रोचक है व्यक्तित्व श्रेष्ठ ऋतुसागर का।
0: हाँ राजधानी में कुशल व्यवसायी होने के सर्वथा अनुकूल, ऊपर से विनम्र भीतर से कुटिल। देखा तुमने किस सफाई से उसने अपनी तरफ से ना कर दी। महादेवी से हमारी भेंट के आयोजन में वो सहायता नहीं करेगा मित्र, कोई अन्य उपाय देखना पड़ेगा। इस समय महामात से मिलने और महादेवी से भेंट की अनुमति पाने का एक ही मार्ग है।
3: वो क्या?
0: देवी वसुंधरा का सहयोग लो। प्रातः तुम देवी वसुंधरा से मिल लो, वो तुम्हें जानती भी है। अब चलें, रात्रि विश्राम किया जाए, आज कुछ और तो शेष रहा नहीं।

0: त्रिलोचन सारी रात सो नहीं पाए। वर्षों पहले का वो भयानक दुस्वप्न बार बार उन्हें झकझोरता रहा, जब जलदस्यु उनके पालियान को घेर कर चारों ओर से टूट पड़े थे, गोदावरी के वक्ष पर खड़क खड़कने लगे थे। मुट्ठी भर यान रक्षक देखते देखते काट डाले गए। पांचों विश्वस्त नाविकों ने सांस रहने तक संघर्ष किया, वे भी जीवित नहीं रहे। दस्युओं ने हिंसक पशुओं की भांति माँ के शरीर पर से सारे आभूषण नोच लिए। एक दस्यु जब दीदी को हाथ पकड़कर खींचने लगा तो माँ सह नहीं सकी और कृपाण लेकर उस पर झपटी। तभी किसी दस्यु ने उनकी पीठ में पीछे से भाला घुसेड़ दिया। एक ने बाल त्रिलोचन को गोदावरी की थरथराती लहरों में उछाल दिया। लहरों के बीच किसी ने उन्हें थामा। वो उन्हीं के यान का एक स्वामी भक्त नाविक था, जो त्रिलोचन की धोखनी सी चलती सांसों के साथ वक्ष से लगाकर डूबता तैरता तट तक ले आया और तट छूते ही निश्चेष्ट हो गया।
1: जीवन की वो अंधेरी रात भयाव, पीड़ाजनक और बार बार आंखों में उतरती हुई, मन मस्तिष्क पर गहरी छापों में पुनर्जीवित सदा सदा।
0: जब एक सुकुमार बालक मृत्यु के तांडव का असहाय एकाकी दर्शक था और नियति क्रूर अट्टहास कर रही थी, नाविक के शव के पास बैठा रात भर रोता रहा। वो शव के

0: प्रणाम देव। कहीं चलना है देव? वाहन तैयार करूं?
1: तुम्हारे स्वामी कब तक उपलब्ध होंगे मित्र?
0: मैं क्या जानूं?
1: देवी वसुंधरा का आवास जानते हो?
0: हाँ देव, यहां से अधिक दूर नहीं है।
1: अपने स्वामी से कहलवा दो कि हम देवी वसुंधरा की ओर गए हैं। चलो भाई।
0: जो आज्ञा।
2: कहो भेषज्ञ, तुम्हारे आश्रम में सब कुशल तो है?
1: महाकाल की कृपा है, आर्य नागदत्त सहित हम सभी कुशल से हैं।
2: कहो फिर, यहाँ आने का क्या हेतु है? मैं तुम्हारा क्या प्रिय कर सकती हूँ?
1: देवी, मुझे राजमहालय में महादेवी से भेंट करने की अनुमति चाहिए। ज्ञात हुआ है कि महामाती की अनुमति के बिना वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है।
2: ठीक ही सुना है तुमने, स्यात ये आवश्यक भी है। महारानी गर्भ से हैं और बहुत सावधानी से वो केवल देवार्चन और जन दर्शन के लिए ही बाहर निकलती हैं, वो भी कठोर अभिरक्षा में। फिर भी मैं प्रयत्न करती हूँ। महामात्य अति व्यस्त रहते हैं, किंतु उन्हें ये तो बताना ही पड़ेगा कि तुम महादेवी से क्यों मिलना चाहते हो।
1: आर्य, वस्तुतः बात यह है कि मैं महादेवी से नहीं, उनकी सेविका वैशिका से भेंट करना चाहता हूँ।
2: पहले क्यों नहीं बताया भेषज्ञ? तुम जलपान करो, मैं सूचना भेजकर वैशिका को यहीं बुलवा लेती हूँ। भेषज्ञ, क्या मुझे ये बताना चाहोगे कि वैशिका से क्यों मिलना चाहते हो? अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू?
1: क्या कहूं आर्य, जन्म हुआ कांचीपुरम की विश्व विभूत कलाधरी अनुप्रिया देवी के गर्भ से, जिन्हें अपने गृह राज्य से इसलिए निर्वासित होना पड़ा क्योंकि उन्होंने शक्ति और वैभव संपन्न नरेश की उपेक्षा करके एक विपन्न गायक संगीतज्ञ का वरण कर लिया। वो मेरे पिता थे, उन्होंने उस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में आश्रय लिया। माँ बताती थी कि पिता से मिलने से पहले वो नर्तकी के रूप में एक कठपुतली तुल्य थी। पिता ने उनकी कला में प्राणों का संचार किया। आजीविका के लिए दोनों ने प्रतिष्ठानपुर के निकट नृत्यशाला का निर्माण किया, जो स्वेद और साधना से संचित होकर कलाओं का प्रसिद्ध संस्थान बन गया। मां ने इतना ही बताया कि पिता की अकाल मृत्यु हुई। आर्य, राजा भले ही कितना कलारसिक गुण ग्राहक हो, पर सबसे पहले वो राजा होता है। राजा की आंखों में आंखें डालकर जीवित नहीं रह जा सकता। मां ने नहीं बताया कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु कैसे हुई। इसके पश्चात काल रात्रि का वो भीषण भंवर जिसमें सब कुछ डूब गया, एक साक्षी शेष जो मैं अभागा हूं और अकेला।
2: शांत हो जाओ वत्स, शांत हो जाओ, दारुण संस्मरणों से बाहर निकलो।
1: मुझे लगता है कि मेरी दीदी अभी जीवित है कहीं। अरुंधति नाम था उनका, उस यान पर आखिरी झलक देखी थी जब एक दस्यु उनकी बांह पकड़कर खींच रहा था और मां ने उस पर कृपाण से प्रहार किया था। भटक रहा हूं मैं उन्हें खोजता हुआ, कदाचित वैशिका से कोई सूत्र हाथ में आ जाए।
2: ठीक है भेषज्ञ, मैं अश्ववाही सेवक द्वारा वैशिका को संदेश भेजती हूँ, घड़ी भर में लौट आएगा। तब तक तुम आर्य नागदत्त के उस उपवन में भ्रमण करो जिसे मैंने संवार कर वैसा ही रखा है। उधर स्वल्पाहार भी तैयार हो रहा है।
3: संदेशवाहक लौटा और उसने सूचना दी कि महामात्य

0: अनुमति के बिना अंतेवास तक कोई नहीं जा सकता, यहां तक कि वहां प्रवेश के लिए स्वयं महामाती को भी सयात अनुमति लेना पड़े।
1: अब
2: इतना दुस्साहस, मुझे महामाते के घर पहुंचना ही होगा। चलो।
0: महामात्य आले के प्रवेश द्वार पर देवी वसुंधरा का वाहन फिर रोक दिया गया। कहा गया, प्रवेश की अनुमति नहीं है।
3: रक्षक, अपने अधिपति को तत्काल बुलाओ। सुना नहीं तुमने?
4: देवी, उन्हीं की आज्ञा है कि अगले आदेश तक किसी को प्रवेश की अनुमति न दी जाए।
3: क्यों अनुमति न दी जाए?
4: देवी, मैं क्या जानूं? आज्ञा का पालन कर रहा हूँ।
3: हम कहते हैं अपने अधिपति को बुलाओ रक्षक।
4: इस समय मैं ही अधिपति हूँ।
3: तुम जानते हो मैं महामात्य पूर्ण रथ की भावज हूँ।
4: मैं आपका क्रोध किसी भी सीमा तक सह सकता हूँ, किंतु अनुज्ञा के बिना प्रवेश नहीं दे सकता।
3: अवंती में नए आए प्रतीत होते हो, तो हमें लौटना ही होगा, यही ना? यदि कह सको तो अपने स्वामी को बता देना कि वसुंधरा आई थी।
4: ठीक है।
3: चलो त्रिलोचन।

0: सम्मानित नागरिकों, कृपया मार्ग दें। महामहिषी महादेवी पिंगला उत्सव में पधार रही हैं। सावधान, मार्ग दें।
1: महारानी के पीछे सतर्कता पूर्वक खड़ी हुई उस स्त्री को देखो मृकांक। क्या वही वैशिका है?
2: इस ओर मुंह करे तो बताऊं, बहुत समय से देखा नहीं है, देखा भी होगा तो ध्यान नहीं दिया। महादेवी की एक अन्य विश्वस्त सेविका है चंपा, वो भी हो सकती है। ठहरो, मैं पूछकर बताता हूँ।
3: तभी कोलाहल को चीरते हुए मंच से उद्घोषणा होती है।
0: कृपया शांत हो जाए, महादेवी ने आसन ग्रहण कर लिया है, अब हम उत्सव की संध्या का शुभारंभ करते हैं। पूर्व घोषणा के अनुसार आज लोक गायन और लोक नृत्य का कार्यक्रम है। आज यहाँ प्रसिद्ध लोक गायक बसंत अपनी प्रस्तुतियाँ आपके सामने रखेंगे। वह गायन के साथ साथ बांसुरी और मृदंग के कुशल वादक हैं, और उनकी विशेषता यह है कि वह महाराजा द्वारा रचित पदों को लोक भाषा में गाएंगे। तो महानुभावों, लोक गायक वसंत का स्वागत करें।
2: मैं तो अशिक्षित ग्रामीण हूँ, ये तो कालों के काल महाकाल भगवान भूतेश्वर की कृपा है कि आज मुझे गुणी जनों की इस पवित्र नगरी उज्जैनी में अपनी कला प्रदर्शित करने का स्वअवसर मिला है। मेरी बरसों पुरानी साथ थी कि कवियों के कवि महाराज भर्तृहरि के काव्य को अपनी टूटी फूटी भाषा में उनके समक्ष गाऊं। महाराज नहीं तो मेरा सौभाग्य है स्वयं अवंती की राज लक्ष्मी, महाराज की अर्धांगनी साक्षात देवी स्वरूपा महारानी यहाँ विराजमान है। हम वनवासी उनके चिर सेवक चिर ऋणी हैं। मैं अपने समस्त जनपद का प्रणाम उनके शीचरणों में निवेदित करता हूँ। मैं आपको मृदंग और मुरली सुनाऊंगा, किंतु गुणीजनों, इतनी देर तक स्यात हमारी महिमा मई महादेवी के लिए यहाँ बैठना श्रम साध्य होगा। अतः प्रथमा महाराज के काव्यांश का रसा स्वादन करें। सुर गुरु सेनाधीश सुरन की सेना जाके, शस्त्र हाथ में वज्र स्वर्ग सा दृढ़ गढ़वा के, ऐरावत असवार प्रभु को परम अनुग्रह, ऐसी संपत्ति साज सहित सोहित देवेश ये, सो युद्ध माहि लहित पराजय दान वनी सो दारुण, संपत्ति साज जब होए वृथा सबते अद्भुत काल गति। गुणीजनों, काल की चाल अद्भुत

0: है, कोई नहीं जानता। सो काल के भी महाकाल की शरण में है ये वसंत। दान भोग अरुनास होत तीन गति द्रव्य की, द्वय का जहां न वास वहां तीसरो अवसी है। साधु साधु।
1: सावधान नागरिकों, महारानी पिंगला अब प्रस्थान कर रही हैं। सभी जन कृपया अपने अपने आसन पर बैठे रहें। लोक कवि वसंत अभी रसिकों के मध्य उपस्थित रहेंगे। कृपया राज महिषी को मार्ग दें।
2: अरे उधर हटो, मारी नहीं जा रही है। हटो हटो, हाँ इधर।
3: अरे वैशिका को हम देख भी ना पाए,
0: अब क्या प्रयास करते रहना है।
4: नेपथ्य से मृदंग की थाप पूर्ववत गूंजती है।
5: अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 17वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित।

कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार शीलू अस्थाना, नागदत्त इरफान सौरभ, त्रिलोचन ओबेदुल्ला खां, मृगांक बालेंद्र सिंह, सेवक रामरतन सेन, ऋतु सागर, राकेश जैमिनी, वसुंधरा ज्योति केने, रक्षक विकार हुसैन और उद्घोषक आसफा बानू।

परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको याद होगा कि राजा महालय छोड़ देते हैं और पैठार होते हुए चंद्रपुर पहुंचते हैं। चंद्रपुर में वे चारुमित्रा से मिलते हैं, जो उनके काव्य की प्रशंसिका है। चारुमित्रा ही उन्हें भेष बदलकर उज्जैनी वापस लेकर आती है। उज्जैनी में वे क्या परिवर्तन देखते हैं, इससे हम अगले भाग में परिचय प्राप्त करेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 17वीं कड़वी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना करके लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर में विकास, स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़ी कई बड़ी सौगातें देंगे। वे गुरंदी में मत्स्य बाजार का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव हरदा में आयोजित अन्नदाताओं की समृद्धि का महाअभियान बलराम कृषि महोत्सव में भी वर्चुअली शामिल

0: होंगे। प्रदेश पुलिस के नशा विरोधी अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी पांच उपलब्धियों को मान्यता दी है। प्रदेश के 10 शासकीय महाविद्यालयों में अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो स्थापित किए गए हैं। इसके माध्यम से तैयार अध्ययन सामग्री का उपयोग विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रथम जन विश्वास दौरे पर शुक्रवार 7 अगस्त को छिंदवाड़ा में जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज जनहित शिकायतकर्ताओं से संवाद करेंगे और जिला स्तरीय विकास कार्य और शासकीय योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। प्रदेश में जुलाई में 2 लंबे ब्रेक के बावजूद बारिश का कोटा पूरा हो गया है, लेकिन जून में कम बारिश की वजह से आंकड़ा 13% कम है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना नहीं है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत ने जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पदक तालिका में भारत 23 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा केंद्र की है।

न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो कुछ काम करो। मैं पुनः दोहराती हूँ कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो कुछ काम करो। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ आपकी बहन स्मृति और मैं लेकर आई हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा, जिसमें होगी ढेरों बातें और संगीत। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कार्यक्रम महिला सभा। श्रोताओं, हम जिस स्वतंत्र देश में निवास कर रहे हैं, उसे स्वतंत्र करने में हमारे भारतवर्ष के अनेक वीर एवं वीरांगनाओं ने अपना भरपूर योगदान और जीवन दान दिया है, तब कहीं जाकर हमारा देश आजाद हो पाया है। लेकिन कई ऐसी भी वीरांगनाएं हैं जिनकी वीरता को इतिहास में पर्याप्त स्थान नहीं मिला, जिनमें से कुछ हैं मातंगिनी हाजरा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 73 वर्ष की आयु में सीने में गोली लगने के बावजूद वंदे मातरम गाते हुए तिरंगे को ऊंचा रखा था। तारा रानी श्रीवास्तव, 1942 में सीवान बिहार में पुलिस थाने में झंडा फहराते समय पति के शहीद हो जाने के बाद भी झंडा फहराती रही। उपा देवी, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ में पीपल के पेड़ के पीछे छिपकर 36 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था। रानी गाय दिल्ली, नागालैंड की क्रांतिकारी, जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ा था। दुर्गावती देवी, जिन्हें हम भाभी दुर्गावती देवी के नाम से भी जानते हैं, जो भगत सिंह और उनके साथियों की गुप्त रूप से सहायता करने वाली एक निडर क्रांतिकारी थी। असगरी बेगम, 1811 से लेकर 1857 के बीच इन्होंने उत्तर प्रदेश के थाना भवन मुजफ्फरनगर की एक निडर स्वतंत्रता सेनानी रही। सन 1857 में उन्होंने महिलाओं का एक सशस्त्र दस्ता तैयार किया और अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार मुकाबला किया, जिन्हें अंग्रेजों ने बंदी बनाकर जिंदा जला दिया था। इसी कड़ी में शामिल हैं एक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी महिला असमतुल्लाह खान। श्रोताओं, असमतुल्लाह खान भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी उन महिलाओं में मानी जाती हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। उनके जीवन के बारे में और संघर्ष को इतिहास में बहुत ही कम जगह मिली है। वो हमेशा देशभक्ति एवं समाज सेवा के कार्यों से जुड़ी रहीं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं को भी आगे आने को

प्रेरित किया। उनका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासक से मुक्त कराना और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाना था। अगर बात की जाए उनके इस योगदान के महत्व की, तो असमतुल्लाह खान सहित ऐसी अनेकों महिला हैं जिनका योगदान इतिहास में यथाउचित नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके साहस और देश प्रेम से आज भी लोगों को प्रेरणा मिलती है। श्रोताओं, हमने आज जाना कि किस प्रकार हमारी भारतीय बहनों ने एकजुट होकर आपस में कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों को लोहे के चने चबाए और इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज किया है। हमारे लिए इससे सीखने वाली बात यह है कि हर युग में, हर समय में नारी शक्ति ने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता का प्रमाण दिया है। हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। आज तो बालिका शिक्षा पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं है, तो हम सब और अधिक सूझबूझ और समझदारी से देश हित में कार्य करें, जिससे हमारा और हमारे देश समाज का कल्याण हो। श्रोताओं, हमारी बातें अभी और होंगी, तब तक सुने यह देशभक्ति से ओतप्रोत गीत, जिसे आवाज दी है आनंद राज आनंद ने।

0: तो श्रोताओं, अभी हमने सुना यह गीत जिसे सुरों से सजाया था आनंदराज आनंद ने। श्रोताओं, आपको बता दें कि हम आज यानी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक विश्व शिशु स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सलाह है कि जन्म के बाद पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाया जाए। इसके बाद 2 वर्ष तक पूरक पोषण आहार के साथ माँ का दूध पिलाएं। तो बहनों, शिशु स्तनपान के और क्या क्या फायदे हैं और यह क्यों है जरूरी, इसकी बृहद जानकारी दे रही हैं शिक्षिका श्रीमती प्रतिभा सिंह जी। तो आइए जानते हैं शिशु स्तनपान की और अधिक जानकारी।
1: प्रतिज्ञा जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
1: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: प्रतिज्ञा जी, इस समय 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक शिशु स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं, तो आप आज हमारे श्रोता बहनों को स्तनपान के फायदे और ये क्यों जरूरी है जरा बतलाइए।
2: सबसे पहले तो हम माताओं बहनों को ये बताना चाहेंगे कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर यदि माँ बच्चे को स्तनपान कराती है तो उससे माँ को भी फायदा होता है और बच्चे को भी फायदा होता है। बच्चा मानसिक रूप से मजबूत होता है, रोगों से लड़ने की उसके पास क्षमता बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता, और माँ के जो ब्लीडिंग होती है उसमें उसको सहायता मिलती है और माँ के जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचने के फायदे हैं यदि माँ अपने बच्चे को सही समय पे स्तनपान कराती है तो। एक चीज, दूसरी चीज और उसमें क्या है, एक चीज और ध्यान देने की बात है कि बच्चे को जितना ज्यादा माँ अपना स्तनपान कराती है बच्चा उतना फिजिकल मजबूत होता है, मानसिक रूप से बहुत तेज दिमाग का होता है और उसके भविष्य में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। वो क्या करता है, वो बच्चा जो माँ का जितना ज्यादा स्तनपान करेगा वो बच्चा बीमार कम होगा, उसके पास शुगर जैसी बीमारी कभी नहीं होगी और भी कई दिक्कतें हैं जो बीमारियां होती हैं जो बच्चों को देखने मिलती है। कम उम्र में शिशु अवस्था में बच्चों को बीमारियां आने लगती हैं तो वो बाहर का दूध पिलाने से होता है और माँ का स्तनपान कराने से बच्चे को बीमारी बहुत कम आती है और माँ भी स्वस्थ रहती है, मानसिक रूप से बच्चा बहुत तेज होता है।
1: बिल्कुल प्रतिज्ञा जी, आपका कहने का तात्पर्य है कि जो माँ का दूध होता है ये बच्चे के लिए एक बहुत शक्तिवर्धक
2: अमृत पान, उसे अमृत पान कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि माँ का स्तनपान बच्चों के लिए अमृत साबित होता है, एक वरदान बनता है और कई माताएं ऊपर का दूध पिलाने लगती हैं, तुरंत से कहती हैं दूध नहीं निकल रहा है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां तक हमारा सुझाव है माताओं बहनों को कि बच्चों को हमेशा अपना स्तनपान कराएं, जन्म के 1 घंटे के पहले ही अपना स्तनपान कराएं तो माँ भी स्वस्थ रहेंगी और बच्चा तो पूरी तरह से स्वस्थ ही रहेगा।
1: बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कि माँ का दूध, केवल माँ का दूध कब तक पिलाना चाहिए?
2: 6 महीने तक। एक प्राकृतिक तौर पे जो माँ के पास पोषण आहार बच्चों को देने के लिए रहता है वो 6 महीने तक, 6 महीने के बाद फिर बच्चों को बाहर की थोड़ी सी जैसे दाल का पानी है पिला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 2-2 चम्मच, 2-2 3-3 घंटे के अंतराल में बाहर की चीजें पिलाने लगे, देखने लगे कि बच्चे पचा पाता है कि नहीं पचा पाता। और बच्चे के जन्म के बाद माँ का तो रोल जितना रहता है उससे ज्यादा नानी दादी का भी रोल रहता है। यदि बच्चा दादी के यहाँ पल रहा है तो बच्चा माँ का दूध पी के सही समय से पचा रहा है कि नहीं, तो पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, फिर दादी के यहाँ बच्चा है तो दादी का रोल रहता है कि वो जन्म घुट्टी वगैरह जो हर्रा बहेर बनाती थी, छुआड़ा वगैरह जिसे आप अच्छे से जानती होंगी,

0: बिल्कुल, जिसे हम जन्म कुट्टी,
1: उसे जन्म कुट्टी, बाल जन्म कुट्टी के नाम से आता ही है वो। तो उसे माए लोग, माताएं लोग तो जो बच्चे जन्म देती हैं वो नहीं, उनकी दादी, बच्चे की जो दादी है नानी, इनका अहम रोल रहता है अपने नाती पोते को स्वस्थ रखने में।
0: बिल्कुल,
1: ये जहाँ तक घर घर ये बात सबको पता होगी, पर उसे बाल जन्म भुट्टी के नाम से ही जाना जाता है।
0: ये जो बाल जन्म भुट्टी है ये भी बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक मानी जाती
1: है। बहुत पाचन क्षमता बढ़ती है, उससे बच्चे का दूध तुरंत पाचन शक्ति बदल जाता है और उसकी प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ती है। आगे चल के बच्चा दिमाग से बहुत तेज होगा, मानसिक तौर पे इतना मजबूत होगा, फिजिकल मजबूत होगा, कहना चाहिए बहुत, मतलब पूरी तरह से बच्चा स्वस्थ रहेगा। वो थोड़ी मोड़ी बीमारियां जैसे हल्की बुखार है, उल्टी है, तो बहुत ज्यादा असर नहीं करेंगे, एक बार में ठीक हो जाएगा, ऐसा देखा गया है। ऐसा बच्चों के साथ होता है, यदि सही ढंग से बच्चों की देखभाल की जाए तो फिर ये बीमारियों पे कंट्रोल किया जा सकता है।
0: प्रतिज्ञान जी, कहा जाता है कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तब माँ और बच्चे में एक अनोखा लगाव पैदा होता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है।
1: आपने बहुत सही सवाल किया, बहुत सही सवाल किया। एक माँ और बच्चे का जिस तरह एक पेड़ और मिट्टी की जड़ से जुड़ी रहती है, जब तक पेड़ एक मिट्टी से जुड़ा रहता है तभी तक वो हरा भरा रहता है और बच्चा तभी स्वस्थ रहेगा जब तक वो माँ का स्तनपान करेगा। वो एक प्राकृतिक लगाव, मातृत्व बढ़ता है, माँ का मातृत्व बढ़ता है और बालक का जो है माँ के प्रति स्नेह, अटूट स्नेह होता है। देखिए, बच्चा जब माँ से जुड़ा रहेगा तो एक महीने में बच्चा माँ को पहचानने लगता है, माँ की तरफ देख के बहुत सारे ऐसे बाल क्रीड़ाएं करता है जिसे आपको आभास हो जाता है कि ये बच्चा मुझे पहचान रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो इस बात को तो आप भी समझ रही होंगी, हम भी समझ रहे हैं, जो हमारी श्रोता बहने हैं वो भी बहुत अच्छे से इस चीज का अनुभव किया जाता है जी।
0: तो आपने बहुत अच्छी बात कही। और प्रतिज्ञा जी, आखिरी में आप हमारी श्रोता बहनों को स्तनपान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी आज का जो परिवेश है, मेरे श्रोता बहने यदि सुन रही हैं मेरी बात को, जहां तक मेरी बात जा रही है, तो मेरी सभी श्रोता बहनों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि अपने बच्चे को स्वस्थ रखना है तो ज्यादा से ज्यादा समय, मतलब 6 महीने तक तो पूरी तरह से बच्चे की देखभाल में अपना स्तनपान कराएं, जो सबसे अहम योगदान रहेगा बच्चे को स्वस्थ रखने में। और इसके अलावा बच्चों को 6 महीने का समय माँ को, वैसे भी अब शासन प्रशासन छुट्टियां भी दे रहा है, मेंटेलिटी दे रहा है आपको, छुट्टियां दे रहा है बच्चों को, उस छुट्टियों के दौरान पूरा समय आप बच्चे में लगाएं, ताकि 6 महीने तक यदि बच्चा स्तनपान आपका कर लेगा, आपके पास रहेगा, तो वो भविष्य में बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और आपको भी बहुत अच्छा अनुभव होगा।
0: यानी कि बच्चे की भविष्य की यहाँ से नींव रखी जाती है, जिसे हमें मजबूत बनाना है।
1: जी बिल्कुल।
0: प्रतिज्ञा जी, आपने अपना बहुमूल्य समय, चूंकि आप शिक्षिका हैं, घर भी देख रही हैं, अपना विद्यालय भी देख रही हैं, इसके साथ साथ आपने हमारे कार्यक्रम के लिए बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी, थैंक यू।
2: तो श्रोताओं, अभी हमने सुनी यह भेंटवार्ता जिसमें शिक्षिका प्रतिभा सिंह जी ने बताया कि शिशु स्तनपान से क्या क्या फायदे हैं और यह किस तरह से माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। और इसी के साथ सुने यह गीत जिसे आवाज दी है उदित नारायण, प्रीति उत्तम और साथियों ने। श्रोताओं, जहां बात चल रही है महिलाओं के शौर्य और उनकी वीरता की, वही महिलाएं कला जगत की मलिका भी मानी जाती हैं, जो अपनी कला और अभिनय से लोगों के दिलों में राज करती हैं, जीते जी और मरने के बाद भी। हमारी भारतीय अभिनेत्रियां हमारी कला, संस्कृति और सिनेमा की पहचान है। वे अपने अभिनय से, अपनी प्रतिभा और मेहनत से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करती हैं और समाज में भी हम महिलाओं को सकारात्मक तथा संघर्षशील बनने की प्रेरणा देती हैं। कई अभिनेत्रियां फिल्मों के साथ साथ शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान देती आई हैं, जिनकी सफलता लाखों लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, अपने सपने पूरा करने की प्रेरणा देती है। इन्हीं अभिनेत्रियों के बीच आज हम बात करते हैं अभिनेत्री मीना कुमारी के बारे में, जिनका सादगी से भरा अभिनय लोगों को आकर्षित करता था। श्रोताओं, मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका वास्तविक नाम महजबी बानो था। वो हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी और अपनी

भावपूर्ण अभिनय शैली के कारण उन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है। मीना कुमारी का जीवन संघर्ष, सफलता और कठिनाइयों से भरा हुआ था। मीना कुमारी ने कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बचपन का अधिकांश समय खेल कूद या पढ़ाई के बजाय फिल्म के सेट पर बीतता था। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर हिंदी फिल्म उद्योग की उस समय की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल थी। उन्होंने बैजू बावरा, परिणीता, साहब बीबी और गुलाम और पाकीजा जैसी यादगार फिल्मों में काम किया। अगर बात करें उनके व्यक्तिगत जीवन की तो उन्होंने निर्देशक कमल अमरोही से विवाह किया, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव बढ़ा और वह दोनों अलग अलग रहने लगे। अकेलापन की वजह से धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और वे गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगी और 31 मार्च 1972 को महज 38 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मीना कुमारी की फिल्म पाकीजा उनकी मृत्यु के कुछ दिन, लगभग 50 से 55 दिन पहले ही सिनेमा में धूम मचाई थी। हालांकि मीना कुमारी की असमय मृत्यु से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव और अधिक हो गया था। पाकीजा आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी क्लासिकल फिल्मों में गिनी जाती है, जो मीना कुमारी के करियर की सबसे ज्यादा यादगार फिल्मों में एक है। तो बहनों, इसी के साथ सुने मीना कुमारी पर फिल्माया गया यह गीत, जिसे सुरों से सजाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमें अपने भोजन में बहुत ही संतुलित आहार शामिल करना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में हमारा पाचन तंत्र सबसे कमजोर होता है, जिससे संक्रमण के साथ साथ पाचन समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं, खाने पीने के मामले में इस मौसम में थोड़ी सावधानी रख लें तो हमारा स्वास्थ्य एकदम सही रहेगा। तो खुद को स्वस्थ रखने के लिए जानते हैं कुछ उपाय, जैसे ताजा और गर्म भोजन करें, बासी भोजन करने से बचें, पानी को फिल्टर किया हुआ या उबाल कर पिएं, हल्का भोजन हरी सब्जियां और मौसमी फल का सेवन करें, दही, कटे हुए फल या सड़क किनारे मिलने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन कम से कम करें, ज्यादा तली भुनी या मसालेदार चीजें कम खाएं, क्योंकि ये पाचन करने में समय ज्यादा लेती हैं। फल सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही उपयोग में लाएं। तो श्रोताओं, ऐसी सावधानी रखकर हम बरसात के मौसम का भरपूर आनंद उठाएंगे। तो श्रोताओं, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक दीजिए अपनी बहन स्मृति को इजाजत। स्वीकारे, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा केंद्र की थी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एक प्रकार से
4: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: और सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6:00।

0: 6 बजे।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे आकांक्षा पांडे के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा केंद्र की है।

इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे आकांक्षा पांडे के गाए कुछ लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा केंद्र की थी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है कनकलता रवि के प्रस्तुति। आकाशवाणी रीवा केंद्र की है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं कनकलता रवि।

0: इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे कनक लता रवि के गाए कुछ गीत और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: और सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

0: KERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
7: क्या?
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर
8: मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: जसपाल सिंह के गाए फिल्म श्याम तेरे कितने नाम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 12 वर्षों में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की है। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, आज ये संख्या 166 है।
2: एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में 362 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार अमृत 1.0 सीवेज परियोजना और कठौंदा, ललपुर और तेवर में बने 3 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डुमना नेचर पार्क में कैच द रेन अभियान के अंतर्गत 11 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत उमरिया, डुमना और कठौंदा में मियावा की पद्धति से 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा उमरिया में 5 एकड़ के पौध पहचान पार्क, डुमना में नवग्रह वाटिका और जल संरक्षण के लिए कैच द रेन अभियान के तहत सोक पिट्स बनाने का भी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान पीएम स्वनिधि के 500 हितग्राहियों को डिजिटल कार्ड प्रदान करेंगे। इसके साथ ही तिलवारा स्थित नव निर्मित थाना और पुलिस आवासों का लोकार्पण भी करेंगे। ग्वालियर में सावन मेले का औपचारिक शुभारंभ आज शाम 5 बजे श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला परिसर में किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस सावन मेले में विभिन्न प्रकार के आकर्षक झूले, मनोरंजन के लिए आधुनिक साधन, स्वादिष्ट व्यंजनों के फूड स्टॉल और खरीदारी के लिए विविध प्रकार की दुकानें लगाई गई हैं, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए मनोरंजन और खरीदारी का विशेष आकर्षण उपलब्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले जन विश्वास दौरे पर 7 अगस्त को छिंदवाड़ा में आयोजित जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज चिन्हित शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं के निराकरण की समीक्षा करेंगे। प्रदेश भर में 8 जनवरी 2027 तक चलने वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करना, शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण को सुनिश्चित करना और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी नियमित मैदानी भ्रमण कर आमजन से संवाद करेंगे। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम कर दी है। कटौती के बाद

0: दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2738 रुपये हो गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 48 घंटों के दौरान मालवा, निमाड़ क्षेत्र, विशेषकर इंदौर और उज्जैन संभाग में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, रतलाम और धार समेत पश्चिमी जिलों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सक्रिय मानसूनी सिस्टम अब कमजोर पड़ रहे हैं। ऐसे में अगले 4 दिनों तक कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि आगामी दिनों में मानसून फिर रफ्तार पकड़ सकता है और बारिश की कमी काफी हद तक पूरी होने की उम्मीद है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में समग्र शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अभियान के अंतर्गत कल एक दिवसीय महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले के ग्राम तनौड़िया स्थित एक बगिया मां के नाम का कलेक्टर ने कल निरीक्षण करते हुए योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की जानकारी ली और युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार, इनोवेशन और अप्रेंटिसशिप के अवसर एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए इंदौर जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 3 अगस्त को एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
2: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र की स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
2: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंदा के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
4: वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू GST राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
5: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उड़ीसा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि उड़ीसा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए

विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।

0: गया है और संचार व्यवस्था पूरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माही में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी। विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। ये हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं आपके पत्रों के माध्यम से भेजी पसंद को। पहला गीत आपको सुनवाएं, उसके पहले बता देते हमारे नए श्रोताओं के लिए हमारा पता। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भोपाल, श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। पता एक बार फिर दोहरा देते हैं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भोपाल, श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। और अब शामिल कर रहे हैं पहला पत्र। मिला है हमें छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश की। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक की। ये पत्र है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले अपनी पसंद भेजते हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से। सुनना पसंद किया है बेताब फिल्म का गीत, लता मंगेशकर शब्बीर कुमार का गाया, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा का, फिर श्रीमती सविता, बेबी स्वाति माखीजा, बेबी पूजा, छुटकी शरद कुमार डोंडवानी और पूरा माखीजा परिवार। कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली की, जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली अपने अनुरोध के साथ लिखते हैं दौलत बाग मुरादाबाद से। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान रेलवे कॉलोनी से लिखते हैं। दुबिहा नेवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अरुण कुमार राय और हैप्पी राय। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, श्री डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमारी संचित वायल, मौताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, करड़ा सिरोड से कुमारी सानवी और कुमार सर्वद्र देशमुख। बरसात की एक रात फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है, स्वर बत किया आर डी बर्मन ने।

अगली पसंद का गीत फिल्म बरसात से है, कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा यह गीत सुनना पसंद किया है। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबूर, रोजूबाई तड़वी, परू, मुबारक बारिकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारिकर के मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी की, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक परवेज, बिटिया रोजमीन, तैमूर तड़वी और तड़वी परिवार के सदस्य, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुस्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर की, मोहम्मद हलवाईयान, शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू की।

कार्यक्रम में अगली पसंद शामिल कर रहे हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया की। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो की। शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोड़कर अपनी पसंद भेजते हैं मलकापुर महाराष्ट्र से। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बानो की ये पसंद है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रूबिन राणा की है। और ये पत्र है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की। सुनना पसंद किया है गुप्त फिल्म का गीत, अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया हुआ है। विजू शाह के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने गीत लिखा।

0: अलका याग्निक और कुमार सानू के गाय फिल्म गुप्त के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर में 362 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार अमृत 1.0 सीवेज परियोजना का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश भर में 7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करना, शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण को सुनिश्चित करना और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। ग्वालियर में सावन मेले का औपचारिक शुभारंभ आज शाम 5 बजे श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला परिसर में किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे। वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना, तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपये कम कर दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको संध्याकालीन सभा के मुख्य आकर्षण।

शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा केंद्र की होगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर और शाम 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान प्रसारित करेंगे। इस सप्ताह संसद में रात्रि 8:00 दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में रात्रि 8:15 पर। रात 9:30 पर साहित्य भारती कार्यक्रम होगा और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे चिन्मय सिस्टर उमा और राधिका का कर्नाटक वोकल ड्यूएट। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में किसान वाणी कार्यक्रम शाम 7:30 पर आप सुनेंगे। ये थे सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 3:02 होने वाले हैं। मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण समाप्त होता है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। और इस बीच हमारा प्रसारण DTH पर जारी है।

बजकर 33 मिनट 47 48। और माइक टू से समय मिला लीजिए 4:33 54 55 56। ठीक है, कंप्यूटर लेफ्ट राइट पीसी का प्ले स्टोर कार्ड।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हमारी सांध्यकालीन सभा में सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार साथियों, मैं ईरा
1: और मैं अनुभूति स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज दिन है शनिवार का और शनिवार का दिन होता है हमारे और आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स का।
1: जी हाँ दोस्तों, आज के दिन का हम सभी इंतज़ार करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आप भी उतने ही एक्साइटेड रहते हैं और हो भी क्यों ना।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों आज हम और आप मिलकर करेंगे ढेर सारी बातचीत और आपको सुनवाएंगे आपके फरमाइशी गीत भी।
1: लेकिन इरा, उससे पहले बता देते हैं हमारे श्रोताओं को कि आज के प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है?
0: और साथियों, दूसरा प्रश्न है, हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप सभी को खोजने हैं और सही उत्तर कार्यक्रम के अंत में हम लोग आपके साथ साझा करेंगे ही।
1: बिल्कुल, और हमें फोन करने के लिए आप हमारे नंबर्स 2710

0: 224 और 2710223 पर कॉल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और साथियों हमारा एसटीडी कोड है 0731, तो इसे डायल करना बिल्कुल ना भूलें। और अनुभूति, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, तो आइए फिर उनसे बात करते हैं और जानते हैं कौन सा गीत वो सुनना चाहते हैं आज। हेलो फ्रेंड्स,
2: आप लोगों की एक मुस्कुराहट ने हमें बेहोश कर दिया, हम होश में आने वाले थे, फिर आप दोनों Hello. ने मुस्कुरा दिया।
1: क्या बात है, मुझे लग रहा है हसीना भी, जिसे हमारी बातचीत हो रही है।
2: जी जी, हसीना भी वंशरी बोल रही, पालदाना का इंदौर।
1: बताइए हसीना जी, फिर क्या फरमाइश लेकर आई हैं आज आप हमारे लिए?
2: हमारे यहाँ बहुत दिनों बाद थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी मैडम, तो फिल्म का नाम तेरी मेहरबानी है और गाने के बोल हैं

0: ये सुना दीजिए।
1: क्या बात है, सावन का महीना और फिर इंदौर में इतने दिनों बाद थोड़ी थोड़ी जो बारिश है वो आई गई है, तो गाना तो आपने बहुत ही अच्छा चुना है। और ये बताइए आप कैसी हैं?
0: बहुत अच्छे मैडम, और दुआ करते हैं आप लोग भी, सभी अनाउंसर बहुत अच्छे रहे, तृप्ति जी भी और आप लोग भी बहुत अच्छे रहे, सलामत रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे प्यारे श्रोताओं से बात करके हम तो अच्छे रहते ही हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप हमारा कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के हर कार्यक्रम को सुनती हैं, उन्हें इतनी और हम सभी को इतनी सराहना देती हैं, तो आप इसी तरह कार्यक्रम सुनते रहिए। और आपका जो फरमाइशी गीत है वो भी हमें मिल चुका है, तो आइए फिर उसे सुन लेते हैं।
0: जी शुक्रिया मैडम।

0: तो हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं दीदी, और आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है कार्यक्रम।
0: क्या बात है। अच्छा, कौन सी फरमाइश लेकर आए हैं आज आप, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है हीना, और गाने के बोले बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया।
0: अरे वाह, बढ़िया गाना चुना है आपने, एकदम नॉस्टैल्जिक वाला, तो मिल भी चुका है हमें, सुन ले गाना।
1: बिल्कुल दीदी, सुना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।

0: हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड
1: जी नमस्ते,
0: जी नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी बिल्कुल, हमने आपको पहचान लिया, आप तो हमारे नियमित श्रोता है।
1: जी थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल बढ़िया है, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और अभी जो गाना चल रहा था ना, बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया।
0: जी जी
1: जी बहुत ही खूबसूरत गाना है और काफी लोकप्रिय हुआ था ये गाना।
0: बिल्कुल, बहुत ही लोकप्रिय गाना था उस समय का भी और आज तक इसे पसंद किया जाता है, एवरग्रीन गाना जो है ये कह सकते हैं हम है। अच्छा ये बताइए, आप कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं?
1: मैं जो गीत सुनना चाहता हूँ ना, वो भी एवरग्रीन गाना है
0: जी।
1: काफी उस समय पर लोकप्रिय हुआ था और आज भी काफी चल रहा है। बरसात फिल्म का है, तेरी अदाओं पे मरता हूँ।
0: अरे वाह, बढ़िया गीत आपने चुना है। आज सारे हमारे पास पुरानी फिल्मों की गीत आ रहे हैं ईरा, जो बहुत अच्छी बात है, मतलब सावन का मौसम है। अच्छा हमने सुना कि आप उज्जैन से हैं, महाकाल की नगरी से हैं,
1: जी
0: तो बताइए फिर कुछ कैसा क्या मौसम है उज्जैन में?
1: जी बारिश हो रही है यहाँ पे 3-4 दिन से रुक रुक कर, और कांवड़ यात्रियों की मतलब शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर दूर दूर से बाबा महाकालेश्वर के यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं लोग। जलाभिषेक कर रहे हैं, अपने अपने तरफ से पूजा अर्चना कर रहे हैं और काफी अच्छा मतलब दृश्य मतलब ये भी यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर में बन रहा है।
0: क्या बात है, अच्छी बात है ये तो, क्योंकि सावन का महीना है तो शिव जी की पूजा अर्चना तो होती है। फिलहाल हमें आपका गीत मिल चुका है।
1: आपको
0: जी जी बताइए।
1: जैसे कि सोमवार को शाही सवारी भी निकाली जाएगी यहाँ पर, जिसकी तैयारी मतलब शुरू से कर दी गई है, काफी रास्ते चौड़े कर दिए गए हैं, जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस को मतलब खड़ा करेंगे ताकि मतलब भीड़ इकट्ठा ना हो, और मतलब जो दर्शन के लिए लोग बाहर से आते हैं ना,
0: जी जी,
1: उनके लिए खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था भी कर दी गई है।
0: क्या बात है, पहली सावन सोमवार की जो सवारी है बाबा महाकाल की, पहली सवारी होने वाली है ये, है ना?
1: जी बिल्कुल,
0: तो आप तुम हमें लगता है जरूर इसका हिस्सा बनेंगे ही, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हम लोग भी उज्जैन कभी आएं और सवारी का हिस्सा बने, सवारी का आनंद लें, क्योंकि हाँ ये बात ज़रूर है कि देश से प्रदेश से दूर दूर से लोग सवारी को देखने आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्रशासन ने इतने अच्छे तरीके से सारी व्यवस्था की है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सवारी निकल पाए और किसी को परेशानी भी ना हो।
1: हम तो यही चाहेंगे कि आप भी मतलब परसों ट्रेन पकड़िए सुबह और जल्दी आ जाइए उज्जैन से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास तो हमारा यही रहेगा, हम भी आना चाहते हैं। और आपका फरमाइशी गीत जो है वो हमें मिल चुका है, तो आइए फिर उसे सुन लेते हैं।
1: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
0: हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अगर कोई मुझसे ये पूछे
0: क्या

0: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मैं बारोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ मैडम।
0: अच्छा, बताइए कौन सी फरमाइश लेकर आज आप आए हैं, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? आपकी आवाज हमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस के साथ आ रही है, आप अपना रेडियो सेट से थोड़ा सा अपना जो फोन है वो थोड़ा दूर रखिए तो अच्छा रहेगा।
1: हाँ मैडम, बहुत दूर हो रही
0: है जी। अब बताइए अब कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: वो फिल्म सुहागा, तेरी रब ने बना दी जोड़ी।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा गीत है। और ये बताइए कि सावन का महीना शुरू हो चुका है तो क्या तैयारी है, कहाँ कहाँ दर्शन करके आए हैं आप, और इस महीने कहाँ दर्शन करने जाने वाले हैं?
1: दर्शन हाँ, जमलेश्वर महादेव है पास में, करीबन 12-15 किलोमीटर है। वहाँ भोलेनाथ का बहुत बढ़िया स्थान है, तो हम कावड़ यात्रा लेकर के उनका अभिषेक करने के लिए जाएंगे 6 तारीख का।
0: क्या बात है, आप कावड़ यात्रा लेकर जाते हैं?
1: हाँ जी हाँ,
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कावड़ यात्रा लेकर जाना सावन के महीने में खासकर। और जो भोले बाबा के भक्त हैं वो तो सब जानते ही हैं, तो हम लोग मान रहे हैं आप भी भोले बाबा के जो है भक्त हैं।
1: हाँ तो मैडम, हम बालोदा लखा से करीबन 1500 यहाँ से कावड़ यात्री निकलते हैं और बाबा भोलेनाथ का वहाँ अभिषेक करके आते हैं।
0: क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगा ये बात जानकर। और हमारे सुनने वाले जो श्रोता हैं, मुझे लगता है उनमें से कई लोग हो सकता है उज्जैन के आसपास या बालोदा के आसपास होंगे, तो आपसे जुड़ना भी चाहेंगे।
1: हाँ जी,
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है ये तो। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस कावड़ यात्रा के लिए। और फिलहाल
1: हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: जी। अब आपका गीत हमें मिल चुका है, आइए सुनते हैं।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फ्रेंड, हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: जी, नमस्ते मैम
0: क्या नाम है आपका?
1: जी। मैं अरविंद अग्रवाल।
0: एक बार आप फिर से अपना नाम दोहरा सकते हैं? आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंची।
1: जी, मैं अरविंद अग्रवाल बोल रहा हूँ मैम। जी,
0: अरविंद जी, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: श्रीनगर जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से। जी
0: उत्तर प्रदेश से। और कौन से गाने की फरमाइश आज हमारे पास लेकर आए हैं आप?
1: जी फिल्म का नाम रहेगा सावन को आने दो,
0: और गीत
1: और
0: के बोल?
1: जी टाइटल सॉन्ग है इसका।
0: अरे वाह, बढ़िया गीत है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आप हमसे बात कर रहे हैं और आपने कॉल किया है। वहाँ कैसा मौसम है जहाँ आप रहते हैं?
1: जी बहुत दिन से, यहाँ तो 15 दिन से बारिश नहीं हुई। बारिश का इंतजार है हम लोगों को बहुत।
0: अच्छा,
1: जी
0: बारिश का इंतज़ार है। वैसे
1: जी
0: इंदौर में बारिश का मौसम है, कल भी बहुत बारिश हुई थी, तो हम
1: जी
0: ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी बारिश, थोड़े से बादल
1: बिल्कुल
0: जो
1: जी
0: हैं थोड़े से
1: चाहिए
0: वहाँ
1: हमारे
0: भेज
1: यहाँ
0: दें
1: भी।
0: जी। और गाना आपने जैसा कि चुना है सावन को आने दो, तो हमें लगता है हो सकता है ये जो गाना है इससे सच में सावन आ जाए उत्तर प्रदेश में या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर।
1: जी और आप अपने बारे में बताइए। आप सभी से पूछते हैं अपने बारे में, बताइए। आप आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ
0: क्या जानना चाहते हैं आप हमारे बारे में?
1: कहाँ से हैं आप, क्या। जी
0: हम इंदौर से हैं, इंदौर में ही रहते हैं। आकाशवाणी इंदौर पर आपने कॉल करा है, तो हम इंदौर से ही, इंदौर केंद्र से ही बात कर रहे हैं आपसे। और
1: केंद्र से तो कर
0: युववाणी
1: रही हैं, वैसे
0: जी,
1: वैसे कहाँ से हैं आप।
0: हम लोग इंदौर से ही हैं, इंदौर के ही रहने वाले हैं और युववाणी कार्यक्रम करते हैं। तो आज तो फरमाइशी प्रोग्राम है हमारा, लेकिन रोज़ शाम को 5 बजे युववाणी कार्यक्रम आता है, तो आप वो भी सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को भी मिलेगा।
2: जी
1: जी हमारे यहाँ की माजदा खान है ना छतरपुर की, तो मैंने इसलिए आपसे पूछा।
0: जी
2: अच्छा
0: जी
2: अच्छा
0: वो
2: अरे
0: भी
2: वाह, क्या
0: हमने
2: बात
0: जानते
2: है।
0: हैं, आकाशवाणी इंदौर केंद्र में ही हैं, वो अनाउंसर हैं। और
2: बड़ा अच्छा लगा ये
0: जी
2: जानकर कि आप उन्हें भी जानते हैं। इसी तरह आप हमारे कार्यक्रम सुनिए, युववाणी सुनिए। आपका
1: धन्यवाद
2: गीत आइए सुन लेते हैं हम अब।
1: आपका फोन
2: जी
1: लेने के
2: धन्यवाद।
1: लिए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आइए इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड।
2: हेलो फ्रेंड।
1: हेलो
2: जी, नमस्कार दीदी जी।
1: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
2: वीरेंद्र सिंह परियार, गांव मध्य प्रदेश।
1: वीरेंद्र जी, आपकी आवाज हमें बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे आप?
2: हाँ
1: बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहते हैं?
2: ये चांदनी फिल्म का
1: चांदनी
2: काली घटा टकराई।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा गीत आपने सुना है और गीत के बोल भी बहुत अच्छे हैं। कोई खास वजह ये गीत सुनने के पीछे?
2: ये बारिश का मौसम चल रहा है ना, 3-4 दिन से अच्छी बारिश हो रही है, सावन का महीना है।
1: हाँ जी
2: हाँ।
1: बढ़िया बढ़िया, तो अच्छा गीत आपने सुना है, आइए सुन लेते हैं फिर
2: जी। ठीक है।

0: हेलो फ्रेंड्स
1: हेलो, नमस्कार।
0: जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? बहुत
1: सबसे पहले तो आप दोनों महान विभूतियों को मेरा नमस्कार। और मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, डोंगरगांव, महू से।
0: महू से बात कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और कौन से गाने की फरमाइश आप आज लेकर आए हैं?
1: पहले मैं आप दोनों का नाम जानना चाहूंगा, फिर मैं गाना बताता हूँ।
0: जी, मैं इरा और मेरे साथ अनुभूति आपके साथ है आज।
1: बड़े खूबसूरत नाम है। अच्छा, पहले ये बताएं कि इरा का मतलब क्या होता है?
0: ईरा का मतलब होता है देवी सरस्वती, और अनुभूति का मतलब होता है एहसास, फीलिंग।
1: क्या बात है, दोनों के हमने दर्शन कर लिए हैं। और गाने गाना है आशीर्वाद फिल्म का, और लता जी की आवाज है, गाने के बोल हैं। चीर चीर बरसे।

0: आहा, क्या बात है,
1: आप तो बहुत ही अच्छा गाते भी हैं।
2: मैंने संगीत सीखा है।
1: अच्छा, अरे वाह। और लता जी का गाना आपने चुना है, तो लता जी चूंकि इंदौर से है तो हमें बहुत अपनापन सा भी लगता है।
2: जी।
0: क्या बात है, बढ़िया गीत आपने चुना है, आइए सुन लेते हैं।

0: तो दोस्तों, ये था हमारा आज का युवाणी कार्यक्रम और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और जिन भी श्रोताओं के, जिन भी कॉलर्स के कॉल नहीं लग पाए हैं, वे बिल्कुल निराश ना हो। अगले शनिवार आप फिर से हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइशें बता सकते हैं।
1: बिल्कुल। और साथियों, अब वक्त आ चला है उन दो प्रश्नों के उत्तर बताने का जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछे थे।
0: तो पहला प्रश्न था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, जिसका उत्तर है एस्कॉर्बिक एसिड।
1: और साथियों, दूसरा प्रश्न था हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, जिसका उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त इरा
0: और अनुभूति को।
1: नमस्कार।

वजीर फिल्म का ये गाना सुना भी आपने सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। विधु विनोद चोपड़ा ने इसके लिरिक्स लिखे थे और संगीत था शांतनु मोहित्रा का।

कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य के स्वर में सुन रहे थे अभी आप ये गाना। फिल्म का नाम था वेक अप सिड। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत था शंकर एहसान लॉय का।

0: श्रेया घोषाल और जावेद बशीर के स्वर में सुना अभी आपने गाना। फिल्म का नाम था भाग मिल्खा भाग। इस गीत को लिखा था प्रसून जोशी ने और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। और इसी के साथ फिल्म संगीत को अब हम देते हैं यही विराम। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत।
1: बढ़ते कदम बदलता भारत विकसित होता भारत।
2: समर्थ हम

0: बढ़ते कदम बदलता भारत विकसित होता भारत।
1: मिट्टी की खुशबू में देश की पहचान बसती है। मिट्टी की खुशबू में देश की पहचान बसती है। किसानों की मेहनत में भारत की शान बसती है। जो खेतों में पसीना बहाकर अन्न उगाते हैं उन्हीं के दम पर देश की हर मुस्कान बसती है। स्वागत है आप सभी का विकसित होता भारत की इस कड़ी में। आज आपके साथ हूँ मैं दीपलक्ष्मी त्रिपाठी। नमस्कार। कहा जाता है श्रोताओं कि किसी भी देश की प्रगति की नींव उसके खेतों में रखी जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि न केवल हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत भी है। इसलिए यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो कृषि का विकास अत्यंत आवश्यक है। जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा भारत आता है जो आर्थिक रूप से मजबूत, तकनीकी रूप से उन्नति और आत्मनिर्भर हो। इस सपने को साकार करने में कृषि क्षेत्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। आज भी कृषि केवल हल और बैलों तक सीमित नहीं रही। नई तकनीकों ने खेती को अधिक वैज्ञानिक, लाभदायक और टिकाऊ बना दिया है। ड्रोन तकनीकी के माध्यम से फसलों की निगरानी, कीटनाशकों का छिड़काव और खेतों का सर्वेक्षण तेजी से किया जा रहा है।

एआई और इंटरनेट की मदद से किसान मिट्टी की नमी, मौसम और फसल की स्थिति की सटीक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। खेतों में जब नवाचार का प्रकाश होगा, तभी विकसित भारत का स्वर्णिम इतिहास होगा। भारत की पावन मिट्टी केवल अन्न ही नहीं उगाती, बल्कि वीरों का साहस, किसानों का परिश्रम और संस्कृति की अमूल्य विरासत भी संजोए रखती है। जिस धरती की हर मुट्ठी में मेहनत की खुशबू और देशभक्ति का जज्बा बसता है, उस भारत माता को नमन है।

0: श्रोताओं, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, सौर ऊर्जा आधारित कृषि उपकरण और एग्री वोल्टाइक प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीकें कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी कर रही हैं। एक ही भूमि पर खेती भी और बिजली उत्पादन भी, यही है एग्री वोल्टाइक प्रणाली की विशेषता। आइए इस आधुनिक तकनीक की संभावनाओं पर आधारित एक रोचक भेंटवार्ता सुनाती हूँ, जिसका विषय है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु एग्री वोल्टेक प्रणाली। इस पर बात कर रहे हैं डॉक्टर दीपक हरी रांडे जी से राजेश पाठक जी। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में एग्री वोल्टेक प्रणाली के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर के डीन डॉक्टर दीपक हरी रांडे साहब हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एग्री वोल्टेक प्रणाली क्या है और इसका वर्तमान समय में क्या महत्व है।
2: जी, इसमें भारत के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। यहाँ अल्प वर्षा, उच्च तापमान, सीमित जल संसाधन तथा कम उपजाऊ भूमि के कारण किसानों को फसल उत्पादन में अस्थिरता और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु एग्रो वोल्टाइक प्रणाली एक उभरती हुई तकनीक के रूप में सामने आई है, जो कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन को एकीकृत करती है। इस प्रणाली में कृषि भूमि पर सौर पैनलों को इस तरह स्थापित किया जाता है कि फसलें और सौर ऊर्जा दोनों का उत्पादन एक साथ किया जा सके। सौर पैनलों की छाया से भूमि की नमी बनी रहती है तथा वाष्पीकरण कम होता है, जिससे जल संरक्षण में सहायता मिलती है। किसान अपनी आवश्यकताओं के लिए बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार एग्री वोल्टाइक प्रणाली भूमि उपयोग की दक्षता बढ़ाने, सूक्ष्म जलवायु में सुधार करने तथा किसानों को दोहरा लाभ प्रदान करने वाली एक प्रभावशाली तकनीक है। यह टिकाऊ कृषि, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्री वोल्टाइक प्रणाली में अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने के लिए ऐसी फसलों का चयन आवश्यक होता है जिनकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम हो, जो आंशिक छायांकन को सहन करने में सक्षम हो तथा जिनकी प्रकाश आवश्यकता कम हो। इसके साथ ही ऊष्मा एवं सूखे के प्रति सहनशील फसलें इस प्रणाली के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एग्री वोल्टेक प्रणाली जो है, इसके बारे में और विशेष जानकारी क्या प्रदान करें।
2: जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भविष्य में भारत सहित कई देशों में कृषि और नवीनीकरणीय ऊर्जा के बीच कृषि संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। ऐसे में एग्री वोल्टाइक प्रणाली, जिसे कृषि वोल्टिक प्रणाली अथवा सौर खेती भी कहा जाता है, एक उभरती हुई तकनीक है जिसके माध्यम से किसान अपनी फसलों के उत्पादन के साथ साथ बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। इस प्रणाली में फोटोवोल्टाइक तकनीक का उपयोग करते हुए कृषि योग्य भूमि पर सौर पैनल स्थापित किए जाते हैं, जिससे एक ही भूमि से दोहरा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तकनीक की अवधारणा पहली बार वर्ष 1981 में एडॉल्फ गोल्ड्सबर्गर और आर्मिन जॉस्टर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वर्ष 2004 में जापान में इसका प्रोटोटाइप विकसित किया गया था और विभिन्न परीक्षणों के बाद 2022 में पूर्वी अफ्रीका में इसे व्यवहारिक रूप से लागू किया गया है। वर्तमान में भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी देशों में इस तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। हालांकि भारत में यह तकनीक अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, फिर भी भविष्य में इसके व्यापक

0: विस्तार की संभावनाएं अत्यंत प्रबल है।
1: जी, ऊर्जा संरक्षण की बात करें तो इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: और ऊर्जा संरक्षण में खास करके ग्रामीण अंचल किसान भाइयों के लिए बात करें तो वर्तमान युग में ये प्रणाली प्रासंगिक काफी है।
0: जी जी।
1: और एग्री वोल्टिक प्रणाली के बारे में हमारे भारतवर्ष में क्या संभावनाएं हैं?
0: ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कई सरकारी योजनाएं तथा प्रोत्साहन भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है
1: जी।
0: मार्च 2019 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको हम पीएम कुसुम कहते हैं, योजना भारत के कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की एक प्रमुख एवं महत्वाकांक्षी पहल है। इस योजना के अंतर्गत 0.5 से 2 मेगावाट क्षमता वाले ग्राउंड माउंटेड ग्रिड संयोजित सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना व्यक्तिगत किसानों, किसान उत्पादक संगठनों जिसको हम एफपीओ कहते हैं, तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा स्थानीय विद्युत वितरण कंपनियों के सहयोग से किया जा रहा है। योजना की वित्तीय संरचना के अनुसार कुल परियोजना लागत का लगभग 60% अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, 30% राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध होती है तथा शेष 10% अंशदान किसान अथवा परियोजना स्वामी द्वारा किया जाता है। इससे न केवल डीजल पर निर्भरता कम होती है बल्कि अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। यदि पीएम कुसुम जैसी योजनाओं के दायरे का विस्तार एग्री वोल्टाइक परियोजना तक किया जाए तो विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के बीच, जो कि हमारे यहाँ बहुतायत से पाए जाते हैं, इस प्रणाली के व्यापक प्रसार की संभावनाएं बढ़ गई है। और इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी भी कई कंपनियों द्वारा की जा रही है। इसमें एग्री वोल्टाइक प्रणालियों के प्रभावी विस्तार एवं क्रियान्वयन में सरकारी एजेंसियां, निजी कंपनियां तथा अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पर बड़ा अनुसंधान एवं नवाचार भी किया जा रहा है। एग्रो वोल्टाइक प्रणालियों की कार्य क्षमता एवं स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए सतत अनुसंधान एवं नवाचार अत्यंत आवश्यक है। अर्ध पारदर्शी अथवा झुकाव समायोज्य सौर पैनलों की जैसे उन्नत डिजाइनों के विकास से फसलों तक पहुंचने वाले प्रकाश के बेहतर वितरण तथा ऊर्जा उत्पादन की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पवन जनित धूल के जमाव जैसी चुनौतियों से निपटने हेतु धूल प्रतिरोधी सौर पैनलों के विकास पर भी अनुसंधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और दी जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कहा जाता है कि जो हमारे घर में भी हम सौर पैनल का उपयोग करते हैं उस पर धूल जम जाती है, अगर उसको सही समय पर साफ ना किया जाए तो उससे ऊर्जा उत्पादन में कमी आती है। पर इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रकार के धूल के कणों से सौर पैनलों पर और ज्यादा विपरीत प्रभाव ना पड़े, तो इस पर भी अनुसंधान और नवाचार किया जा रहा है
1: जी। एग्री वोल्टाइक प्रणाली के लाभ क्या क्या है?
0: जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला लाभ तो है भूमि संसाधनों का दोहरा उपयोग। जैसा कि आप जानते हैं, पारंपरिक खेती में भूमि का उपयोग केवल फसलों के उत्पादन तक सीमित रहता है, जबकि एग्री वोल्टाइक प्रणाली में एक ही भूमि पर फसल उत्पादन के साथ साथ सौर ऊर्जा उत्पादन भी संभव होता है। इससे सीमित भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है तथा भूमि की समग्र उत्पादकता में वृद्धि होती है। जैसा आपने देखा कि अतिरिक्त आय हम प्राप्त कर सकते हैं और इसमें उत्पादकता में भी सुधार देखा गया है। सौर पैनलों से प्राप्त आंशिक छाया के कारण पौधों पर तीव्र धूप और अधिक तापमान का प्रभाव कम पड़ता है। इससे कई फसलों में बेहतर अंकुरण, पुष्पण एवं फलन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है तथा गर्मी और लू से होने वाली नुकसान में भी कमी आती है। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जलवायु सहनशील खेती भी इसके माध्यम से, इस प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। एग्रो वोल्टेक प्रणाली फसलों को तापमान, वर्षा और नमी की अनिश्चितताओं से आंशिक सुरक्षा प्रदान करती है। विशेष रूप से शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में यह प्रणाली किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अनुकूलन का एक प्रभावी साधन सिद्ध हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके कारण हमारी ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है। जैसे कि खेतों में स्थापित सौर पैनलों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन संभव होता है, जिससे किसानों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर, जो अतिरिक्त बिजली किसानों को मिलती है वो उसको ग्रिड में बेचकर किसान अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार यह प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों को ऊर्जा आत्मनिर्भरण में सहायक बना रही है। इससे ऊर्जा में भी आत्मनिर्भरता आ रही है और सबसे बड़ी एक इसका उपयोग है इसके पर्यावरण

0: संरक्षण भी होता है जो कि आजकल बहुत जरूरी है। सौर ऊर्जा के उपयोग से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होती है, जिससे प्रदूषण तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है। खेती और स्वच्छ ऊर्जा के इस समन्वयन से पर्यावरण संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है।
1: हाँ डॉक्टर साहब, एग्री वोल्टाइक प्रणाली का प्रचलित समेकित कृषि प्रणाली के साथ जो है सामंजस्य कैसे बनाया जा सकता है?
0: जी, मैं आपको इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर सिस्टम, जिसको आपने कहा समेकित कृषि प्रणाली के साथ इसका सामंजस्य कैसा होता है, उसके बारे में बताऊंगा। समेकित कृषि प्रणाली, जिसको हम IFS भी कहते हैं, के सिद्धांतों के अनुरूप एग्री वोल्टाइक प्रणाली एक ही भूमि इकाई पर फसल उत्पादन एवं सौर ऊर्जा उत्पादन का प्रभावी समन्वयन सुनिश्चित करती है, जिससे संसाधनों के उपयोग की दक्षता बढ़ती है। यह प्रणाली सूक्ष्म जलवायु को संतुलित करने, जल उपयोग दक्षता में सुधार करने तथा जलवायु की चरम परिस्थितियों से फसलों को आंशिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त फसल एवं विद्युत उत्पादन से प्राप्त दोहरे आय स्रोत कृषि जोखिमों को कम करते हुए किसानों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करते हैं तथा बाहरी ऊर्जा आदानों पर निर्भरता घटाते हैं। इस प्रकार कृषि सौर प्रणाली IFS की सहनशीलता, दीर्घकालिक स्थिरता तथा संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है संयुक्त राष्ट्र के सतत 21 लक्ष्यों की प्राप्ति में एग्री वोल्टेक प्रणाली की क्या भूमिका होगी?
0: जी, देखा आपने कि पूरे विश्व में ये प्रयास किए जा रहे हैं कि सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए,
1: और हमारी सरकार का भी जो
0: बिल्कुल है। पूरे भारतवर्ष तो है ही, पर इसमें पूरा संयुक्त राष्ट्र लगा हुआ है कि सभी देश का उपयोग करें। तो आप जैसा जानते हैं कि एग्रो वोल्टाइक प्रणाली एवं एक अभिनव तथा बहुउद्देशीय दृष्टिकोण से रूप से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह प्रणाली फसल उत्पादन के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन को एकीकृत कर किसानों की आय में वृद्धि करती है, जिससे गरीबी उन्मूलन तथा खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही नवीकरणीय एवं स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर यह प्रणाली जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करती है और सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्धता बढ़ने से रोजगार के अवसरों का सृजन होता है, जिससे सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि भूमि के द्वैत उपयोग, कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा जलवायु सहनशीलता में वृद्धि के माध्यम से यह प्रणाली उत्तरदायी उपयोग एवं उत्पादन तथा जलवायु कार्रवाई को समर्थन प्रदान करती है। इसके साथ ही सतत भूमि उपयोग एवं जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देकर यह स्थलीय परिस्थिति तंत्र को संरक्षण में भी सहायक सिद्ध होती है। विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए यह प्रणाली लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए साझेदारी को भी सशक्त बना रही है। इस प्रकार एग्री वोल्टाइक प्रणाली सतत कृषि, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय के माध्यम से समग्र सतत विकास की दिशा में एक प्रभावी और व्यवहारिक समाधान के रूप में उभर रही है।
1: डॉक्टर साहब, अंत में चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एग्री वोल्टिक प्रणाली को पूर्णतः लागू करने में क्या क्या चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चुनौती है इसकी उच्च प्रारंभिक लागत। एग्रोवोल्टिक प्रणाली की प्रमुख चुनौतियों में इसकी उच्च प्रारंभिक पूंजीगत लागत शामिल है, जिसमें सौर अनल संरचनात्मक ढांचा, विद्युत उपकरण, बैटरी भंडारण तथा स्थापना पर पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है। इसलिए छोटे किसानों को यह इसको अपनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो तकनीकी जटिलता भी इसमें होती है, क्योंकि सौर पैनलों का झुकाव कोण, ऊंचाई और उसके बीच की दूरी का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसके आधार पर ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ये दोनों कारक ऊर्जा उत्पादन और फसल वृद्धि को प्रभावित करते हैं। यदि पैनल बहुत नीचे लगाए जाए तो कृषि यंत्रों के संचालन में कठिनाई होती है, और अधिक ऊंचाई पर स्थापना से लागत बढ़ जाती है, इस प्रकार ये इसमें तकनीकी जटिलता होती
1: और
0: है।
1: जमीन भी तो ज्यादा घेरता हो,
0: जमीन भी ज्यादा घेरता
1: उसके नीचे क्यों, कृषि संभव है?
0: संभव है, इसमें आप इतनी ऊंचाई पर लगाई जाती है जिससे संभव हो सकता है। ये आपने देखा होगा कि ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि पौधों को भी थोड़ी छाया मिलती रहे और उनके बीच में भी कुछ पैदावार ली जा सके। और इसी प्रकार आपने देखा होगा कि भारत में

0: और बंटवारी जब वाले जोत अधिक होती है तो इन पर भी इनको अपनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। और इसी प्रकार सामाजिक जागरूकता और स्वीकृति की भी कमी
1: जी
0: हमारे किसानों के बीच पाई गई है। कई ऊर्जा किसान इसे केवल ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी परियोजना के रूप में देखते हैं और इसे फसल उत्पादन के साथ साथ समन्वित तकनीक के रूप में अपनाने में संकोच करते हैं, तो ये भी एक बाधा है। और इसी प्रकार दीर्घकालिक स्थायित्व और पुनर्निवेश, क्योंकि सौर पैनल की आयु लगभग 20 से 25 साल होती है, तो इसके पश्चात इसको आपको फिर से सुधारना पड़ेगा, फिर से व्यवस्थित ढंग से लगाना पड़ेगा, तो ये एक बाधा मानते हैं किसान भाई। और इसके प्रकार पर्यावरण और पारिस्थितिक चिंताएं भी हैं, जैसे बड़े पैमाने पर सौर पैनलों की स्थापना से स्थानीय जैव विविधता पर प्रभाव पड़ने की आवश्यकता होती है, आशंका बनी रहती है। पैनलों से उत्पादन छायांकन के कारण भूमि पर उगने वाले कुछ पौधों तथा कीटों के प्राकृतिक आवासों में परिवर्तन हो सकता है, और यदि संतुलित प्रबंधन ना किया जाए तो यह एक चुनौती बन जाती है। पर अगर देखें हम कुल मिलाकर तो एग्री वोल्टाइक प्रणाली एक उन्नत एवं नवोन्वेषी तकनीक है जो एक ही भूमि इकाई पर खाद्य उत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का प्रभावी एकीकरण करती है। इससे किसानों को आर्थिक लाभ के साथ साथ संसाधनों के समन्वित उपयोग के अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं। यह प्रणाली विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, औद्योगिक विकास तीव्र है तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ साथ कृषि भूमि के संरक्षण की आवश्यकता भी बढ़ जा रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर अगर हम कहें कि सौर पैनलों के कारण उत्पन्न छायांकन जो छाया पड़ती
1: जी
0: है सूक्ष्म जलवायु को भी प्रभावित करता है, जिससे सौर विकिरण जल संतुलन तथा फसल वृद्धि पर प्रभाव पड़ सकता है। इस कारण कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनको दूर किया जा रहा है और इनका समाधान भी ऐसा निकाला जा रहा है वैज्ञानिक आधार पर कि किसान ज्यादा से ज्यादा इसको अपनाए और इस प्रणाली का बहुत अच्छा लाभ उठा सके।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में भाग लिए और शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु एग्री वोल्टेक प्रणाली के बारे में हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी समझाइश दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: और किसानों की आय में वृद्धि होगी। यही नहीं, कृषि क्षेत्र युवाओं के लिए भी रोजगार और नवाचार के नए अवसर पैदा करेगा। इस प्रकार कृषि केवल खाद्य सुरक्षा ही नहीं बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति का भी प्रमुख आधार बनेगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब हमारा किसान सशक्त होगा और हमारी कृषि तकनीकी से समृद्धि होगी। नई तकनीकों और किसानों की मेहनत का संगम भारत को विश्व की अग्रणी कृषि शक्ति बना सकता है। आइए हम सभी मिलकर तकनीकी सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर कृषि के माध्यम से विकसित भारत 2047 के निर्माण में अपना योगदान दें। विकसित होता भारत की इस कड़ी में आज बस इतना ही। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संयोजन था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का। अब दे अनुमति दीप लक्ष्मी त्रिपाठी को। जय हिंद, जय भारत।
1: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम बदलता भारत विकसित होता भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

आकाशवाणी इंदौर से अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं अहमद रजा पप्पन और साथियों के गाए कुछ गजलें। शुरुआत करते हैं फैज रतलामी की लिखी इस गजल के साथ।

ये मधुर गजल अभी आप सुन रहे थे अहमद रसा पप्पन की आवाज में। ये गजल लिखी थी फैज रतलामी ने और इसे आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। लीजिए प्रस्तुत है अहमद रजा पप्पन के ही स्वर में एक और गजल।

तभी श्रतलामी की ये गज़ल सुन रहे थे अभी आप अहमद रज़ा पप्पन की आवाज़ में, और इन्हीं के स्वर में आज हम आपको सुनवा रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम की कुछ गज़लें, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब समय है लोक गीतों के कार्यक्रम लोक संगीत का, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनीषा हरवल्लभ शास्त्री और साथियों के गाए कुछ लोकगीत।

मनीषा हरवल्लभ शास्त्री और साथियों की आवाज़ में सुन रहे थे अभी आप ये निमाड़ी लोकगीत हमारे कार्यक्रम लोक संगीत में। आज इन्हीं के स्वर में सुनवा रहे हैं हम आपको कुछ निमाड़ी लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है अगली रचना।

ये लोक गीत अभी आप सुन रहे थे मनीषा हरवल्लभ शास्त्री और साथियों की आवाज़ में। इन्हीं के स्वर में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम के सभी निमाड़ी लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला और अंतिम लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश का युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने

0: आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू करने में श्री डोभाल की प्रमुख भूमिका रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवां कचरा निस्तारण स्थल केंद्र का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अवशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। श्री मनोहर लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अवशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर शुरू हो गया। इसके साथ ही 6 वर्ष से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन ने स्वर्ण पदक जीते। जदुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉटपुट F57 वर्ग में स्वर्ण और शुभम ज्वाल ने रजत पदक जीता। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज रात और कल सुबह तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, शाम 7:20 पर सुनिएगा पर्यावरण पर चर्चा, साथ ही कुछ लोकगीत, और शाम 7:30 से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस सप्ताह संसद में आप सुनेंगे रात 8:00 से, सुर्खियों में होगी रात 8:15 पर, और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:30। श्रोता, चित्रगीत का समय होगा रात 9:15 पर, और रात 9:30 सुनिएगा राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य की भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली से रिले किया जाएगा रात 10:00 से।

भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना आप सुनेंगे कल सुबह 6:05 से 6:30 पर सुनिएगा चिंतन। आलेख होगा नीरज सालवी का और वाचक स्वर सैयद आसिफ अली के। समेकित कीट और रोग प्रबंधन इस विषय पर जानकारी आपको दी जाएगी खेती की बातें कार्यक्रम में। वाचक स्वर होंगे अनुराधा शर्मा के। श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे कल सुबह 6:40 पर। सुबह 7:20 पर सुनना ना भूलिएगा योग निरोग कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कल का विषय होगा बारिश के मौसम में प्राकृतिक चिकित्सा। इस विषय में जानकारी देंगे डॉक्टर जगदीश जोशी। और सदाबहार फिल्म संगीत सुनहरे पल कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुबह 7:35 से। कल के सितारे बच्चे हमारे ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 8:30। इस कार्यक्रम में सुनिए 2 अगस्त पीपली वेंकैया के विषय में जानकारी तिरंगे की।

डिजाइन के बारे में चर्चा, 2 अगस्त डायनासोर दिवस और 2 अगस्त पर होने वाले आइसक्रीम और सैंडविच दिवस के बारे में कुछ जानकारी, साथ ही होगी कहानी, कविता और बुक डे के बारे में बातें। सुबह 9 बजे लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सखाराम सीताराम राठौर और साथियों के गाए कुछ लोकगीत और प्रकाश पारनेकर वो साथियों के गाई कुछ रचनाएं सुगम संगीत में सुनवाई जाएंगी आपको कल सुबह 9:15 से। शास्त्रीय संगीत का समय होगा कल सुबह 9:30 बजे। सुनिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन, राग होगा भोपाली तोड़ी। श्रोताओं, जिले की चिट्ठी का समय होगा कल सुबह 10:00 बजे और 10:05 पर सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद इन्हें सुबह 11:00 बजे से सुनिएगा एक अन्य सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दोपहर की सभा में फिल्म संगीत आपको सुनवाया जाएगा 12:02 से। संग्रहालय से इस कार्यक्रम का समय होगा 12:30 बजे। दोपहर 1:00 बजे सुनना ना भूलिएगा महिला कार्यक्रम। लोकगीतों से सजे कार्यक्रम लोक संगीत का समय होगा 12:30 बजे और 1:45 पर सुनेंगे आप सुगम संगीत। फिल्म संगीत दोपहर की सभा में आपके लिए लाया जाएगा 2:00 बजे से। और दोपहर 2:30 पर सुनिएगा बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज रात और कल दोपहर तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रादेशिक समाचार बस कुछ ही देर में।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जबलपुर में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। प्रदेश भर में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा और आगामी 24 घंटों के दौरान राजगढ़, अलीराजपुर सहित प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत हर रविवार देश भर में जागरूकता और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव का वाहक बनाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में 362 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार अमृत 1.0 सीवेज परियोजना और कठौदा, ललपुर और तेवर में बने 3 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहल करते हुए जबलपुर स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी का विकास एम्स की तर्ज पर किया जाएगा।
1: अब एम्स भारत सरकार के माध्यम से क्यों बनना चाहिए? एम्स हमारा प्रदेश का भी बने, इसलिए यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारा एम्स के रूप में विकसित होगी। भविष्य में ये जबलपुर का मॉडल बनेगा जो बाकी जगह हम लगाएंगे। विकास के लिए परिपूर्ण प्लान बनाने की जरूरत है। ऐसे में इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी, भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी, तो मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं जबलपुर भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा, 1 साल के अंदर बनेगा, ये हमारा संकल्प है।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने डुमना नेचर पार्क में कैच द रेन अभियान के अंतर्गत 11 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत उमरिया, डुमना और कठौंदा में मियावी की पद्धति से 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में आज से विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा 15 अगस्त तक ये अभियान प्रदेश के सभी जिलों, नगरीय निकायों और संबंधित सेंसेक्स टाउन में एक मिशन मोड कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जाएगा। अभियान की थीम स्वनिधि से समृद्धि, आत्मनिर्भर शहरी मध्य प्रदेश की ओर निर्धारित की गई है। अभियान के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण, स्वरोजगार संवर्धन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश भर में जन जागरूकता गतिविधियों, विशेष शिविरों, बैंक समन्वय बैठकों, हितग्राही संपर्क अभियानों और मीडिया और डिजिटल संचार गतिविधियों के माध्यम से अधिकतम पात्र पथ विक्रेताओं तक पहुँच बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए मिले हैं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश भर में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले जन विश्वास दौरे पर 7 अगस्त को छिंदवाड़ा में आयोजित जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज चिन्हित शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं के निराकरण की समीक्षा करेंगे। 8 जनवरी 2027 तक चलने वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करना, शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण को सुनिश्चित करना और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी नियमित मैदानी भ्रमण कर आमजन से संवाद करेंगे। प्रदेश में आज से विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। आगामी 7 अगस्त तक चलने वाले सप्ताह के दौरान विभिन्न जनजागरूकता और स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। सीहोर जिले में कलेक्टर ने जिले के सीएमएचओ, डीपीओ, जनपद सीईओ, सभी बीएलओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सप्ताह के दौरान सभी गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम कर दी है। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2738 रुपए हो गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।

12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर वस्त्र मंत्रालय 7 अगस्त को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्र में राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित रहेंगी। मंत्रालय ने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत का उत्सव मनाना और राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को मान्यता देना है। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 48 घंटों के दौरान मालवा निमाड़ क्षेत्र विशेषकर इंदौर और उज्जैन संभाग में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, रतलाम और धार समेत पश्चिमी जिलों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी और श्योपुरकला जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर राजगढ़ पुलिस ने जिले भर में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। मानव तस्करी की रोकथाम और जन जागरूकता विषय पर बहुहितधारक कार्यशाला आयोजित की गई। खंडवा में महान गायक और अभिनेता किशोर कुमार के जन्म दिवस के अवसर पर 2 से 4 अगस्त तक 3 दिवसीय खंडवा गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। शहडोल जिले में पुलिस विभाग पेपरलेस कामकाज की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। ऑनलाइन FIR के बाद अब जिले में अपराधों की जांच पूरी तरह से डिजिटल होगी। खरगोन जिला सहकारी केंद्र बैंक ने रबी उपार्जन, रासायनिक खाद वितरण, ई विकास पोर्टल के सफल संचालन, कृषि ऋण वितरण और ऋण वसूली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और मंडला जिले में की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर शुचि उपाध्याय का चयन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ है। ये शिविर 2 से 27 अगस्त तक बेंगलुरु में आयोजित होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा ही भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है। पुरुषोत्तम दास टंडन।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी कृषक साथियों को तृप्ति लटपटे का प्यार भरा नमस्कार। कृषक यानी अन्नदाता, जो धूप बारिश सर्दी में अविरत काम करके देश का पेट भरते हैं, सबसे पहले ऐसे सभी किसानों को मेरा नमन। श्रोता, आज आपको आवश्यक जानकारी देता प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हम आपको सुनवाएंगे अब से कुछ ही देर में, यानी शाम 7:30 से। किसान भाइयों, अगर आप एक सोयाबीन कृषक हैं तो आपको बड़ी बेसब्री से अच्छी बारिश का इंतजार होगा और मन में सूखे की स्थिति को सोचकर चिंता भी होगी। ऐसे में अधिक दिनों तक बारिश ना होने या सूखे की स्थिति बनने पर ये कुछ उपाय हैं जो जरूर अपनाएं। सोयाबीन फसल में डोरा या कुल्पा चलाकर निराई और गुड़ाई करें। डोरा करने के बाद 15 से 25 दिन की फसल में 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से फसल अवशेषों को बिछाकर मल्चिंग करें। भूमि में दरारें पड़ने से पूर्व के अनुसार स्प्रिंकलर, टपक सिंचाई या परंपरागत विधियों से सिंचाई करें। 20 से 25 दिन की फसल में थायो यूरिया का 750 मिलीग्राम

ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव करें। सूखे के दौरान लोह तत्व की अनुपलब्धता से सोयाबीन की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं, जो वर्षा आने पर पूर्ववत हो सकेगा। अधिक तीव्रता होने पर 1% फेरस सल्फेट प्लस 0.2% चूना प्रति लीटर पानी में 10 ग्राम फेरस सल्फेट प्लस 2 ग्राम चूना मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। साथ ही अतिवर्षा की भी स्थिति बन सकती है। ऐसे में अतिवर्षा की स्थिति में जल भराव से होने वाले नुकसान से फसल को बचाने हेतु जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित जरूर करें। दोस्तों, साथ ही रोग भी इस समय पर पड़ सकता है आपकी सोयाबीन की फसल में। इसके लिए याद रखिए, सोयाबीन फसल में कॉलर रॉट यानी गर्दनी सड़न या राय जोक्टिनिया जड़ सड़न नामक रोग का संक्रमण देखा जा रहा है। सलाह है कि इनके नियंत्रण हेतु कार्बेटाजिम 50% जो कि 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर का फसल पर छिड़काव करें। ये सारे जो हैं उपाय, वो आपकी सोयाबीन की फसल को सूखे से, अतिवर्षा से और रोगों से बचाव कर सकते हैं।

खेती भी सुरक्षित रहेगी और किसान समृद्ध होगा। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की सेहत की। मिट्टी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि मिट्टी उपजाऊ होगी तो कम लागत में अच्छी पैदावार मिलेगी। इसलिए हर किसान को हर 2-3 साल में अपनी जमीन की मृदा जांच अवश्य करवानी चाहिए। इससे पता चलता है कि खेत में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और किस खाद का कितना उपयोग करना चाहिए। इससे अनावश्यक खर्च भी बचता है और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। अब बात करते हैं बारिश और पानी के संरक्षण की। तो आज मौसम लगातार बदल रहा है, कहीं ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं सूखे जैसी स्थिति बन रही है। ऐसे में खेतों की मेड़ों को मजबूत रखें और वर्षा जल को खेतों में रोकने का प्रयास करें। खेत तालाब यानी फार्म पॉन्ड और वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकें अपनाकर किसान भविष्य के लिए पानी बचा सकते हैं। साथ ही ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने से 40-60% तक पानी की बचत भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, फसल में यदि कीट या बीमारी दिखाई दे तो तुरंत अधिक मात्रा में दवा का छिड़काव ना करें। पहले कृषि वैज्ञानिक से विशेषज्ञ से सलाह लें, आवश्यकता अनुसार जो है दवा का उपयोग करें। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करें, जहां संभव हो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद का इस्तेमाल बढ़ाएं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। और अब बारी है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने की। तो अब से कुछ ही देर में सुनिए कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, बस कुछ ही पलों में।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गुलजारी से जब सावन की फुहारन से भीगी भई धरती नई उम्मीदों से महकत है, तो सबसे पहले एक किसान जागत है और उनके कदमों के संग जागत है उम्मीदें, उनके पसीना से लहलहात है फसलें और उनकी मेहनत से भरत है पूरे देश की थाली। सो ऊ अन्नदाता की आवाज, उनकी बात, उनकी तरक्की और उनके विश्वास को साथी बनके आकाशवाणी भोपाल लेके आओ है किसानन के लाने अपनो नव कार्यक्रम किसान वाणी। देखो भैया, खेती से फिर रोजी रोटी को जरिया नहीं होते बल्कि अपने जीवन और देश की खुशहाली को आधार भी है। सो मनो जय मारे, खेती से जुड़ी नई और सरकारी योजनाओं की सही जानकारियां, वैज्ञानिक सलाह और सफल किसानन के अनुभव अब नियमित रूप से आप तक पहुंचे किसान वाणी के माध्यम से हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार संजा बेरा 7:30 बजे से। तो राम राम भैया बहनों हरो, किसान वाणी कार्यक्रम में सभी जनों को स्वागत है। हमारा नाम है राधा चौरे। हम दो ही हाथ जोड़ के सभी किसान भैया बहनों को स्नेह भरी राम राम करत है, सो स्वीकार करवे। भैया रो, आज किसान वाणी के ई पहले अंक में सबसे पहले बात कर है वर्षा जल संचयन की। जान है कि बरसात की हर बूंद को सहेज के अपनी खेती को कैसे और अधिक समृद्ध बनाओ जा सकत है। इके संगे सुन है कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश अम्बालकर की उपयोगी सलाह, संगे बलराम कृषि योजना के बारे में सोई अपन चर्चा

0: है तो उतई जान है मौसम के मुताबिक खेती किसानी से जुड़ी जरूरी सलाह भी और मंडियों के भाव भी। तो भैया किसानन की बात होए और मनोरंजन ना होए, मनोज्यों कैसे हो सकत है। सो लोग की सुई सुन बे मिल है। तो शुरू करत है आज की पहली चर्चा से। विषय है वर्षा जल को संचयन। कहत है बरसात की हर बूंद आबी बारी काल की पूंजी होत है। सो अगर वर्षा के पानी को सही ढंग से सहेज लो जाए तो जोई पानी सूखे दिनन में फसलों को सहारो बन सकत है। वर्षा जल संचयन केवल पानी बचावे को उपाय नहीं है बल्कि खेती को मजबूत समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की भी एक महत्वपूर्ण पहल है। तो आओ जानत है कि कैसे बारिश के मौसम में खेतन से जल निकासी और जल स्तर प्रबंधन कर सकते हैं और कैसे बरसात की हर बूंद को बचा के हम अपनी खेती और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रकाश अम्बालकर जी और इनसे बातचीत करी है बहन अंशु तिलेठे ने। तो सुनत है जब भेंट वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि बहुत हद तक मौसम पर निर्भर करती है। खास तौर पर यदि बारिश अधिक हो जाए तो किसानों को अपने खेतों में जल भरने की समस्या का सामना करना पड़ता है। फसलें पीली पड़ने लगती हैं या खराब भी हो सकती हैं। इसी समस्या का समाधान हम आज की अपनी भेंट वार्ता के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। हमारा आज का विषय है बारिश में खेतों से जल निकासी और जल स्तर प्रबंधन। हमारे आज के इस विषय के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रकाश अम्बालकर जी। आप सेवानिवृत्त मुख्य तकनीकी अधिकारी हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल से। सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर, जैसा कि हमारा विषय है और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बारिश से खेतों में पानी ज्यादा हो जाता है फिर वो खेतों के लिए मुसीबत कैसे बन जाता है।
2: देखिए अगस्त माह में कहीं कहीं जगह आपने देखा होगा कि अधिक बारिश हो जाती है या भारी बारिश भी होती है तो पानी इकट्ठा होने लगता है खेतों में, जिससे खेतों में लगी हुई फसल जैसे मक्का है, सोयाबीन है, दलहनी फसलें हैं और तिलहनी फसलें के साथ साथ सब्जियां जो हैं उनकी जड़ें यदि 24 से 48 घंटे तक पानी में डूबी रहती हैं तो वो सड़ने लगती हैं, क्योंकि भरे हुए पानी में जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इस कारण जो पौधों की पैदावार पे असर आता है और ये केवल इन्हीं फसलें जो बताई उसमें ही नहीं, अगर धान की भी बात करें तो धान में भी यदि ज़्यादा देर तक पानी रुकता है तो धान में कल्ले निकलना कम हो जाते हैं और धान के जो जिसको टिलरिंग भी कहते हैं अपन, वो के कम होने के कारण 30-50% तक धान के उत्पादन पे असर होता है। तो किसानों का अपनी फसल का उत्पादन कम मिलता है और इसीलिए किसानों को इस समय खासकर अगस्त महीने में जल निकासी की तरफ और जल को निकासी किए हुए जल को एकत्रित करके जल का दोहन करने के लिए तालाब का भी निर्माण करना चाहिए। तो इस तरीके से उनको ड्रेनेज जिसको जल निकासी कहेंगे उसकी तरफ और जल संचय जिसको अपन वाटर हार्वेस्टिंग कहेंगे उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए इस खासकर इस माह में।
1: बहुत बहुत अच्छी जानकारी सर। आगे बढ़ेंगे हम और आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को ये तो बताया कि ज्यादा पानी की खेतों से निकासी तो जरूरी है पर इसके लिए कोई कृषि यंत्र का उपयोग किया जा सकता है और हमारे किसान भाई इस कृषि यंत्र को कम खर्च पर कैसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
2: देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें सबसे पहली बात है कि हम जल निकासी के लिए यदि हमारे पास 45 हॉर्स पावर का भी टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है या 50 हॉर्स पावर से 55 हॉर्स पावर का, जिसमें 50 हॉर्स पावर का फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है जिसका यदि वजन 2000 किलो से ज्यादा है तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, पर 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है उसमें थोड़ा सा वो धीरे चलता है, जिसमें हम लगाते हैं मोल प्लाव। ये मोल प्लाव लगाने के ट्रैक्टर के बारे में मैंने बताया। अब ये मोल प्लाव जो होता है इसमें एक पाया होता है और जो 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की गहराई में जा सकता है और इसमें एक गोलाकार जो जिसको अपन कहते हैं गोल एक्सपांडर, मतलब ये एक लोहे का गोला रहता है जो नीचे लगा हुआ होता है और ये सुरंग बनाने का काम करता है। तो जब ट्रैक्टर इसको खींचता है तो ट्रैक्टर इसको चीरते हुए जाता है, भूमि है उसको चीरते हुए जाता है खेत की भूमि में और ये सुरंग बनाता है। तो जो ये गोला रहता है वो क्या करता है 5 से 7 सेंटीमीटर के नीचे सुरंग बनाता है 40 सेंटीमीटर गहराई पे और ये मजबूत बना देता है सुरंग को, और सुरंग को मजबूत बनाने के कारण ये सुरंग 3 से 4 साल तक बढ़िया चलती है और 6 से 8 मीटर के अंतराल पे

0: अपन ये पूरे खेत में इस तरीके से सुरंग बना देते हैं तो जल की निकासी बड़ी अच्छी तरीके से इसके माध्यम से हो जाती है। तो इसमें क्या है कि केवीके में भी जाके वो बात करें या आत्मा परियोजना के जो अधिकारी होते हैं उनसे भी जा करके अपनी संपर्क करके डेमोन्स्ट्रेशन लिस्ट रेट देख करके भी वो अपने खेत के लिए मंगा सकते हैं।
1: जी सर, बहुत उम्दा जानकारी। सर, हम आगे बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ ज़रूरी है हमारे किसान भाइयों को यह जानना कि वर्षा के इस निकासी किए हुए जल को आगे फसलों की सिंचाई और भूजल रिचार्ज के लिए वे कैसे उपयोग में ला सकते हैं।
0: देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह जानने की जरूरत है कि बारिश तो अगस्त में अच्छी हो जाती है लेकिन सितंबर में पानी कम होता है और फिर अक्टूबर में भी और कम हो जाता है पानी। तो जो पानी अगर हम बहा देंगे ना तो यही पानी अब हमारे उपयोग में आएगा।
1: जी जी।
0: तो इसके लिए क्या है कि किसानों को एक तालाब बनाने की आवश्यकता होती है जिसमें ये जल संग्रहित करें। यदि कुआं है तो वहां तक भी पानी ले जाएं, लेकिन जहां तक अगर नहीं है तो हमारे पास तालाब यदि हमको का निर्माण करना पड़े तो यदि हमारे किसान के पास 1 से लेकर 2 एकड़ तक की अभी जमीन है वो चाहे तो 30 फुट बाई 30 फुट और 10 फिट गहरा एक तालाब बना सकते हैं। अब वो तालाब बना करके पूरा का पूरा पानी उस तालाब में ला सकते हैं। अब ये क्या होता है, जब ये तालाब में पानी लाते हैं तो कई बार इसके लिए भी उनको मशीन चाहिए होती है, तो जो अपन बैकहो मशीन कहते हैं जिसका नाम वो मॉडल इसका ज्यादातर किसान जेसीबी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये क्या 1600 रुपए किराए पे प्रति घंटे के किराए से मिल जाता है और ये लगभग आप बताएं जिसमें डीजल का खर्च भी इसमें शामिल ही रहता है और यदि वो ट्रांसपोर्ट होके कहीं दूर से आती है तो वो लोग 2000 रुपए तक भी उसका ले लेते हैं। तो इस हिसाब से यदि ये आ जाती है मशीन तो किसान जो है ना 8 से 10 घंटे तक, मतलब यदि मिट्टी ढीली है और मिट्टी यदि सख्त है तो 12 से 15 घंटे तक तालाब बनने में ये लगता है। तो जो खेत में जो जल जब इकट्ठा हो जाता है ये ड्रेनेज का, तो वो क्या होता है कई बार अपने साथ गाद भी लाता है, मतलब जिसको अपन कहते हैं सिल्ट। तो वो गाद जो है, पहले अपन एक छोटा सा तालाब के पहले गड्ढा बना लें तो जो अच्छा पानी है वही तालाब में जाएगा और जो गाद है
1: कीचड़
0: है वो जाके आपका गड्ढे में समा जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, जब वो प्रवेश द्वार पे एक सिल्ट ट्रैप जो छोटा गड्ढा बना देना चाहिए तो उसमें मिट्टी वहीं रुक जाएगी और साफ पानी अपने को हमेशा मिलता रहेगा। और अब ये पानी के कारण क्या होता है कि किसानों को साल भर पानी की समस्या नहीं आती है। तो ये पानी रोकना बहुत जरूरी है हमारे लिए और इससे जल प्रबंधन भी बहुत अच्छा होता है।
1: जी सर, बहुत अच्छी जानकारी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल स्तर प्रबंधन के लिए छोटे तालाब के निर्माण से अमूमन खेत का जल स्तर कितना बढ़ता होगा।
0: देखिए, ये बहुत आवश्यक जानकारी है, किसान यदि ये जानेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। सबसे पहले देखिए, तालाब यदि भरने के कुछ हफ्तों के भीतर जो खेत में मौजूद खुले कुएं हों या उथले हुए बोरवेल होते हैं जो ट्यूबवेल, उनका पानी तुरंत बढ़ जाता है तालाब के कारण। और यदि आपकी 2 एकड़ भी जमीन है किसान के पास में तो उनका जल स्तर करीब 1/2 मीटर से लेकर 1.25 मीटर तक बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है किसान को कि उसका बढ़ा हुआ जो तालाब का स्तर है वो उसके कारण उसका जो बोरवेल है वो साल भर उसको पानी देता है। ये बहुत बड़ा लाभ है।
1: जी सर। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि छोटे तालाब के निर्माण के बारे में आपने हमें बताया, क्या किसान भाइयों को शासन की तरफ से इसके लिए कोई सहायता या अनुदान मिलता है।
0: बिल्कुल, देखिए भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जिसको अपन कहते हैं PMKSY और राज्य सरकारों की जैसे मध्य प्रदेश में बलराम तालाब योजना है के तहत खेत तालाब बनाने और ड्रिप सिस्टम लगाने के लिए 50 से 80% तक की सब्सिडी यानी अनुदान मिलता है। अब यदि किसान भाई अपने नजदीकी कृषि विभाग में जाएं, केवीके में जाएं, वहां के कार्यालय में जाकर के इसका पूरा लाभ उठाने के लिए पूरी जानकारी इकट्ठी करके उस पे अपना कार्य आरंभ करें और सब्सिडी को प्राप्त करें।
1: किसान भाइयों, अभी हमने जाना बारिश में खेतों से जल निकासी और जल प्रबंधन विषय पर, ये महत्वपूर्ण जानकारी। हमें पूरी आशा और विश्वास है कि हमारे किसान भाई इस जानकारी का भरपूर फायदा उठाएंगे। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
2: तो अब अपन ने जाने बारिश के मौसम में खेतन से जल निकासी और जल स्तर प्रबंधन के बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रकाश अम्बालकर और इनसे बातचीत करी हती बहन अंशु तिलेठी ने। उम्मीद है कि आज की चर्चा से आप हे समझने में मदद मिली हुई है कि अगर हर किसान अपने खेत में छोटे छोटे जल संरक्षण के उपाय अपना है तो पानी की बचत के संगे संगे सिंचाई को खर्च भी कम हुई है और फसल को समय पे पानी भी मिल जाए है। भैया हरो, अच्छी खेती में मेहनत के संगे संगे सही जानकारी हो वो भी बहुत ही जरूरी है। अच्छा, सरकार टेम टेम पे किसानन के लाने कई योजनाएं चलाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत से किसान भैया उनको पूरा लाभ

0: नहीं ले पाते। ऐसी एक महत्वपूर्ण पहल है बलराम कृषि योजना। ई योजना को उद्देश्य है किसानन की खेती के लाने आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करावो, आधुनिक कृषि पद्धतियन को बढ़ावो देवो और खेती को अधिक लाभकारी बनावो। और तो और योजना के अंतर्गत पात्र किसानन है सरकार निर्धारित प्रावधानन के अनुसार सहायता भी उपलब्ध करात है। सो अगर आप और ई योजना को लाभ लेवो चाहत हो तो अपने नजदीकी कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग के कार्यालय या फिर किसान कल्याण विभाग से संपर्क कर सकत हो। उतने से आप है आपकी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की पूरी जानकारी मिल जाए। और भैयारो, अब हम आपके लाने लेके आए हैं एक लघु वार्ता। कैसे भैयारो, अबे देखो वर्षा ऋतु के संगे संगे खरीफ फसलन की बुआई को काम लगभग पूरा हो चुको है और अब फसलन की उचित देखभाल को समय है। कैसे अच्छी पैदावार केवल समय पे बुआई से ही नहीं होती, बल्कि समय समय पे करी जावे वाले कृषि कार्यन पे भी निर्भर करत है। तो आओ जानत है कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्निल दुबे से खरीफ फसलों के समसामयिक कार्यन पे उपयोगी जानकारी।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर स्वप्निल दुबे, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन। आज हम खरीफ फसलों पर समसामयिक चर्चा करेंगे। जैसा कि इस समय हम देख रहे हैं कि प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई लगभग हो चुकी है, जिसमें सोयाबीन, मक्का, उड़द, अरहर, धान आदि फसलें लगाई गई हैं। इसमें अभी जो हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं फसल 10 से 12 दिन की, कहीं 15 से 20 दिन की फसल हो गई है। और इस समय हमको जो है पौध संरक्षण का कार्य जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसा कि इस समय हम देख रहे हैं कि खरीफ फसलों में जो है खरपतवार की समस्या रहती है, खरपतवार आते हैं, कहीं कहीं जो है कीटों का प्रकोप आता है। सोयाबीन में कहीं कहीं पत्ती काटने वाले कीट जो है ब्लू बीटल का प्रकोप आता है, कहीं इल्ली का प्रकोप आता है, मक्के में भी इल्ली का प्रकोप आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो खरीफ फसलों में कहीं ना कहीं पौध संरक्षण के कार्य, तो किसान भाई सुबह और शाम के समय अपने खेत की निगरानी करें और यदि उनको कोई कीट व्याधि रोग बीमारी दिखता है तो तुरंत अपने कृषि वैज्ञानिक केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक या हमारे कृषि विकास अधिकारी या कृषि अधिकारी से हम संपर्क करें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस समय खरीफ की फसलों में खरपतवार का नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। इस बार मानसून भी कहीं कहीं जो है देर से आया है और कई जगह अच्छा तेज पानी भी नहीं गिरा है, तो जब भी हम कोई खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उस समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। जैसा कि अभी पिछले 3-4 दिनों में प्रदेश के हर क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। सोयाबीन की फसल की यदि हम बात करें, खरपतवार नियंत्रण के लिए कई जो अच्छी दवाइयां आती हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। जो पहले से ही दो दवाइयां मिल के आती हैं, कॉम्बिनेशन वाली आती है, जैसे सोडियम एसीफ्लोरोफेन प्लस क्लोडिनोफाफ करके आती, इसकी मात्रा रहेगी 400 ml एकड़ के हिसाब से, या प्रोपाक्यूजाफाफ प्लस इमिडाज़ेपाम रहेगी, ये भी जो है आपके 800 ml एकड़ के हिसाब से। तो कोई भी एक दवा का हम उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन की हम बात करें, अरहर उड़द की फसल भी लगाई जाती है, उसमें भी खरपतवार नियंत्रण आवश्यक है। इमिडाज़ेपाम करके दवा है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं 300 ml एकड़ के हिसाब से, या इमिडाज़ेपाम प्लस प्रोपाक्यूजाफाफ करके आता है 800 ml या 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हम उपयोग कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में किसान भाइयों ने इस बार मक्का की फसल भी लगाई है, मक्के में भी सक्रिय और चौड़ी पत्ती के खरपतवार आते हैं, उसके लिए जैसे टेम्बोट्रियान प्लस एट्राजिन है इसका हम उपयोग कर सकते हैं, या होलोसल्फुरान प्लस एट्राजिन है इसका हम उपयोग कर सकते हैं, तो कोई एक हम दवा का उपयोग करेंगे। कई क्षेत्रों में धान की रुपाई भी की गई है और धान की जो है सीधी बुआई भी की गई है, तो जिन क्षेत्रों में धान की सीधी बुआई की गई है वहाँ पे धान के बोने के तुरंत बाद पेटीरिया क्लोर प्लस पैरोजो सल्फुरान करके दवाई आती है 800 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हम उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ पर रोपित धान जो है धान का रोपा करके लगाया जा रहा है उसमें यदि कचरे की समस्या आ रही है तो उसके लिए भी कॉम्बिनेशन वाले दो जो हमारे खरपतवार नाशक आते हैं जैसे क्लोरीम्यूरान प्लस मेट सल्फुरान या साइलोफाफ ब्यूटाइल प्लस पेनाक्सोसुलम, तो कोई भी हमारी खरीफ की फसल हो, चाहे सोयाबीन हो, मक्का हो, मूँगफली हो, तो इसमें रासायनिक हम जो है खरपतवार का नियंत्रण जो है इसको हम कर सकते हैं। केवल सावधानी ये रखनी है कि हमको 1 एकड़ में लगभग 200 लीटर पानी का उपयोग करना है। खेत में जब पर्याप्त नमी हो तब हमको जो है खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करना है और खरपतवार नाशक की जो अनुशंसित मात्रा है उतनी ही मात्रा का घोल बना के छिड़काव करना है और अलग से 2-2, 3-3 दवाइयों को नहीं मिलाना है। यदि हमारे किसान भाई ये 3-4 बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित है खरीफ फसलों में हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कई कई फसलों में कीटों का प्रकोप, जैसे सोयाबीन की फसल में इस समय देखें जिसको आप झिरझिरा कहते हैं।

0: हैं और हम अपनी वैज्ञानिक भाषा में ब्लू बीटल कहते हैं, तो इसका भी प्रकोप देखा जा रहा है, कहीं कहीं हरीली का प्रकोप देखा जा रहा है। तो पहले हम ये देख लें कि 1 मीटर कतार में हमारे कितने कीट हैं, उनका आर्थिक क्षति स्तर क्या है, उस हिसाब से हम जो है कीटनाशक का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए यदि हमारे ब्लू बीटल है तो जैसे क्लोरपायरीफास आता है 50 cc या प्रोफेनो प्लस साइपर आता है, इस दवा का हम उपयोग कर सकते हैं। कहीं कहीं तनामक्खी का प्रकोप भी देखा जाता है, तो इसके लिए हम गर्डल बीटल जो है, गर्डल बीटल है थायोक्लोरपिट करके एक दवाई आती, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस समय चाहे सोयाबीन की फसल हो, उड़द की फसल में एक पीला रोग या सोयाबीन की फसल में एक पीला रोग एक मुख्य समस्या रहती है, तो इसका नियंत्रण भी करना बहुत आवश्यक है। तो पहले आप अपने खेत का जो है मुआयना करें, खेत में जैसी आपको 2-3 पत्ती 4 पत्ती 10 पत्ती या पौधे पीले दिखते हैं तो उन पौधों को उखाड़ के तुरंत नष्ट करें और एक जो है उपयुक्त कीटनाशक का उपयोग करें। सिंथेटिक पैराथ्राइड्स का उपयोग नहीं करना है, ये किसान भाई ध्यान रखें। इसकी जगह जैसे थायोमेथॉक्साम आता है या एसिटामिप्रिड आता है, इथोफेन प्राक्स आता है कोई, या हमारा जो है इमिडाक्लोरपिड आता है, कोई एक दवा का जो है आप घोल बना के आप छिड़काव करेंगे तो ये पीला रोग बड़े आसानी से नियंत्रित हो जाएगा। साथ ही कहीं कहीं जो अपन देख रहे हैं कि कहीं कहीं सोयाबीन की फसल जो है कहीं कहीं सूख रही है, अत्यधिक नमी या कहीं कहीं पानी का भराव हो रहा है, तो वहाँ राइजोक्टोनिया राट करके एक समस्या आती है, तो उसके लिए थायोफेनेट मिथाइल। तो इस समय किसान भाई बिल्कुल ध्यान रखें, यदि आप अपनी फसल में खरपतवार का, कीटों का, रोगों का प्रबंधन करते हैं तो निश्चित है आपकी खरीफ की फसल की पैदावार अच्छी होगी और आपको जो है अधिक आय प्राप्त होगी।
1: तो जे हते कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्निल दुबे, जिनने खरीफ फसलन के समसामयिक कारण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी अपन के संगे। आशा करत हैं जे जानकारी हमारे किसान भैया हरों के लाने उपयोगी सिद्ध हुई है। और भैया अब चौमासे को बखत है और किसान वाणी में किसानन से जुड़ी लगभग सभी जरूरी बातें हो गई है, बल्कि खूब हो गई है। सो कायन आप तनक मनोरंजन सोई हो जावे। वैसे हम जानत हैं कि हमारे भैया हरे मन ही मन कह रहे हुई हैं, अरे राधा बहन नेकी और पूछ पूछ जिन करो सीधो सुनवाई दो, है नहीं जई है का भैया मन में? हाँ राधा बहन आपकी सब जानत है। सो भैया मौसम को देखत भाई सुनत है एक बढ़िया सो सावन गीत, जिए गाओ है गोविंद सिंह यादव और साथियों ने।

0: वाह भैया, आनंद आ गया सुन के लोकगीत। और जब बात बिल्कुल ही सही है, अपने लोकगीतन में भी अपनी मिट्टी की खुशबू रच बच जाते।
1: और अब अपने भैया हरों के लाने खेती किसानी से जुड़ी जरूरी सलाह सुई दे देवे। सबसे पहले बात कर हैं मक्का की, तो भैयारो बुआई से पहले बीज को 2 ग्राम थायरम एवं 1 ग्राम कार्बन डाइजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेवे। उके बाद 5 ग्राम एजिटोबैक्टर एवं 5 ग्राम PSB कल्चर प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित कर लेवे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर, तो उतई पौधे से पौधा की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखने हैं अपन। वृक्षारोपण के लाने उन्नत किस्म के पौधन की व्यवस्था करवें और जो पहले से तैयार गड्ढे करे हैं उनमें पौधों को रोपण करवें। सब्जियों की बात करें तो सबसे पहले बुआई से पहले बीज को 2 ग्राम थायरम एवं 1 ग्राम कार्बन डाइजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अपन है उपचारित करने हैं। बुआई के लाने खेत की मेड़ जो नालियां रथ हैं उन्हें पद्धति से तैयार करवें और अदरक हल्दी के खेतों में उचित दूरी पे जल निकासी के लाने नालियां जरूर बनावें। तो भैया हरो जे हते आपके लाने खेती किसानी से संबंधित जरूरी सलाह।
0: तो भैया हरो एक के संगे आज की किसान वाड़ी में बस इतनो ही। तो भैया आपको आज को जो कार्यक्रम कैसो लगो ई में अपन को और का सुधार करने हैं, और अगर आपके मन में भी खेती किसानी से जुड़ो कोनो सवाल होए या आप कोनो विषय पे जानकारी चाहत हो तो हमें जरूर लिख भेजियो। पतो रहे किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल और पिन कोड है 462002। अब राधा बहन खोदो आज्ञा, एक बार फिर दो ही हाथ जोड़ के सभी भैया बहनों को हमारी स्नेह भरी राम राम।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो

0: भी डालें?
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
0: सच
2: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
0: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसानवाणी
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
0: किसानवाणी।
2: आकाशवाणी भोपाल से भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करते हैं कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में।

ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर

यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 बजे तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन ज़ी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। 11:00 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले 1 बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।
चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की।
विधेयक के समर्थन में भाजपा के ब्रिजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में

0: शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की आंध्र प्रदेश यात्रा और महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: शेखर जी, आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: जी नमस्कार।
3: मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश के एक दिन के दौरे पर थे। आपसे हम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में संक्षेप में जानना चाहेंगे जिनका उन्होंने उद्घाटन किया या शिलान्यास किया।
4: बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री की जो कार्यक्रम रहा, उन्होंने कम से कम 18,000 करोड़ की जो प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, लोकार्पण और देश को डेडिकेशन करने का आज कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री ने कई प्रोजेक्ट्स आज किए, उसमें सबसे बड़ा था विशाखापट्टनम का नया एयरपोर्ट जो भोगपुरम में है, जो विशाखापट्टनम के नजदीक विजयनगरम जिला में, उस प्रोजेक्ट का उन्होंने इनॉग्रेट किया। और साथ में एक विजन सामने रखा जो एक कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर का, पूरे आंध्र प्रदेश कोस्ट है उसका, और उसके साथ साथ जो बंदरगाह है छोटे बड़े उस साइड में विशाखापट्टनम से लेकर कृष्णापट्टनम, उसके आधुनिकीकरण का भी प्रोजेक्ट का उन्होंने आज फाउंडेशन किया। और साथ में नए नए बंदरगाहों की भी बात आज पीएम ने किया है कि मुलपेट और रामायपट्टनम करके, यानी पूरे जो ब्लू वाटर इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, जिसमें फिशिंग की डेवलपमेंट हो, आपकी प्रॉन कल्चर, प्रॉन एक्सपोर्ट, ये सारी चीजों की उस एरिया का एक बड़ा आर्थिक डेवलपमेंट के लिए आज उन्होंने कार्यक्रम के उन्होंने आज हरी झंडी दिखाई है।
3: जी, इसके अलावा भी कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने आज लॉन्च किए, पर उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले सुनते हैं कि आंध्र प्रदेश में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इन परियोजनाओं के बारे में क्या कहा।
5: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं, इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
3: शेखर जी, अभी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने एयरपोर्ट की बात की, आप भी कह रहे थे कि उन्होंने विशाखापट्टनम के नजदीक भोगपुरम में एक एयरपोर्ट का आज उद्घाटन किया। उत्तरी आंध्र इलाके में औद्योगिक विकास, रोजगार पैदा करने और कुल मिलाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस एयरपोर्ट का क्या महत्व है।
4: देखिए, जो उत्तर आंध्र प्रदेश है वो आदिवासी इलाके है ज्यादातर, और उस इलाके में इस तरह की एक नया एयरपोर्ट खोलना उसके उद्घाटन होना, वो सारे पीछे

0: जो इलाके है उस एरिया का बहुत बड़ा एक अवसर खुलेगा जो डेवलपमेंट के लिए। इस एयरपोर्ट का नाम भी उस क्रांतिकारी का नाम पे रखा है, अल्लूरी सीतारामन राजू
1: जी।
0: हम सब जानते हैं अल्लूरी सीतारामन राजू एक क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश साम्राज्य को विरोध किए थे। वहां पे उनके नाम पे एक बहुत बड़ा विद्रोह भी हुआ था 1922 पे, उसके बाद वो शहीद हो गए थे। उनके नाम पे रखा है क्योंकि अल्लूरी सीतारामन राव आदिवासी के लिए बहुत काम किए, उनकी पीड़ा और उनके दर्द के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो इस नया एयरपोर्ट का वहां पे उनके नाम पे रखने का भी एक बड़ा मैसेज जाता है आदिवासी इलाके में
1: जी।
0: और वहां से विशाखापट्टनम जिला जो वहां से लेकर अरकू वैली करके जगह है जो आज ईस्टर्न घाट्स जो है उस वहां पे है, ये वहां पे कोशिश किया है कि जो आदिवासी युवा है उनके लिए नए अवसर देना, उनको एक नया लाइफ का एक स्कोप बढ़ाने का एक बहुत बड़ा प्रयत्न है ये।
1: सरकार ने उड़ान और कनेक्टिविटी पहल के तहत एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर दिया है। ये जो आज एयरपोर्ट उन्होंने उत्तरी आंध्र प्रदेश में जो इसका आज इनॉग्रेशन किया है, वो इस विजन में कैसे फिट बैठता है?
0: देखिए, उड़ान का जो स्कीम है आप सब जानते हैं, एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम
1: जी,
0: ये 10 साल का स्कीम है। अभी उसका एक मॉडिफाइड स्कीम अभी लॉन्च हुआ है, अभी जुलाई से शुरू हुआ है। ये स्कीम 10 साल का है, यानी 26-27 से लेकर 2035-36 के बीच में कम से कम 23,000 करोड़ का ये बड़ा प्रोजेक्ट है कि जहां जहां एरोड्रोम जो है, जो ये पुराने काल का हो या नए काल हो, उसको एक एयरपोर्ट करके बना के कम से कम 100 एयरपोर्ट की कल्पना की गई है। आज तो जितने एयरपोर्ट है पहले से 10 साल में बहुत एयरपोर्ट बने, और भी 100 एयरपोर्ट बनाने की ये बात है ये। और इसमें आगे 8 साल में आप देखेंगे कि जो छोटे मोटे जो एयरफील्ड्स है, एरोड्रोम है, उसको डेवलप करके एक प्रॉपर एयरपोर्ट करने की, क्योंकि एयरपोर्ट का डेवलप करना मतलब वहां पे एक आर्थिक एक्टिविटी एक बड़ी बूस्ट मिलती है। और ये जो छोटे एयरपोर्ट्स है उनके लिए क्या है, ऑपरेशन जारी रखना चाहिए, तभी जाके इनका ये होगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम है, साथ में हेलीपैड्स भी डेवलप हो रहे हैं
1: जी।
0: तो प्रधानमंत्री आज अगर इसके बात किया है कि ये जो इनिशिएटिव है इससे क्या होगा, जो अति गरीब परिवार है उनका भी एक सपना पूरा कि वो भी कभी उड़ान पे जा सकते हैं, वो भी फ्लाइट ले सकते हैं
1: जी जी।
0: और इस बात को प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन भी किया है कि किस तरह ये स्कीम जो सबसे गरीब है उनके तक विकास पहुंचाने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी, और ये सुविधा पूरी होने पर हर साल लगभग 96 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगी। मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात का असर हम सप्लाई चेन्स पर साफ साफ देख रहे हैं, ऐसे में ये जो सेमीकंडक्टर सुविधा जिसका आज प्रधानमंत्री ने जिसकी आधारशिला रखी है, भारत को इस तेजी से महत्वपूर्ण होते हुए क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करने के लिए कितनी अहम है?
0: बहुत अहम है इसमें अनुभव जी, क्योंकि अभी अभी हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ने अभी गुजरात पे हाल ही में उन्होंने 3रा सेमीकंडक्टर प्लांट खोला है। ये सेमीकंडक्टर जो है वो चिप्स है, मतलब ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां चिप्स की जरूरत ना हो। अपने टेलीविजन से लेकर मोबाइल या आपके गाड़ी, आपके कोई भी हो
1: जी,
0: हर चीज में चिप्स लगता है। और ये चिप्स ज्यादातर भारत की रिक्वायरमेंट के लिए इम्पोर्ट होता है, जैसे जापान, थाईलैंड, वियतनाम, इनके। अब भारत भी उनमें जाके भारत वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करने एक बड़ा प्लान रखा है
1: जी।
0: जिसमें प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जितना हम सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज ये करें, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, एक मिशन मोड पे इस पे काम हो रहा है। और सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज जो अभी खोल रहे हैं उसमें टेस्टिंग फैसिलिटी भी है, और उसकी बनाने का भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये जो प्लान है, इसमें हमारी नौजवान जो है, ये नौजवान के लिए एक नया खोल रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर तो है ये जहां ज्यादातर फोकस सॉफ्टवेयर रहा, ये हार्डवेयर पार्ट के पे भी ध्यान दिया जा रहा है। और अभी जब प्रधानमंत्री हाल में गांधीनगर के पास एक सेमीकंडक्टर की 3री फैक्ट्री जब उद्घाटन किए थे, तब उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिट किया था उस प्लांट में, जो सेमीकंडक्टर प्लांट में पूरा भारत का वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव है, हर राज्य से हमारे नए यंग गर्ल्स एंड बॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, पूरी तालीम लेकर एक एडवांस्ड एरिया है, क्योंकि चिप की जो टेक्नोलॉजी है कोई कंट्री अब से शेयर नहीं करता
1: जी,
0: क्योंकि फ्रंटियर एरिया है जिसमें भारत अपनी R&D जारी रखे, साथ में जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनके साथ टेक्नोलॉजिकल एक एक्सचेंज का भी प्रोग्राम है, जिसकी वजह से अभी प्रधानमंत्री मानते हैं कि जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वैसे सेमीकंडक्टर एक एरिया है जहां फ्रंटियर एरिया माना जाता है।

0: और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत इस सेमीकंडक्टर फील्ड में न केवल आत्मनिर्भर बने लेकिन एक एक्सपोर्ट हब बन जाए।
1: जी, अपनी जनसभा के दौरान श्री मोदी ने भारत के युवाओं की प्रतिभा के बारे में भी बात की, चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आंध्र प्रदेश हमेशा भविष्य की सोच रखने वाला प्रदेश रहा है। सॉफ्टवेयर, आईटी और टेक सेक्टर में आंध्र के युवाओं ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है और इसलिए सरकार यहां के टैलेंट को आंध्र प्रदेश की डेवलपमेंट पावर से जोड़ना चाहती है।
1: अभी जैसा हमने सुना प्रधानमंत्री ने युवाओं की प्रतिभा की बात की, उन्होंने ये भी कहा कि देश को अपने प्रतिभाशाली युवाओं से फायदा मिले इसके लिए सरकार अब सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के टेक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो देश की युवा शक्ति और प्रतिभा का इस्तेमाल करने और उन्हें भारत की विकास यात्रा में शामिल करने के लिए केंद्र की, खासकर प्रधानमंत्री की ऐसी पहल को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, ये बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं ये जो आज की जो इंडिया है और कल की जो इंडिया होगी, ये दोनों इंडिया हमारे युवाओं के कंधे पर चल रहा है और जितना युवा भारत जो यंग नेशन है उनकी जो टैलेंट्स को सामने लाने के लिए सरकार कई स्कीम्स, कई कार्यक्रम जारी रखी है
1: जी।
0: जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे युवाओं के अंदर ही नए नए एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं जो जाके यूनिकॉर्न तक बना दिया है और विश्व भर में एक अपने नाम और पहचान भी बना लिया है। तो प्रधानमंत्री का यही है कि यूथ, फ्यूचर यूथ का है और भारत का फ्यूचर यूथ के ऊपर है। यूथ का विजन, यूथ का लीडरशिप, यूथ का डिसिप्लिन, सब कुछ इन पर निर्भर है। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का हमेशा एक रहा है कि यूथ पर फोकस रहे, उनको अवसर मिले और उनके टैलेंट डेवलप करने के लिए तो कार्यक्रम बने ताकि सरकार की हेल्प भी रहेगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की
1: जी,
0: जो उनको आर्थिक मदद देकर अपने आप पैर में खड़े होके जो सरकार की इतनी स्कीम्स है उसका सबका फायदा उठाए।
1: आज उद्घाटन किया गया एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ा था। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत के एनर्जी ट्रांजिशन और डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों में इस तरह के प्रोजेक्ट्स कैसे योगदान देंगे।
0: ये हमारे लिए क्लाइमेट जो मामला है, तो क्लाइमेट चैलेंज जो आ रहा है भारत इसको एकदम सीधा मुकाबला कर रहे हैं। वो सोलार विजन हो या आपकी जैसे हाइड्रोजन ट्रेन की अभी उद्घाटन हुई थी आपने देखा
1: जी,
0: तो हर फ्रंटियर एरिया, ये भी एक फ्रंटियर एरिया टेक्नोलॉजी है, भारत इसमें बहुत कोशिश कर रही है। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो बहुत पहले चल रहा है लेकिन इस बार सरकार का जो एक स्कीम है कि हर घर एक अपने आप को अपने लिए भी ऊर्जा बनाए का एक जो स्कीम है सोलार स्कीम, और बाकी जो बचा हुआ है उनके बाद वो ग्रिड में वो दे सकते हैं, बेच सकते हैं। ये कार्यक्रम लेकर सरकार ने बहुत इसके कदम लिए है, बहुत स्टेट्स भी इस कार्यक्रम को आगे ले जा रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कार्बन जो इमिशन की फुटप्रिंट, देखिए भारत एक देश जो है डेवलपिंग कंट्री है, जब हमारी रिक्वायरमेंट गरीबी को लड़ाई के लिए पे काफी एनर्जी खर्चा करना पड़ा, फिर भी हम उस कमिटमेंट पर वचनबद्ध है जो पेरिस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, उस हिसाब से जो नए नए प्रोजेक्ट्स किया जा रहे हैं जहां पे कैसे जो फॉसिल फ्यूल हो उसे हम जाके कैसे शिफ्ट करके कैसे ये हम अल्टरनेटिव सोर्सेस पर जाएं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं रेयर अर्थ के लेकर भी, कि रेयर अर्थ भारत में हो या विदेश में, उसका भी नए एग्रीमेंट्स बना रहे जहां हमारे वैज्ञानिक, हमारी इंडस्ट्री एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में या ज्वाइंट वेंचर में बाहर जाके इसको एक्सप्लॉइट करने का भी कई समझौता हुआ है, साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज के साथ, यूरोप के कुछ कंट्रीज के साथ। अभी जो हाल में जो पीएम की जितनी फॉरेन विजिट रही है इस दिशा में रही है।
1: आज आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री ने 1880 करोड़ रुपए से ज्यादा के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की भी आधारशिला रखी, इन प्रोजेक्ट्स की मुख्य बातें क्या हैं?
0: देखिए, ये जो कनेक्टिविटी की जो बात की जा रही है, देखिए प्राइम मिनिस्टर बार बार विकसित भारत की बात करते हैं
1: जी,
0: और प्राइम मिनिस्टर का ये भी एक लक्ष्य है कि जब तक हर राज्य का पूरा पोटेंशियल जब तक सामने नहीं आएगा तब तक भारत विकसित भी नहीं हो सकता। इसीलिए आज आंध्रा में स्वर्ण आंध्रा की बात की है, यानी गोल्डन आंध्र प्रदेश, उस दिशा में आज जो स्कीम्स है, जो फाउंडेशन लगाया गया है और प्राइम मिनिस्टर का आज जितने कार्यक्रम रहे हैं, जो मतलब आप ले लीजिए जैसे विशाखपट्टनम से रायपुर एक्सप्रेस वे, वो एक उस क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो विशाखपट्टनम रायपुर के बीच में रेलवे लाइन तो है ही, जो ज्यादातर माइनिंग डिपॉजिट एरियाज है वो, जो ओडिशा को भी टच करते हुए जाता है, और जो कनेक्टिविटी बढ़ा के जो वहां के जो हमारे जो मिनरल रिसोर्सेस है उसकी ठीक तरह से उपयोग करने के एक रास्ता

0: शिखर अय्यर जी, आप आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए और इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की आंध्र प्रदेश यात्रा और महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शिखर अय्यर, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

द ट्रेन फिल्म से सुना भी आपने गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी और आनंद बख्शी ने बोल लिखे थे, आर्यभमन का संगीत था।

0: ये गाना भी आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म का नाम था नमक हलाल, अनजान ने इसे लिखा और बप्पी लहरी का संगीत था।
1: रोकी साहब ने आपके नाम चिट्ठी भेजी।
2: लेट्स सी, एक्सक्यूज मी।
0: अगला गाना आइए आपको सुनवाते हैं, तीसरी मंजिल फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर है, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, राहुल देव बर्मन का संगीत है।
2: रॉकी
3: जी जी,
2: पीछे पड़े हुए थे, गाना दीजिए गाना दीजिए, लिख कर दे दिया। अब चिट्ठी भेजते हैं कि आज मेरी आवाज़ ख़राब है, मैं ड्रम बजा रहा हूँ, आप गाना गा दीजिए, मैं यहाँ गाना गाने आया हूँ।
1: जी नहीं सरकार।
2: तुम्हारे रॉकी साहब जानते नहीं मैं कौन हूँ?
1: सर भगवान दास करोड़पति के बेटे को कौन नहीं जानता हुजूर।
2: मेरी सोशल पोजीशन की कोई खबर नहीं होगी?
1: क्यों नहीं हजूर, आपकी इज्जत तो बच्चे बच्चे करते हैं।
2: और वो चाहते हैं कि मैं इस होटल में गाना गाकर उस इज्जत को खाक में मिला दूं? बिल्कुल नहीं, बोल दो ना मैं गाना नहीं गाऊंगा, जाओ चलो चलो चलो।
3: थैंक गॉड बाल बाल बच गए मीना, अगर ये हसरत गाने को तैयार हो जाते तो अपनी शाम का सत्यानाश हो जाता।
4: क्या फरमाया आपने?
3: जरा सोचो, सुनने को आए हैं रॉकी का गाना।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना अभी आपने गाना। फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा था और संगीत राहुल देव बर्मन का था। इसी के साथ फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। समाचार संध्या कुछ ही देर में दिल्ली केंद्र से।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
3: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000

0: नए कॉलेज बने हैं, 4000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
0: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117,85,00,000 रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44,55,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379,35,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193,95,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019,00,000 रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट PG 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
3: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
1: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का

0: आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
1: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
3: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल लेंगे। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
2: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5,000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण

0: रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekanand Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athlete Soman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
2: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS and increasing medical seats as well.
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई है। 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: कर्नाटका चीफ मिनिस्टर डी के शिवकुमार, गवर्नर

जॉनी मेरा नाम, इस फिल्म का ये गाना अभी सुन रहे थे आप किशोर कुमार की आवाज़ में। इंदिवन ने इसे लिखा था और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था।

धर्मात्मा फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे मुकेश और कंचन की आवाज़ में। इंदिवर ने स्वर लिखे थे और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत तैयार किया था। और इसे आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, जहाँ चल रहा है चित्रगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना। फिल्म का नाम था दो रास्ते। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और इसी गीत के साथ चित्रगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती हम रिली करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रिका शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर स्मृतियों तक एक संश्लिष्ट यात्रा करेंगे। करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं, जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक ठौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूँ, मैं मरूंगा भी।

ही नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी। फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है। सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू का हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जुगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़त न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, डाकेले ताती तलैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम है शांति दूत धरनी के, छाह सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आँखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा, हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों की, वह एक है। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते भी हमारे भाव एक हैं, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, मुगलों की सत्ता को

स्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो लेखन है उस लेखन का तरीका अलग है। लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नियति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है। और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी। हिंदी एक बड़ी भाषा थी क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व ज्यादा था। तो देखें तो हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं थी, जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशु कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी। अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला, उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी, वह मंशा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनैतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की, और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पे इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था। लोगों को यह लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सबकी पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहाँ ले जाना, और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए। और वह जानने का माध्यम ही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था जो समाज की व्यवस्था थी उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें, तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासनकाल में वो किस प्रकार का बीता। और इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी जो एक समय में खड़ी हुई, और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में,
जो बात

0: व्यवस्था उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम, जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित करते हैं और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं, इसे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सके।
1: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण।
2: किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से निश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी, तब झांसी के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमर कृति जिसने बहुत कम शब्दों में यानी अत्यल्प में पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती अत्यल्प में संपूर्ण, और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेर दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
1: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी, हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
2: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्र प्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
1: तुम सभ्य हो, मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो, ईश का अस्तित्व सत्य न मानते है, भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव, इस ऋषि भूमि का ये आज कैसा हाल है, तू काल सचमुच काल ही है, क्रूर और कराल है।
2: गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश, हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई, तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा वैचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं,
3: एक समय पर भारत भारती की ही स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय

0: रही थी वह। ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
1: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाथे बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
2: हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहाँ क्या हो रहा है आज कल संसार में। सुख शांतिमय सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूलती फिर शूल है।
1: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड, भविष्यत खंड, मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
3: हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है।
1: भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं,
4: भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के इस भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
1: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
2: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति कलम का दम और सोजे वतन।
5: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्सृत होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण

0: भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का। रचनाकार नवाब राय, यहाँ सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें शामिल अमर रचनाएं दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम केवल कहानियां नहीं थी बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे।
1: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं,
2: जब वे सोजे वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्के दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
0: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की 5वीं कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने ये स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोजे वतन के पृष्ठ पलटे तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को ये भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
1: साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं,
3: ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। दो विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक दयाराम निगम ने दिया और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
0: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोजे वतन केवल एक पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
1: वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री

0: भद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर सराक गोरखपुरी, व्यंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमीय साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, भारतीय साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है।
3: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स। In tonight's national program of music, we bring to you a Carnatic classical vocal recital by Chinmaya sisters, Srimati Uma and Srimati Radhika. Chinmaya sisters are one of the leading and popular duo in the field of Carnatic music. With their mellifluous voices, spirited singing and strict adherence to classicism, the duo has captured the hearts of Rasikas worldwide. Chinmaya sisters are senior disciples of Padma Bhushan awardee Madurai Sri T.N. Seshagopalan and Kalimamani Neyveli Sri R. Santana Gopalan and have successfully imbibed and observed the specialities of their guru style in their singing. They have travelled extensively and performed in prestigious venues all across India and abroad. They are A-graded artists of Akashvani and have had the privilege of performing in many special programs organized by Akashvani and Doordarshan. In tonight's concert, Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika are accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on the violin, Sri B. Ganapati Raman on the Mridangam and Sri N. Sundar on Morsing.
4: कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं नाट्य राग और रूपक ताल में हरिकेशनल्लूर मुत्तैया भागवतर की रचना शक्ति गणपतिम।
3: द कॉन्सर्ट फॉर टुनाइट बिगिंस विद द कॉम्पोजिशन ऑफ हरिकेशनल्लूर मुत्तैया भागवतर इन रागा नाट्य सेट टू रूपक तालम शक्ति गणपतिम।

0: अब सुनिए संत त्यागराज की रचना ई वसुधा, राग है सहाना, ताल है आदि।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद ई वसुधा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा सहाना सेट टू आदितालम।

0: चिन्मया भगिनी अब प्रस्तुत कर रही हैं मां मव मीनाक्षी वराली राग और मिश्र चापुताल में मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका फर्दर कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद मां मव मीनाक्षी अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन रागा वराली सेट टू मिश्र चापुतालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर लिसनिंग टू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। दे आर अकंपनीड बाय श्रीमती श्रद्धा रविंद्र ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड श्री एन सुंदर ऑन मोरसिंग।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं मोहनम राग और आदिताल में रचना नन्नू पालिम्पा। रचनाकार हैं संत त्यागराज।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद नन्नू पालिम्पा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा मोहनम सेट टू आदितालम।

0: अभी आपने सुना तनियावर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: यू जस्ट हियर टू अ तनी आवर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय श्री बी गणपति रामन एंड बाय श्री एन सुंदर ऑन मोरसिंग।
0: कार्यक्रम का समापन करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं जौनपुरी राग और आदिताल में पापनासम शिवन की रचना मुरुगनई बजी मन में।
1: Chinmaya sisters conclude their concert with Muruganai Bajji Maname, a composition of Papanasam Sivan in Raga Jaunpuri set to Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: In tonight's national program of music, you just listened to a Carnatic classical vocal concert by Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika. They were accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on violin, Sri B. Ganapati Raman on mridangam and Sri N. Sundar on morsing. With that, we come to the end of tonight's national program of music. This program was recorded at the studios of Akashvani Chennai and was broadcast from Akashvani Delhi.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई

0: क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।